0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभाग की 36 केंद्रीय योजनाओं को
2: पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। इतिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
3: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
5: मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं। इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा।
3: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: जालिम लोशन,
7: जालिम लोशन, जालिम लोशन,

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
2: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के 1 दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के

0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
0: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारम्भ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines.
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स, जहां हाथों की कला, हुनर और मेहनत मिलकर खूबसूरत हस्तशिल्प को जन्म देती है। आखिरकार एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, कारीगरों के हुनर को बाजार तक पहुंचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बदलते समय के साथ हस्तशिल्प की दुनिया कैसे बदल रही है, और SKI हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हमारे खास मेहमान, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप पहले भी हमारे साथ रूबरू हो चुके हैं, तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पहली बात तो आपके बारे में।
1: मेरा नाम राजेश खन्ना है और मैं पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूं, और मैंने ये देखा है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ साथ कि मुरादाबाद से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट और लोकल में माल जाता है, वो सब हमारे कॉरूगेटेड बॉक्स में ही जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार इस फील्ड में कदम रखूं, तो ब्रास के लिए मैंने एक आइडिया मेरे मन में आया, मैंने एक शोरूम की स्थापना करने का मन बनाया। अब मैं एक नया वेंचर जो है स्टार्ट करने आ रहा हूँ 12 अक्टूबर।
0: तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि हैंडीक्राफ्ट हमें शुरू करना है।
1: मुरादा, हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर घर में पीतल काम होता है, तो मेरे पिताजी ने भी 70 में ब्रास का काम स्टार्ट किया था। हम बहुत छोटे थे, 4 साल का हुआ करता था। मेरे सामने पेटी में रख के, पहले कॉरूगेटेड बॉक्स तो कम होते थे, पेटी में माल जाता था, क्योंकि सरकार ने बाद में लकड़ी के लिए मना कर दिया, तो बाद में कॉरूगेशन का निर्माण हुआ, उसमें कॉरूगेशन में जाने लगा। तो हमने ब्रास काम बचपन से देखा, तो मेरी इच्छा थी जो मेरा घर में काम चला 10 साल, उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊँ।
0: सर, SKI क्राफ्ट की शुरुआत आपने कैसे करी?
1: देखिए, ब्रास का जो इतिहास है मुराद में, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लगभग 450 साल पुराना है। 450 साल पहले शाहजहां के पुत्र मुराद ने जो ये शहर बसाया मुरादाबाद, इसकी खास बात ये थी कि ये रामगंगा किनारे जो रेत है बहुत बारीक है, जो ढलाई के काम में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है, उस वजह से यहाँ पर ढलाई का काम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो आइडिया जो है मेरे मन में था कि ये क्यों ना ब्रासत वाला काम स्टार्ट किया जाए, उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शोरूम के रूप में देना चाह रहे हैं, जो अब तक माल मुरादाबाद से बाहर के मार्केट में बिक रहा था, अब वो सीधे मुरादाबाद के लोगों को मिले शोरूम के माध्यम से।
0: तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 तारीख को ही SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत, यानी कि ओपनिंग आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि 12 तारीख को ही हमें ओपनिंग करना है।
1: मैम, 12 तारीख को सेकंड नवरात्र है, और जो नारी शक्ति के लिए नवरात्र की पूजा होती है, ये काम जो है मैंने अपनी मैडम नेहा खन्ना के नाम से स्टार्ट किया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन उनके नाम से ही है। उनका मन था कि मैं कुछ करूं, तो उन्हें मुरादाबाद के इस काम में जो है इंटरेस्ट था, और काफी उन्होंने जो है मेरे को सहयोग भी किया है, तो उस वजह से मैंने नवरात्र में ये काम चालू किया।
0: सर, दिवाली और दूसरे त्योहारों में लोग घर को सजाने के लिए कुछ यूनिक ढूंढते हैं, तो SKI हैंडीक्राफ्ट्स में ऐसा क्या खास मिलेगा जो घर की सजावट को एक अलग ही लुक दे सकते हैं, मतलब क्या एक अलग यूनिक है आपके पास प्रोडक्ट?
1: एक तो मैम, हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, वैसे तो सारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में यूनिक ही होता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ किसी कारीगर के हाथ के द्वारा बना होता है। हमने कुछ ब्रास के ऐसे आइटम सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है, तो उसमें पीतल के करुए हम दे रहे हैं, कॉपर के कुछ ऐसे यूटेंसिल हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, और चूंकि चांदी महंगी हो गई है, तो चांदी की उर्ली रखना संभव नहीं है आज की तारीख में, तो ब्रास पे अगर हम चांदी की पॉलिश करके रखते हैं, तो सेम चांदी की उर्ली से ज्यादा अच्छी ये हमारी ब्रास की लगती है। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर ऐसे आइटम है जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे।
0: SKI हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट से क्या अलग बनाता है जो लोग आप तक कनेक्ट हुए?
1: SKI हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना, एक विरासत को आगे लेके आया, जैसे कांसा है, अभी जो है काफी हद तक कांसा मार्केट से गायब हो चुका है, अगर हम ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट जरूर रख रहे हैं कि वो महंगा भले ही हो, मतलब अपने कॉस्ट के हिसाब से, बट बेनिफिशियल है तो वो जो है मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल है आज की तारीख में।
0: सर हमारा अगला क्वेश्चन है हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट होती है उसमें मेहनत कितना लगता है, क्योंकि हर काम में मेहनत बहुत मायने रखता है। और देखा जाए तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, आजकल हर कोई यही सोचता है कि ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके पीछे का प्रोसेस जो है केवल डेडिकेशन है। कोई भी आप देखिए कोई भी चीज बनाते हैं आप हाथ से तो उसमें कितना टाइम लगता है, उससे आपकी ना एक मन की भावना आस्था जुड़ जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट भी सेम ऐसी चीज है कि कोई चीज आपने ब्रास की या किसी भी चीज की, देखिए कि मेरी नानी या मेरी दादी का ये बर्तन यूज होता था या ये फूलदान यूज होता था, तो आपके उसे आपकी आस्था जुड़ जाती है। तो यही सब चीजें जो है हैंडीक्राफ्ट को विशेष बनाती।
0: सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ आपके बेटे हैं और आपके दोस्त हैं, तो क्या ये भी आपके साथ ही आपके काम में हेल्प करते हैं? तो आप इनके बारे में खुद ही बता दीजिए, फिर इनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आराम से शांत बैठे हुए हैं कि हमारे पास नंबर नहीं आएगी, लेकिन आने वाली आपके पास भी नंबर, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप। तो सर आप पहले इनके बारे में बताइए।
1: हाँ, ये दोनों मेरे साथ एसोसिएट हैं और मेरे इस वर्क में मेरे को हेल्प करते हैं और इनकी स्टडी भी बिजनेस की है तो उस पे ही वर्क ये आगे बढ़ा रहे हैं अपना।
0: तो आर्यन जी अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपके फादर साहब ने बताया कि उनके फादर साहब भी पीतल का ही काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने फादर के साथ ही काम करूंगा और अपने जो हमारा बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इसको और ग्रो अप करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अलग है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि बस पापा के साथ ही काम करेंगे और सिर्फ बिजनेस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं?
2: हाँ, काफी टाइम से जब हम ऑलरेडी कॉरोगेटेड बॉक्स का काम हो रहा है तो जब सैंपलिंग होती थी तो उस हिसाब जब मैं देखता था कि अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं तो मैंने लोकल मार्केट में देखा तो वो डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वो सब डिजाइन बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना शोरूम लेके आ रहे हैं जहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स होंगे और फिनिश होगी वो हम मुरादाबाद के लोगों को देना चाहेंगे।
0: तो आपके यहाँ ट्रेडिशनल डिजाइन और मॉडल डिजाइन भी देखने को मिल सकता है, कुछ क्या अलग है आपके पास?
2: हाँ, एक काफी बेहतरीन कॉम्बो है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल में ब्रास का, मॉडर्न में पीएनएस का, और बाकी काफी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जब मार्केट में रिसर्च करी इस बारे में तो हमें बहुत जगह जा जाकर हमने बहुत लिमिटेड डिजाइन को फाइनलाइज करके अपने शोरूम में लेके आए हम, और आपको वही सब देखने को मिलेगा 12 तारीख को एसके हैंडीक्राफ्ट के शोरूम दिल्ली रोड।
0: तो आर्यन जी हमारा अगला क्वेश्चन है SKI हैंडीक्राफ्ट को लेकर आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, किसको और कैसे ग्रो अप करवाना है?
2: SK हैंडीक्राफ्ट के शोरूम के साथ साथ हम ऑनलाइन भी एंट्री ले रहे हैं, और पहले तो हम मुरादाबाद के लोगों को केटर करेंगे, पहले मुरादाबाद के लोगों को सर्व करेंगे, उसके बाद हम पूरे डोमेस्टिक पूरे पैन इंडिया हम अपना ब्रांड को लेके जाएंगे आने वाले समय में।
0: तो राजेश जी अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, हैंडीक्राफ्ट की चीजें मशीन मेड प्रोडक्ट से अलग होती है, एक ग्राहक SKI से कोई प्रोडक्ट खरीदते समय कैसे समझ सकता है कि यह एक हैंडमेड आर्ट प्राइस खरीद रहे हैं?
1: हमारे पास जो है सर्टिफिकेट भी है, और हमारे पे गुरु हैं श्री चिरंजी लाल यादव जी जिन्होंने अभी भारत का एक बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सम्मान पाया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, उनके द्वारा कुछ निर्मित चीजें हम जो है अपने शोरूम में रखने की हमारी बात चल रही है, जो 100% हैंडीक्राफ्ट है। इसके अलावा हम जो है जो भी प्रोडक्ट रहे उनमें मात्र 20-30% ही जो है मशीन मेड है, बाकी 70% उस प्रोडक्ट पे हाथ से काम हुआ हुआ है। हमारे गुरु जी श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्म विभूषण अवार्ड जो मुरादाबाद के 100% हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला है वो हमारे मुरादाबाद की एक तरह से गौरव की बात है, तो उसी गौरव को हम कायम रखते हुए हम 100% जो हैंडीक्राफ्ट से हैंडमेड आइटम है वो रखेंगे, और जो भी हमारे आइटम होंगे वो केवल 20-30% ही जो है मशीन मेड होंगे, बाकी उसमें 70% काम हाथ से या हैंडमेड से ही किया गया हुआ हो।
0: तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई ग्राहक पहली बार SKI हैंडीक्राफ्ट में आए तो आप चाहेंगे कि वह सिर्फ शॉपिंग करने ना जाए बल्कि यहाँ से भारतीय कला और कारीगरों के हुनर की कौन सी याद लेकर जाए?
1: इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मुरादाबाद को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये SKI हैंडीक्राफ्ट का जो शोरूम है वो एक तरह से एग्जीबिशन है जो एक आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है, आप लोग आइए यहाँ पर अनुभव कीजिए कि जो है हैंडीक्राफ्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं मुरादाबाद में, और हम फर्नीचर में, हम टेबल वेयर में या शो पीस में कितने भी आइटम जो मुरादाबाद में बनते हैं उसके हम कुछ कुछ जो है सैंपल हम यहाँ रखेंगे और पूरे मुरादाबाद को अनुभव कराएंगे एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से कि हैंडीक्राफ्ट में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं।
0: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि 12 अक्टूबर को SKI हैंडीक्राफ्ट की ओपनिंग है, तो आपके पास ऐसा एक खास कोई अलग क्या यूनिक प्रोडक्ट है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हुए और क्यों कनेक्ट हुए? कुछ तो आपके पास खास होगा ना, तो आप बताइए कि जो सोचे कि हम इस ओपनिंग में नहीं गए तो बहुत सी चीजें हमने मिस कर दी, तो ऐसा क्या खास है?
1: हम जो है जो हमारे 12 अक्टूबर के इनॉग्रेशन में सम्मिलित होगा उसको हम जो है अपने लीगेसी में शामिल करेंगे और स्पेशल ऑफर उनको जो है हम पेशकश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर आते हैं तो उन्हें नया कुछ एग्जीबिशन के टाइप का देखने को मिलेगा, कल को वो कुछ और भी जो है अपने विचार हमें बता के नए डेवलपमेंट हमसे करवा सकते।
0: तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो लोकेशन क्या है?
1: बहुत सिंपल लोकेशन है, मुरादाबाद आपके गागन पुल दिल्ली से रोड से लेकर और प्रेम मंडल तक सिचुएटेड है, उसी बीच में सारा मुरादाबाद जो है आता है। हमारा जो है मेन रोड NH 24 पर कुंदन पेट्रोल पंप के पीछे जूडियो के सामने और उसकी लोकेशन यूनियन बैंक के सामने है और बहुत इजी अप्रोच है। आप NH 24 पे आप किसी से पता कीजिए, कुंदन पेट्रोल पंप कोई भी बता देगा।
0: तो एक मैसेज जो आप देना चाहे सभी को?
1: मेरा मैसेज यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए आय का साधन जो है व्यवस्थित कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा जीवन शैली और अपने मुरादाबाद को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो अपनी विरासत को हमें संभालना पड़ेगा और लोगों को एक साथ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इसमें कोई भी हम इस तरह की जो है भावना न लाएं कि हम ये हैं हम वो हैं, हम केवल मुरादाबादी हैं और अपने मुरादाबाद को प्रमोट।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं,
4: ना
3: दिल में मेरे आज क्या है,
4: क्या है

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। देखिए समय हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 10:13 और खूबसूरत सी सुबह, एक अलग ही रौनक भक्तों का। यू नो, सुबह सुबह इतना रश मंदिरों में देखने को मिल रहा है, सभी माता रानी के चरणों में शीश नवा रहे हैं।

माँ के चरणों में शीश झुकाएं, मन की सारी मुरादें पाएं, भक्तों की खुशबू से महके हर द्वार, माँ करे सबका बेड़ा पार। जय माता दी। हेलो, सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को शरद नवरात्रि के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर आंगन में सुख शांति समृद्धि और खुशियों का वास हो। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज हम पूजा अर्चना करते हैं माँ शैलपुत्री की। आप सभी का आरजे खुशी स्वागत करती है बहुत बहुत एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और साथियों, शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। सब अपने अपने घरों में आज पूजा अर्चना में व्यस्त हैं और घरों में भजन चल रहे हैं। चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण, इतना खूबसूरत सा माहौल, हो क्या ही कहने। और देखिए, हम भी आ चुके हैं अपने श्रोताओं से बातचीत करने, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुशी यहाँ पर लेकर आई है। तो श्रोताओं, इस सुबह में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज की सुबह हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। टीकारा शिरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी को वंस अगेन शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और करते हैं शुरुआत एक ब्यूटीफुल भजन के साथ, जुबिन नौटियाल जी की आवाज में, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मैं वापस आती हूँ, आप कहीं मत जाइए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच में माँ के बराबर तो कोई भी नहीं हो सकता है। माँ की ममता सर्वोपरि है। और दोस्तों, आज माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी। इसी कारण माता रानी का नाम शैलपुत्री पड़ा। और माँ शैलपुत्री को शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। माता के हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है। उनका वाहन वृषभ है। और दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करके अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, जिस मन में माँ दुर्गा पर विश्वास होता है ना, उस मन में डर से ज़्यादा हिम्मत और निराशा से ज़्यादा उम्मीद होती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में मुश्किलें, अगर आपके जीवन में मुश्किलें आएं तो घबराइए मत। माँ का आशीर्वाद याद रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा करिए और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और मैंने कहा कि आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और हमारे पास लगातार खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और खूबसूरत ट्रैक। एंड देखिए, जैसे ही नवरात्रि आते हैं तो डांडिया की वाइब भी आने लगती है। और मैंने सोचा कि चलिए, अब गरबा भी स्टार्ट होने वाला है और गरबा ट्रैक ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ जी, तो चलिए सुनेंगे एक अमेजिंग ट्रैक, लौट कर मैं वापस आती हूँ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। फ्रॉम द मूवी लव रात्रि से एक अमेजिंग ट्रैक, दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज। और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। आज बहुत खूबसूरत स्पेशल डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय माता दी।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप सब। रेड कलर की साड़ी, रेड चूड़िया, ओहो माथे पे बिंदी, वाओ। और जो सब बैठे हैं ना साइड में, अरे वाह क्या बात है, कुर्ते पजामे में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। और छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे प्यारे ड्रेस पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा, एंड छोटी छोटी बच्चियों ने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है। सबको देखकर बड़ा खूबसूरत लग रहा था जब मैं स्टूडियो आ रही थी। चारों तरफ यू नो एक अलग ही पॉजिटिव माहौल, वातावरण, और सब लोग मंदिर आ रहे थे तो कुछ मंदिर जा भी रहे थे। और दोस्तों आज बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेटियां हैं तो कल है, बेटियां बेटियों से ही रोशन हर पल है, उसे पंख दीजिए सपनों के, क्योंकि उसका आसमान भी उतना ही बड़ा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो का नाम आपको मालूम ही है ना, संडे मॉर्निंग मस्ती। संडे का दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है और मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि मुझे आप सभी से यहाँ पर कनेक्ट होने का मौका जो मिलता है। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और दिन रविवार का। आज का दिन समर्पित है दुनिया की उस हर बेटी को जिसके दिल में सपने हैं, आंखों में उम्मीद है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है। जी हाँ, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों इस दिन को मनाने का मकसद है लड़कियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और बराबरी के अवसरों के प्रति लोगों को जागरूक करना। हर लड़की को ये मौका मिलना चाहिए कि वह पढ़ सके, अपने फैसले ले सके और अपनी पहचान बना सके। जरा सोचिए दोस्तों, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह सिर्फ अपना भविष्य नहीं संवारती है बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी नहीं मिलती। इसीलिए ज़रूरत है कि हम बेटियों को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका भी दें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनकी आवाज़ मायने रखती है, उनकी राय मायने रखती है और उनके सपने भी उतने ही कीमती हैं जितने किसी और के। और दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर देंगे, उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और इतना आत्मविश्वासी बनाएंगे कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ती रहें। साथियों बेटियों को बोझ नहीं उनकी ताकत बनाइए, उनके सपनों को रोकिए मत, उन्हें उड़ान दीजिए। इसी खूबसूरत संदेश के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वंस अगेन आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ द डॉटर चाइल्ड। एंड अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खूबसूरत गीत हैं जो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उससे पहले संदेश भी यहां पर आए हैं जिनको शामिल करना बहुत जरूरी है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुंचाते हैं। नमस्कार खुशी जी, आपको भी नमस्कार, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। से ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गणेश प्रसाद उजदार काठमांडू से आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं राजनंद गांव।

छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू एंड प्रेम, पूजा दुष्यंत, प्रांचल, समीक्षा, आराध्या साहू और इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट में भेजी आज की सुबह। अनुराधा पाटवाल साथ में सुरेश वाडिकर जी की खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी जय माँ वैष्णो देवी। हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे इस ट्रैक को प्ले करने का। आपने हमें मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है। हाय दी, केम छू आपकी दोस्त अफरोज फातिमा, आपके लिए कुछ लाइने लेकर आई हूँ। चाय की चुस्की में जो सुकून मिलता है वैसी ही मिठास हमारी दोस्त में घुलती है। लोग तलाशते हैं खुशियाँ शहर भर में, हम तो हर मोड़ पर तेरा ही साथ। अच्छा, हमें तेरा ही साथ मिलता है। अरे वाह, क्या बात है भैया, सुबह सुबह शेर व शायरी कर रहे हो। हाँ जी, और साथ में इनकी फ्रेंड भी है लाइबा एंड नजमा रामपुर से शबनम जी हैं। सुबह सुबह कुड़िया मैसेज भेज देनी है, मैंने बड़ा ही चंगा लगता है जी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं FM रेडियो मुरादाबाद की आरजी को। हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। राशिद हुसैन अंसारी जी अपना संदेश हमें पहुँचाते हैं कुरावली से। और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में लायबा काजमी है, अफरोज फातिमा है। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और साथ में इन्होंने कुछ पंक्तियां भी भेजी हैं कि बहुत खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, बहुत खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, इन्हें बना दी किस्मत हमारी, इन्होंने बना दी किस्मत हमारी। नहीं चाहिए जमाने की खुशियां, कि नहीं चाहिए जमाने की खुशियां, अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी। अरे क्या बात है भाई, दिल जीत लिया है। हमारी मोहब्बत आपके लिए ही है, तभी तो देखिए हम आपसे प्यार करते हैं, तभी चले आए हैं ना आपके लिए 10 से 12। और एवरीवन, आप भी मुझे अपने संदेश पहुंचा दीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। करेंगे बहुत सारी बातें, लौट कर आती हूँ, बताती हूँ अपने मुरादाबाद शहर में क्या कुछ स्पेशल चल रहा है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ है। और एवरीवन, वक्त हुए हैं अभी 11:46। और दोस्तों, आज शरदी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मुरादाबाद में आज 11 अक्टूबर 2026 से शरदी नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। एंड दोस्तों, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, जिसके बेहद शुभ संकेत माने जा रहे हैं। और दोस्तों, विदेशी फूलों से सजाया दरबार लाइन पर स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में माँ दुर्गा का दरबार सजाने के लिए करीब 51 किलो विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना माता रानी का अलग अलग अलौकिक श्रृंगार देखने को मिलेगा। सुरक्षा और साफ सफाई के नगर निगम और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एंड नगर आयुक्त के प्राचीन काली मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण कर लाइटिंग और साफ सफाई की कड़ी निर्देश दिए गए हैं। वही बात करते हैं आज मुरादाबाद में कैसा, मतलब मुरादाबाद का कैसा वेदर रहने वाला है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आज मुरादाबाद का जो मौसम है ना, मुख्य रूप से साफ और साफ रहेगा और हल्के बादल भी हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों का हाल, इस पूरे हफ्ते मौसम साफ और धूप वाला बना रहेगा, जिससे त्योहारों की तैयारियों में कोई बाधा नहीं आएगी। और भी अपडेट्स हैं जो मुरादाबाद से कनेक्टेड हैं एंड अपने शहर लोकल से, तो बताएंगे अभी आपको। बस आप बने रहिए, खुशी के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आपके जो संदेश आए मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती है आज की सुबह नीलिमा। एंड गुड मॉर्निंग हमें विश करती है, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पहुँच जाती है। आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, खुशियां दें, प्रदान करें और जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाएं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशांत हुसैन अंसारी जी का। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद इशारी कली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। संडे में आपको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और अभी लौट कर आती हूँ तो बॉलीवुड की अपडेट भी आपको देने वाली हूँ, बहुत स्पेशल है, बस आप बने रहिएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और अभी आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नजर आए अमिताभ बच्चन जी साथ में, जिया जो साथ में रेखा जी एंड एवरीवन। मैं आपको बताती हूँ अभी आज मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत स्पेशल डे है आज एंड बहुत ही खूबसूरत सी यू नो बॉलीवुड अपडेट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जी की। भाईजान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिग बीइंग द सलमान खान लॉन्च कर दिया है। अपने खास अंदाज में उन्होंने कहा ए से जेड तक सब यहां मिलेगा, यानी अब सलमान खान जी के फैंस को उनके नए वीडियो और अंदाज देखने के लिए मिलेगा एक नया ठिकाना। तो भाईजान के फैंस हो जाइए तैयार, बिंग द सलमान खान लॉन्च करने जा रहे हैं सलमान खान जी। और दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती हैं, दिलों में उतर जाती हैं, और कुछ शख्सियतें सिर्फ पर्दे पे नहीं लोगों के दिलों पर भी राज करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है और आज जन्मदिन मनाते हैं हम हिंदी सिनेमा के महान नायक, दमदार आवाज और शानदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अमिताभ बच्चन जी का आज 84 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 84वां जन्मदिन मना रहे हैं आज अमिताभ बच्चन जी। इलाहाबाद में जन्मे, जिसे आज जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी। शुरुआती दौर में संघर्ष का सामना करने के बाद फिल्म जंजीर से उनके करियर को नई पहचान दी। फिल्म दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उनके दमदार अभिनय और भारी आवाज ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान दी। लेकिन दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही है। टेलीविजन के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए भी इन्होंने घर घर में अपनी खास जगह बनाई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आए, परिस्थितियां बदलें, लेकिन अगर इंसान मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़ता रहे ना, तो वो दोबारा अपनी पहचान बना सकता है। तो दोस्तों संडे मॉर्निंग मस्ती शो में अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं हम। उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और लंबी उम्र की कामना करते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां सर, आरजी खुशी और तमाम सुनने वाले श्रोताओं की ओर से भी। एंड दोस्तों उनका एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए सुनवाते हैं हम आपको एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं। और भी अपडेट हैं जो जिनसे आपको रूबरू कराना है, तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए आरजे खुशी को, और अपने संदेश भी हमें पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, अपने टेक्स्ट मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम कैसे हैं आप, जय माता दी, आपको भी जय माता दी। नाना मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की सुबह। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद लौटकर खुशी आती है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरलो पान चबा, लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खाई के भानु बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के भानु बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो

पड़ गया हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

दिखा।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पहन।

0: दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मर्द, शबीर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज। सोचिए, अगर आप रोज ठंड में स्कूटर चलाकर अपने ऑफिस पहुंचते हो और एक दिन आपका बॉस आपको काम के लिए नहीं बल्कि आपकी मेहनत के लिए एक लग्जरी कार गिफ्ट कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ हाँ आप तो सपने में ही चले गए। जी हाँ दोस्तों, चीन के एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपने कर्मचारियों की मेहनत और मुश्किलों को समझते हुए उन्हें लग्जरी कार गिफ्ट की। उनका मानना है कि किसी भी कंपनी की सक्सेस में कर्मचारियों का भी बराबर योगदान होता है। और सच कहें तो एक अच्छा लीडर वही होता है जिसे काम लेना नहीं बल्कि अपने लोगों की मेहनत को पहचानना और उनके करियर केयर करना भी उनको मतलब आता हो। एंड अब जरा सोचिए एवरीवन, अगर ऐसा सरप्राइज हमारे इंडिया में भी मिलने लगे तो ऑफिस में बॉस को देखते ही कर्मचारी के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ जाएगी ना। लेकिन दोस्तों, गिफ्ट कार हो या छोटी सी तारीफ, असली खुशी तब मिलती है जब हमारी मेहनत की वैल्यू की जाती है। एंड एक इंटरेस्टिंग सा ना सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ आज की सुबह। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर आपके बॉस भी आपको ऐसा सरप्राइज दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खुशी से उछल पड़ेंगे या सीधे कार की चाबी लेकर एक लंबी ड्राइव पर निकल जाएंगे? हाँ बताइएगा। अगर आपके बॉस भी आपको ऐसा ही सरप्राइज दें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? खुशी से उछल पड़ेंगे या सीधा कार की चाबी लेकर एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएंगे? हाँ हाँ बताइएगा, कैसा होगा आपका वो रिएक्शन, वो मोमेंट बताइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुलाम जलानी पाशा जी का कुंदरकी से, और ये आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है जय श्री राम दुर्गेश शैनी जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, आपको भी जय श्री राम। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खेमपाल सैनी जी का, एंड ये ट्रेलर लाइन पार हनुमान नगर से मैसेज पहुंचाते हैं। जय माता दी मैडम जी, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सुनने वाले रेडियो के सभी साथियों पर भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक हमें सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना संदेश पहुंचाया आज की सुबह। दोस्तों, लौटकर आती हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, वो मैं यहाँ पर प्ले करूंगी आप सभी के लिए, है ना। और आपको बताना है कि वो डायलॉग कौन सी फिल्म का है, बहुत ही खूबसूरत है। बस मैं लौट कर आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। एंड वंस अगेन आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया, कोई और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और वक्त की अगर बात करें तो समय हुआ है 11:33 और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना। आगे फिल्म से ट्रैक अभी आपने सुना एंड मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। आज की सुबह मैंने आपसे मालूम किया था एवरीवन, अगर बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था मैंने आपसे कि अगर आपके बॉस भी आपको ऐसा सरप्राइज दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगी, खुशी से उछल पड़ेंगे या सीधा कार की चाबी लेकर एक लंबे ड्राइव पर निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ इंटरेस्टिंग से जवाब आए आप सभी।

0: की। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं राजन जी न्यू मुरादाबाद से, और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर शरदी नवरात्रि की। और ये कहते हैं अगर मेरे बॉस मुझे ऐसी लग्जरी कार गिफ्ट कर देना तो मैं खुशी के मारे ऑफिस में ही डांस करने लगूंगा, बस डर इस बात का है कि कहीं बॉस ये ना कह दे कि डांस तो अच्छा करते हो, अब कार की EMI भी भर देना। अरे वाह क्या पाते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर नेहा जी का आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं प्रकाश नगर से। कहती हैं खुशी जी आपको शरदी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। थैंक यू सो मच। और नेहा जी कहते हैं कि मैम मेरे बॉस मुझे कार गिफ्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा जी को घुमाने लेकर जाऊंगी, उनकी खुशी देखकर लगेगा कि मेरी मेहनत सच में रंग लेकर आई है। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राहुल जी का एंड ये मैसेज हमें विकास नगर से पहुंचाते हैं। आज की सुबह नवरात्रि की शुभकामनाएं भी देते हैं और कहते हैं कि खुशी जी आज अमिताभ बच्चन जी का भी बर्थडे है तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड कहते हैं कि खुशी जी ऐसी कार मिल जाए तो सबसे पहले मैं बॉस से पूछूंगा सर चाबी के साथ पेट्रोल भी फ्री है या उसका अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा जी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपशिका का, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं गांधीनगर से एंड कहती हैं खुशी जी अगर मेरे बॉस मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देना तो शायद कुछ देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं होगा, तो मैं बस कहूंगी सर आज आपने मेरा दिन नहीं मेरी पूरी जिंदगी यादगार बना दी है। ओ वाओ क्या आपको लगता है कि सर सच में आपके बॉस आपको कार गिफ्ट कर सकते हैं? वैसे कर भी सकते हैं ना, क्योंकि जब इंसान मेहनत करते हैं ना तो डेफिनेटली, पर ये जो गिफ्ट है ना बहुत बड़ा है ना। और अगले मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए दीपक जी का आया है और ये कहते हैं खुशी जी नमस्कार गुड मॉर्निंग आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ दीपक जी। ये मैसेज हमारे पहुंचाते हैं पीतल नगरी से और कहते हैं कि मैम अगर मेरी बॉस ऐसी कार गिफ्ट कर देना तो अगले दो दिन मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचूंगा और बॉस से कहूंगा सर अब तो प्रमोशन भी बनता है ना, क्योंकि कार की टैक्स ड्राइवर के लिए भी तो समय मुझे चाहिए ना। ओ वाओ वैसे आपने कमाल कर दिया, किसी को कार में मम्मी पापा जी को घुमाना है तो किसी को पेट्रोल फ्री चाहिए तो किसी को प्रमोशन, लेकिन दोस्तों बॉस अगर सच में इतने दिलदार मिल जाए ना तो कर्मचारी भी दिल से काम करेगा और ऑफिस का माहौल भी बना रहेगा, है ना। और हमारे पास यहाँ पर कुछ बड़े प्यारा सा एक खूबसूरत सा वॉइस नोट भी आया है तो मैं ना उनको प्ले कर लेती हूँ कि आज की सुबह मैम ने क्या पहुँचाया है नवरात्रि स्पेशल, उनकी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि वो जब भी कुछ मैसेज पहुँचाती है ना बहुत ही खूबसूरत होता है।
1: बात बाबा FM सुनने वाले राधे राधे खुशी खुशी नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी मुरादाबाद बाबा FM सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो अमित जी का बर्थडे है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और उनसे तो वैसे भी अटैचमेंट ज़्यादा है क्योंकि वो भी प्रयागराज के हैं, मैं भी प्रयागराज की हूँ। और जब वो इलाहाबाद में इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उनको तो मैंने 2-3 बार और जया भादुड़ी को भी देखा था, और तो उन्हीं की मूवी से एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा सुहाग।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैसेज हमें पहुंचाती है अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से। देखिए कितनी मतलब सौभाग्य की बात है ना दोनों ही एक शहर से हैं, अलका वर्मा जी भी और अमिताभ बच्चन जी भी, नाम भी एक ही है, दोनों का ए से इमेज राशि है दोनों की अलका जी अमिताभ बच्चन जी। और मैम ने कहा कि जैसे मैं भी प्रयागराज से हूँ, सर का भी जन्म प्रयागराज में ही हुआ है, आज उनका 84 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 84वां जन्मदिन मना रहे हैं आज अमिताभ बच्चन जी। और मैंने उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर चुना है फ्रॉम द मूवी बंटी और बबली से, अब तो आप समझ गए होंगे ना। हाँ जी, आपने आज सुबह सुबह नैनो में काजल भी तो लगाया है ना, तो ये गाना तो बनता है आज की सुबह, एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: कम्प्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिल तो मेरा भी ले लिया है आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों ने। जब आपके यहाँ पर प्यारे खूबसूरत मैसेज आते हैं ना दोस्तों, तो सच कह रही हूँ मैं, मेरा दिल ना खुशी से डांस करने लगता है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग प्ले कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि डायलॉग कौन सी फिल्म का है, फटाफट से पहचानिए और अपना सही जवाब हमें पहुँचाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। डायलॉग सुनिएगा ध्यान से।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: हाँ जी, तो बस आपको यही बताना है कि जो मैंने ये डायलॉग प्ले किया है ना, कौन सी फिल्म का डायलॉग है। आपको फिल्म का नाम बताना है और अपने नाम के साथ सही जवाब हमें पहुँचाना है आज की सुबह। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और एक शानदार सा ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। और ये खूबसूरत से गाना आप सभी के लिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने सुना शबीर कुमार साथ में लता मंगेशकर जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक, लता जी की आवाज में. साथ में शबीर कुमार जी दे रहे थे साथ गोरी ही कलाइयां, मिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियां. और दोस्तों, मैंने ना आज आपसे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है एंड मैंने एक डायलॉग प्ले किया है. आपको बताना था ये डायलॉग कौन से फिल्म का है. एक बार फिर से सुनिएगा.
1: पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
0: हाँ जी, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये डायलॉग कौन से फिल्म का है और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सही जवाब हमें पहुँचाते हैं. कौन है वो, उनका नाम हम आपको बता देते हैं. बस एक सेकंड रुकिएगा एंड क्योंकि बहुत सारे मैसेज यहाँ पर आ गए हैं आज की मॉर्निंग और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया है. सबसे पहले हमें सही जवाब आज की मॉर्निंग पहुंचाया है विकास जी ने, तो जोरदार तालियां आपके लिए.

0: हाँ जी दोस्तों, तो ये आपके लिए है एंड जोरदार तालियां क्लैपिंग, क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब और हमारे आज के शो के लकी सुपरस्टार बनते हैं विकास जी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जवाब पहुंचाया है फ्रॉम द मूवी कालिया फिल्म का ये डायलॉग था और इस खूबसूरत डायलॉग को डायलॉग डिलीवरी की थी अमिताभ बच्चन जी ने, आज उनका बर्थडे है। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कालिया मूवी अमिताभ बच्चन जी, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं संदीप सागर जी मुरादाबाद ग्राम सहल से, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। और अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, ये आपने डॉक्टर सुरेश कुमार जी थोड़ा सा गलत आंसर कर दिया है, एक्चुअली मूवी का नाम आपने गलत बताया है, बट मूवी का नाम है कालिया। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं प्रेम नगर माता मंदिर लाइन पार मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमारे पास आया, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, आपने भी इस जवाब को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, होता है कभी कभी ऐसा। और अब हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की ऑन स्क्रीनिंग जोड़ियों की बात अगर करें तो हेमा मालिनी जी के साथ उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया है, और वहीं अगर बात करें अभिनेता की तो उनके जी हाँ मेल अगर स्टार की बात करें तो एक्टर की बात अगर करें तो उन्होंने शशि कपूर जी के साथ सबसे ज्यादा काम किया है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें हम अभिनेत्रियों में मैंने जैसे आपको बताया है कि हेमा मालिनी जी के साथ लगभग 16 फिल्मों में इन्होंने काम किया है, नेक्स्ट परवीन बॉबी जी के साथ 12 फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और राखी गुलजार जी के साथ 13 फिल्मों में काम किया है, और रेखा जी के साथ उन्होंने 11 फिल्मों में काम किया है, जया बच्चन जी के साथ 9 फिल्मों में काम किया है। और हमारी तरफ से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें अच्छे सेहत खुशियां और लंबी उम्र दे, और वो यूं ही अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतते रहें। तो आप सभी को भी दोस्तों नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाए, और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो सब आपको मिल जाए। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे, सी यू सून, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आपने पार्टिसिपेट किया, आई होप आपने कार्यक्रम को एंजॉय किया होगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे 3 से 5, तब तक के लिए क्या करना है आपको, अपना ध्यान रखना है, और आज आपका भी उपवास होगा, मुझे पता है बहुत सारे श्रोताओं ने आज व्रत रखा है, उपवास रखा है, और माता रानी की अखंड ज्योत घर में जल रही है, तो बस यही प्रार्थना करते हैं माता रानी जी से कि सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में, ना ट्रैफिक की चिंता ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा, मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण पिछले कई हफ्तों से आप लोग सुन रहे हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो पर, और इसमें हम आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं चंबल फर्टिलाइजर्स के, और आज ये हमको इस विषय में जानकारी देने वाले हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आज किस विषय की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है।
2: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार संज्ञा जी। और आज का जो हमारा विषय है वो है संतुलित फसल पोषण, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके क्या लाभ है खेती, और उसके बारे में चर्चा करेंगे।
1: जी हाँ, इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय है उसके संचालित PMKSK एक जो केंद्रों के बारे में योजना है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहिए।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम

0: हम जो उर्वरक मंत्रालय का है, अगर आप ऐसे समझे पीएम केयर्स के, तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद, जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके हैं, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है, जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है, और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे, उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे। लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं, वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है, तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं, जो पीएम केयर्स के हैं, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब यह है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है। और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है, तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं, उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है, उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं, तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी
1: नहीं,
0: नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है, उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है, और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ, लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया, उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया, तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है, तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है, या खरपतवार नाशी है, या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: पीएम के एसके के बारे में तो ये जानकारी आपने हमको बहुत अच्छी तरह बताई, लेकिन अब आप ये बताइए कि उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है
0: जी,
1: वो क्या है और उसका क्या उद्देश्य है?
0: जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद चलिए अब हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं जो है संतुलित फसल पोषण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसलों के संतुलित पोषण से तात्पर्य क्या है?
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर बात आती है कि यार ये तो खेती बाड़ी है इसमें संतुलित पोषण ये सब बातें क्या आ गई, खेत की मिट्टी है इसमें कुछ भी डाल दो और हो जाता है अपने आप, अगर एक्स्ट्रा डाला है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डाला है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं है। संतुलन से होता है कि हर चीज में संतुलन है, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो कोई चीज उसी अनुपात में कम होने लगती है। और कोई चीज अगर जो मतलब जो कम हो जाए तो फिर उसका उसी तरह से उसका असर दिखता है। अब अगर ऐसा कोई कहे कि भाई पंजाब में जो धान होता है और जो छत्तीसगढ़ में धान होता है उसकी की जो जो मांग है वो एक ही होगी, ऐसा नहीं। आम तौर पर धान की फसल के हिसाब से देखें तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन धान की जो हम छत्तीसगढ़ में उगा रहे हैं उसकी जो उर्वरक की मांग है, जो पोषण की मांग है, वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ की जो खेत, यहाँ की जो मतलब मिट्टी और आबोहवा है वो थोड़ी अलग है, और जो हम जो पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं वहां पे वो अलग होगी। तो अब हर जगह के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या और भी जो संस्थाएं जो कि सॉइल टेस्टिंग कराती हैं, मिट्टी की जांच कराती हैं, वो उसमें अनुसंधान उन्होंने किया है और वो देखते हैं कि इस जगह पर इस तरह से हम अगर पोषण देंगे, अतिरिक्त पोषण, अतिरिक्त पोषण से उर्वरक के द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और जैसे कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, हरी खाद है, इनके द्वारा दिया जाता है, तो हमारी फसल को एक जो आहार चाहिए उसको, जो उसको पोषण चाहिए वो पूरा मिलेगा। ये हर राज्य का, और मैं तो कहता हूं एक राज्य में हर क्षेत्र का अलग अलग भी हो सकता है, तो उसकी मांग के अनुसार ही अगर हम जो पोषण देते हैं तो उससे हमें काफी लाभ होते हैं, और लाभ से संदर्भ भी है कि हो सकता है कि क्षणिक रूप से हमें कुछ ऐसा न लगे लेकिन लंबे समय के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलित पोषण से तात्पर्य यही है कि जितनी मांग, जितनी आवश्यकता, उतना ही हम दें और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाए। ज्यादा देने का अर्थ, या असंतुलित अगर हम देंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ज्यादा लाभ उससे मिलेगा, उससे लाभ की संभावनाएं नहीं होती है, लेकिन अगर हम सही मात्रा में सही समय पर उर्वरक देंगे या पोषण देंगे तो उसे ही हम संतुलित पोषण कहते हैं, तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे।
1: तो फसलों में संतुलित पोषण से क्या तात्पर्य है श्रोताओं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है फसलों में, आइए अब हम ये जानते हैं डॉक्टर सिंह से।
0: जी हाँ, क्यों आवश्यक है? अगर आप देखें तो जैसे आज के समय में सघन खेती हो रही है, सघन खेती से ये अर्थ है कि एक फसल ली उसके बाद दूसरी फसल ले ली, अगर खेत खाली हुआ और मौका है तो हम तीसरी फसल भी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम क्षेत्र से ज्यादा लाभ ले सके। मांग भी है उत्पादों की, जैसे कि मान के चले कि अभी हमारे यहाँ धान हो रहा है, धान के बाद हमें लगेगा हम गेहूं ले लेंगे, गेहूं अगर टाइम पे कटाई होगी तो उसके बाद मक्का ले लेंगे और मक्का के बाद फिर हम धान ले लेंगे। तो आप देखिए कि साल में हमने तीन फसलें ले ली, और तीन फसलों के हिसाब से ले लेंगे अगर 4 महीने के हिसाब से, तो लगभग ये है कि 12 महीने पूरे होंगे। अब ऐसी सघन खेती में अगर पोषण का हमने सही ध्यान नहीं रखा तो फसलें हमारी कमजोर होने लगेंगी और हमें उत्पादन सही नहीं मिलेगा। उत्पादन सही मतलब ये है कि हम बीज डालेंगे, जैसे आज की तारीख में अगर हम सघन खेती करें तो हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना, बहुत महंगे आते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट में भी सूखा, बारिश, ये भी इनके भी असर होते हैं। तो अगर हमने संतुलित और सही समय पर पोषण नहीं दिया तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, फसल कमजोर रहेगी, उसमें रोग बीमारी या जो मतलब कीटे हैं उनका भी प्रकोप ज्यादा होगा। जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर है वो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें बीमारियां कम लगती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इम्यूनिटी आहार, विहार और विचार, तीन चीजों से आ जाती है। अगर हम अपने शरीर का देखें, आहार मतलब हमारा भोजन, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम करें, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करें, व्यायाम करें, तो संतुलन शरीर का बना रहता है, और थॉट प्रोसेस हम अपनी संतुलित रखें, बहुत ज्यादा उद्वेलना में रह रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से ठीक रहता है। लेकिन अगर हम इससे हट जाए तो फिर हमारी स्थिति ये हो जाती है कि छोटी छोटी जो समस्याएं आती है, या कोई मतलब मौसम का परिवर्तन हुआ, क्या ये कोई और चीज हुई, तो हमें कभी जुकाम हो गया, तो कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, ऐसी बहुत सारी, इसी तरह खेत में है। अगर संतुलित पोषण देंगे तो खेत के अंदर पोषक तत्वों की जो एक स्तर होना चाहिए वो सही बना रहता है, फसल अच्छी होती रहती है, उत्पादन ठीक मिलता है, और जो आपने इनपुट लगाया है, जो आदान आपने दिए हैं, उसके हिसाब से जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलता रहता है।
1: जी,
0: इसलिए आवश्यक है संतुलित पोषण।
1: फसलों में संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है, ये जानकारी तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये संतुलित पोषण हम कैसे फसलों तक पहुंचा सकते हैं, किस किस मात्रा में हमको पहुंचाना चाहिए, कैसे ये पता चलेगा कि संतुलित पोषण हम दे पा रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
0: संतुलित पोषण कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि हमें तो भाई जो जानकारी नहीं है कि संतुलित पोषण हम कैसे करें, इस खेत को कितना चाहिए और इस फसल ने जो मतलब कितना लिया। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको सही रूप में या वैज्ञानिक रूप में हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बड़ी साधारण सी और अच्छी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, वो है मिट्टी परीक्षण। हम खेत की मिट्टी की जांच कराएं। वैसे तो अगर हम कहें कहीं पर अगर कोई वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो वो हर फसल से पहले कराते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम साल में एक बार खेत जब आपका खाली हो तो मिट्टी का नमूना लें और उसकी जांच कराएं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व तो आपके खेत में उपलब्ध है और क्या उनकी मात्रा होनी चाहिए। फिर तो उसके साथ साथ आप ये भी लिखते हैं कि कौन सी फसल आप लेने जा रहे हैं। फसलों का जब आप नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक उसमें अपनी तरफ से मिट्टी की जांच को देखकर लिखते हैं कि इस फसल को इस समय पर ये आपको पोषक तत्व तो देने हैं, इस समय पर ये पोषक तत्व तो देना है। तो उससे क्या है कि जो फसल आप ले रहे हैं उसकी पूर्ति होगी और जो खेत में पोषक जो स्तर रहना चाहिए वो उसमें बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती। तो अगर आप इस ओर जाना चाहते हैं कि आप जो संतुलित पोषण हो आपके खेत में, तो मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं।
1: श्रोताओं, हम पिछले अंक में खेती किसानी के आप लोगों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। वो मिट्टी का नमूना अगर आप लोगों को भेजना चाहें तो वो कहाँ भेज सकते हैं? हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से इस बारे में भी बता दो।
0: उसके लिए देखिए, एक तो क्या है, आपके क्षेत्रीय लेवल पर कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। वहां मिट्टी का नमूना लेके जाएं और फ्री में जांच होगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी अपनी प्रयोगशालाएं होती है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। दूसरा, अगर वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोई या रिसर्च स्टेशन है, वहां पर मिट्टी की जांच की भी जो सुविधा है वहां करा सकते हैं। तीसरा, जितनी उर्वरक कंपनियां हैं वो भी मिट्टी की जांच जो कराती है, बीज कंपनियां भी कुछ हैं जो कराती है, तो उनके लिए जो पीएम केएस के हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नमूना दे सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर की भी हमारी दो प्रयोगशाला है, हम साल में लगभग 70,000 सैंपल जो है अपने चेक करते हैं। अच्छा। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसमें कोई हम चार्ज नहीं लेते, सैंपल वहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप सीधे भेज दें, कोरियर से भेज दें, डाक से भेज दें, या आप जो पीएम केएस के हैं और वहां पर अगर हमारे उर्वरक आते हैं तो वहां पर हमारे क्षेत्र के काम करने वाले अधिकारी जाते हैं, फील्ड अफसर जाते हैं, वो आपके यहाँ अगर वो नमूने इकट्ठे तो वहां से वो नमूना भेजेंगे, मिट्टी की जांच होगी और रिपोर्ट आपके एड्रेस पे भी आ जाएगी और हमारे आदमी के पास भी।
1: यदि कोई कोरियर से भेजना चाहे तो मिट्टी कितनी होनी चाहिए?
0: मिट्टी जो है लगभग 400 ग्राम आप लें, गीली न हो, और उसके अंदर सूचना पत्र होना बहुत जरूरी है। सूचना पत्र मतलब आपकी पूरी जानकारी, आपकी खेत की पूरी जानकारी और कौन कौन सी फसलें आप उसमें लेंगे
1: लेते हैं वो जानकारी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी किसानों तक, और किसानों से अब अनुरोध है कि वो लोग अपने फसलों को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और संतुलित पोषण जरूर दें। तो अब संतुलित पोषण कैसे करें ये तो हम जान चुके हैं, संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान क्या है,
0: हाँ जी,
1: इसके बारे में अब हम
0: बिल्कुल संतुलित पोषण देखें। अगर हम तो मुख्य रूप से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इसके उर्वरक हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन अगर अकेला चाहिए तो यूरिया नाम का एक हमारे पास उत्पाद आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर तीनों चाहिए जो कि शुरुआत में फसल में लगाए जाते हैं तो उसके लिए एनपीके आ रहे हैं अलग अलग तरह के, उनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटाश भी होता है, तो जो पौधे का शुरुआती विकास है उसके लिए वो बहुत ही लाभकारी होता है। कभी कभी कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें खास तरह का ही जो जो आपका खाद चाहिए, ऐसा ना देखें, खाद के अंदर क्या पोषक तत्व है उसके हिसाब से देखें कि अगर पोषक की जो मांग उस उर्वरक से पूरी हो रही है तो वो उर्वरक आप लें और अपनी फसल में आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, बहुत सारे, उनके लिए अलग अलग उत्पाद दुकानों पर उपलब्ध होते हैं, उस नाम से होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे कैल्शियम की जो मेरे उसमें जो थोड़ी कमी है तो मुझे कौन सा उत्पाद है, तो वो दुकानदार आपको बताएगा, उस पर लिखा होगा कि भाई इसमें इतने परसेंट है, उसका रेट होगा, कैसे इस्तेमाल करना है। और उसमें कंपनी का भी एक टोल फ्री नंबर हो सकता है या उनके अधिकारी का, तो अगर कोई शंका है तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनका देने का समय होता है, उसमें खेत की तैयारी के टाइम पर देना है। बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो मतलब पोषण है जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि आप जो है ये ड्रिप इरिगेशन है उससे कर सकते हैं। तो ये आप जब वो उत्पाद लेंगे तो उससे होगा। हमेशा ही एक स्थूल उर्वरक का देना उचित नहीं होता, एक अवस्था तक तो स्थूल उर्वरक काम करता है, उसके बाद फिर जब फसल 40 रोज से ऊपर की हो जाती है उस समय पर आप अगर स्प्रे के द्वारा दें, क्योंकि फसल का उस समय पर काफी विकास हो चुका होता है, उसका हरा भाग काफी ऊपर होता है, तो आप जो उसमें जो भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो हरा भाग है या उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो उसको सोखता है और वो अपने सिस्टम में उस पोषण को ले जाता है और वो उसको धीरे धीरे पुष्ट करता है। इसकी जगह अगर आप स्थूल उर्वरक देंगे वो अच्छे से पौधा नहीं ले पाता क्योंकि उसकी इतनी अवस्था हो जाती है। फिर आप जब उसको फेंक के डालते हैं तो वो अगर जो पौधे के पत्ते के ऊपर गिरा तो क्योंकि वो केमिकल है तो वो नुकसान करेगा, और जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें पानी की मात्रा इतनी है वो
1: नुकसान
0: नुकसान
1: नहीं
0: नहीं
1: करेगा।
0: करता।
1: संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान के बारे में तो आप लोगों ने सब जान लिया है। अब संतुलित पोषण करने से क्या लाभ होते हैं,
0: जी जी
1: आपके खेत में आपकी फसलों में क्या फर्क पड़ता है,
0: जी
1: उसके बारे में हमारे श्रोताओं को
0: हाँ,
1: जानकारी दी।
0: संतुलित पोषण जैसे कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर अगर आप लाभ समझे तो आप ये समझिए कि जितनी उपज आपको चाहिए उतनी मिलेगी। जैसे कि आप हाइब्रिड मक्का लेने जा रहे हैं, उसमें पर एकड़ आपको 25 क्विंटल उन्होंने कहा है कि इस बीज के हिसाब से हमें आपको यील्ड आएगी, उपज आएगी 25 क्विंटल 1 एकड़ में या 30 क्विंटल आएगी। अगर आपने संतुलित पोषण दिया मतलब हर पोषण की जो मात्रा चाहिए उतनी दी तो वो 25-30 क्विंटल संभव है उसमें। लेकिन अगर एक एक खास चीज ही आपने अधिक मात्रा में दे दी और कुछ चीजें छोड़ दी तो वो उतनी उपज आपको संभव नहीं, तो मतलब जो जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो आपको जो नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई एक सब्जी आपको बनानी है, उसके लिए खास तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी इतनी, काली मिर्च इतनी, लाल मिर्च इतनी, ये इतना, ये उतना, सारी चीजें आप ऐड करते हो सही और समान मात्रा में, तो उस सब्जी से जो उसका टेस्ट आना चाहिए या जो उससे उसको स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए वो होएगा। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं उसमें अगर कोई वो खास चीज आपने नहीं डाली तो वो स्वास्थ्य के लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहती। अब जैसे कि एक जो सब्जी होती है जिमीकंद होती है, उसको एक खास तरह से तैयार करना होता है, अगर वो विधि आपने नहीं अप्लाई तो वो न तो आपको स्वाद आएगा ना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो इसी तरह से है कि संतुलित पोषण में जितनी जरूरत और जैसे आपको देना है वो अगर आप देते हैं तो एक तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, उपज अच्छी मिलती है, दूसरा उसमें हर चीज दे रहे हैं तो किसी चीज पे आप ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे कोई आदमी को बोल दो कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो घी पिया करो, तो वो घी घी पिए जा रहा है तो बीमार हो जाएगा वो, और घी पे खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अब उसके साथ अगर वो सब्जी खाए तो सब्जी सस्ती भी आती है, लेकिन एक सही मिक्स बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। इसी तरह से पोषण के बारे में हमेशा ये ध्यान रखें, जो चीज जितनी जरूरत है उतना अगर आप देते हैं तो उसके आपके खर्चे कम होते हैं, फसल स्वस्थ होती है, उपज अच्छी मिलती है, और जो उससे उत्पादन आपको मिल रहा है, जो उपज आपको मिल रही है, चाहे वो सब्जी ले रहे हैं आप, चाहे आप अनाज ले रहे हैं, उसकी पौष्टिकता और उसकी जो क्वालिटी चाहिए, जैसे मान के चले सरसों है, सरसों की फसल आप ले रहे हैं, सरसों में हमें सल्फर चाहिए, सल्फर से क्या होता है प्रोटीन बनती है और ऑयल की जो जो जो जो उसके अंदर तेल के कंटेंट है वो बढ़ते हैं, और उसका जो स्वाद है उसमें जो एक तीखापन होता है वो उससे आता है सल्फर से। आपने सब चीजें आपने डाली लेकिन सल्फर छोड़ दी, अगर खेत में सल्फर अच्छी मात्रा में है तो ठीक है अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी कमी हो गई है लगातार आप सरसों उगाते आ रहे हैं तो क्वालिटी में आपको फर्क आएगा। जैसे मैं एक बार जो बंगाल गया था तो वहां के लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्त मस्त मस्टर्ड ऑयल उनका एक जो है अपना स्लोगन है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो कहाँ की सरसों जो पसंद करते हैं, उन्होंने कहा राजस्थान की, मैंने हमारे यूपी में और हरियाणा में बहुत होती है, तो बोले नहीं राजस्थान की जो है उसमें तीखापन ज्यादा, पंजाबी बहुत है, तो वहां उसकी जो क्वालिटी है सल्फर वहां होगा उस हिसाब से उसके अंदर पंजाबी आती है। तो संतुलित पोषण से हमें अनेक लाभ होते हैं, और आज की तारीख में जो मतलब उपभोक्ता है वो हर चीज देखता है और समझता भी है, तो जहां समझ है तो वैसा आदमी पाने की चेष्टा करता है। तो हम संतुलित पोषण करेंगे तो हम एक अच्छी उपज लोगों तक दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ दे पाएंगे और हम अच्छा लाभ ले पाएंगे।
1: तो अच्छा लाभ लेने के लिए सभी श्रोताओं से, सभी किसान भाइयों से हमारा यही कहना है कि जो भी फसल उगाए संतुलित फसल उगाए, जिसमें सही पोषण हो और सही पोषण रहे, उसके लिए आप लोग अपने यहाँ की मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी में जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए वो दवाएं, वो उर्वरक, उनका इस्तेमाल करें। तो आज के इस अंक में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर AK सिंह ने। और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की हमको अनुमति दीजिए। अगले
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हम दोनों सिहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
7: नमस्कार RJ खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
8: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24% 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
6: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
7: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
8: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
6: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
7: बिल्कुल सही कहा आपने RJ खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय यह तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
6: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
8: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कैलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
7: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
6: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
9: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
10: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी?
9: बिल्कुल, जन्म के एक घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
11: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
10: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
12: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
13: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें, सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
10: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
6: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
7: बिल्कुल जरूरी है जी खुशी, जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
8: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की 0 खुराक शामिल है।
7: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
6: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
7: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
6: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
8: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है है और इसके लिए इसे गोल्डन आर कहते हैं।
6: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आर इतना जरूरी क्यों है?
7: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
8: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, यह बच्चे की पहली सुरक्षा है।
6: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
8: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा, दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
7: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
6: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
8: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
6: गर्मी में पानी भी नहीं?
7: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
6: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
8: हाँ, रोना भूख नहीं होता, बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
6: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
8: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
7: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और चूँकि देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
6: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
7: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
8: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
6: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
7: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
8: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
6: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
8: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
6: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
7: सच्चाई ये है आरजी खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
6: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
8: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
6: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
8: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
6: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
7: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
8: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
6: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
7: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
8: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
7: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
8: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती है।
6: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
7: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
8: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
6: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
8: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करें।
6: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
8: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
7: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
6: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
8: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
7: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
6: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
14: सेहत सही तो लाभ गई।
8: पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।
15: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
16: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है। और फिर हम बिना जाने अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या दूसरों से तो हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है। तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं।
3: मैं आज रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में उसने तुमसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, कॉलेज में उसके नौकरी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? और बड़े होते होते तुलना बदल जाती, तनख्वाह, गाड़ी, घर, रहन सहन, शादी, बच्चे और आजकल सामाजिक माध्यमों पर दिखाई जाने वाली जिंदगी, मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई ना कोई तुलना हमारा इंतजार कर रही होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, यानी कि ये मेहनत पर निर्भर करता है। आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों को बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करे, खुद पर ज्यादा काम करे। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना उतना ही आपको टेंशन होगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
2: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे

0: एक बार फिर से और कनेक्ट हो गए श्रोताओं, आप सभी के बीच बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और हम शो कर रहे हैं यानी कि सोच बदलो। मोस्टली आप सभी आनंद को सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलो में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसे कि मैंने आप सभी को बताई है, श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में, तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो लाइक हमारी हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती हैं, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं, राइट ना? तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: ऐसा नहीं होता है,
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का, देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे हैं, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

0: जी, एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोता। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए, सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम पीछे हैं, तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, आगे बढ़े, सबसे बातें करे। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़के की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया, हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो। बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में, आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है, लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को दो, वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे, हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है, यार मैं अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहां करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए, उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना तो पूरा कायनात भी ये क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है, तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे कर वो और भी अच्छा करें। क्यों? और दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों, आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूं? अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटे वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दे।

0: देखिए हम अपने वादे के अनुसार लौटकर आ चुके हैं आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है सोच बदलो और दोस्तों तुलना से बाहर कैसे निकलें ये हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ी काम की बातें भी कर लें कि दोस्तों अगर आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली बात, सामाजिक माध्यमों पर से थोड़ा कम कीजिए, दूसरों की बातें अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाइए। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। और चौथी बात, किसी और की सफलता देखकर जलने की बजाय खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। और पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्रगति भी प्रगति होती है एवरीवन, जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो भी एक जर्नी होती है, बड़ी खूबसूरत सी। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होगा ना तो मंजिल भी यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल होगी।
1: अब मैं एक मजेदार बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। कभी कभी हम अपने जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी देखने में बहुत व्यस्त होते हैं। आपके पास जो है शायद किसी और का सपना हो, आपका परिवार, आपका घर, आपका काम, आपका हुनर, आपके अपने लोग, या फिर एक बस शांत सुबह। हर चीज को सफलता के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग हो सकती है। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, क्या पता उसका सपना हो, वो करना चाह रहा हो और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप अपने सोच पर ये बात हाँ मत होने दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को बदलिए और खुद को ऐसा बदलिए कि सामने वाला कहे वो जले ना, बस उसके दिमाग में इतना सोच आ जाए कि ये आगे बढ़ सकता है, भाई ये ऐसा बढ़ सकता है तो मैं भी इसे प्रेरणा ले लेता हूँ कि भैया तूने कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
0: एक लाइन मुझे याद आ रही है, बड़ी खूबसूरत सी है कि जब बदलते हैं नजरें तब बदल जाते हैं नजारे, जब बदलता है नजरिया तब बदल जाते हैं नजारे, जिंदगी में मानो तो सुखी सुख है, न मानो तो जिंदगी है दुख का दरिया।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओं एक और कहावत, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो जरूर आता है।
0: ये सर्कल चलता रहता है जिंदगी में, आप भी घूमते रहिए, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जो होगा बेस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है नेहा शर्मा की। नेहा एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में कामों में मदद करने वाली और अपने छोटे छोटे सपनों के साथ खुश रहने वाली। लेकिन नेहा की एक आदत थी, वह हर समय अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहती थी। उसकी एक सहेली थी रिया। रिया की नौकरी न से पहले लग गई। नेहा ने सोचा देखो रिया मुझसे आगे निकल गई। समय बाद रिया ने नई गाड़ी खरीद ली। नेहा ने फिर अपने मन में कहा मेरे पास तो अभी पुरानी स्कूटी ही है। फिर रिया की शादी हो गई। अब नेहा को लगने लगा उसकी जिंदगी तो पूरी तरह सवर गई है और मैं अभी तक वही खड़ी हूँ। धीरे धीरे नेहा अपनी जिंदगी की खुशियाँ भूलने लगी। वह सुबह उठती तो मोबाइल देखती, दूसरों की तस्वीरें देखती, किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी की जर्नी, किसी की शादी, और फिर अपना जीवन देखकर उदास हो जाती। एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ बैठी। माँ ने पूछा बेटा आजकल तुम बड़ी चुप चुप सी रहती हो, क्यों? नेहा ने कहा माँ लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने नेहा से कहा बेटा तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी का हिसाब रखती हो, कभी अपनी जिंदगी का हिसाब भी लगाया है? नेहा चुप हो गई। माँ ने आगे कहा तुमने पिछले साल अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, पापा के इलाज के समय घर संभाला, अपनी पहली नौकरी के लिए कितनी मेहनत की और सबसे बड़ी बात तुमने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो, हो सकता है जिस जिंदगी को तुम कम समझ रही हो कोई और उस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। ये बात नेहा के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार मोबाइल एक तरफ रखा और कागज पर लिखा मैं दूसरों से नहीं कल वाली नेहा से मुलाकात करूंगी। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स नोट करनी शुरू कर दिए। अगले दिन अपनी पुरानी किताब निकाली, एक नया कौशल, एक नई स्किल सीखने का फैसला किया, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और सबसे जरूरी उसने दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद नेहा की जिंदगी अचानक बिल्कुल नहीं बदल गई थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है। नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल मत समझिए। और अगर तुलना करनी ही है तो आज अपनी तुलना कल वाली अपनी तस्वीर से कीजिए, क्योंकि असली जीत तब है जब आप कह सकें, हाँ मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ। यही है आज की सोच बदलो की असली सोच। दोस्तों, आज की सोच बदलो से जाते जाते बस एक बात अपने साथ लेकर जाइएगा, दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा पर शक मत कीजिए। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं, किसी की खूबसूरत तस्वीर आपकी जिंदगी को कम खूबसूरत नहीं बनाती, और किसी का आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाना आपके अंदर से पहुंचने का परिणाम नहीं है। बस अपना रास्ता देखिए, अपनी मेहनत देखिए, अपनी प्रगति देखिए। कल अगर आप आज से एक कदम भी आगे बढ़े तो आप जीत रहे हैं। और आज की सोच बदलो का सबसे बड़ा संदेश, दूसरों से मुकाबला करना बंद कीजिए, नहीं कल से मुकाबला कीजिए, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं आपके कल वाले रूप से है। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी, मिलते हैं अगले सोच बदलो में एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मत तोलिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी की नकल नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल अनोखी कहानी है। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
5: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
4: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
0: है।
1: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देर आर लॉट ऑफ चीज, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है।

0: बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ। एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो। डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे। आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ। अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
1: एब्सोल्युटली। तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। जैसे कि मैम ने कहा, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर। ठीक है, अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरसनेस जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है। कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके भूले के लिए,
1: करेक्ट करेक्ट,
0: गवर्नमेंट
2: दैट वी एंड मिड डे न्यूज।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच

0: इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
3: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
4: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
3: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
5: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
3: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी चक्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
6: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
7: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
8: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर।
10: सस्ता सोना मिल पाता?
11: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
12: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
10: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
13: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
10: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
14: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहें जी। और हर बार की तरह हम इस महिला मंच में और भी एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और इस शो में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है, जहाँ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल सुविधा की जो आने वाले समय में आपकी मेडिकल फाइल, आपकी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और आपके इलाज रिकॉर्ड को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्या आपने कभी अस्पताल में पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने में परेशानी झेली है? क्या कभी डॉक्टर ने कहा कि पुरानी जांच फिर से करानी पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं मिली? अगर हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे आभा आईडी क्या है, क्यों बनाई गई, कैसे बनती है, क्या यह आयुष्मान कार्ड से अलग है, इसके फायदे क्या है, डेटा कितना सुरक्षित रहता है और इससे जुड़े कई मिथकों का भी सच जानेंगे। तो बने रहिए आरजे रीना के साथ और आरजे खुशी के साथ। आरजे खुशी से जानना चाहती हूँ कि मैं आखिरकार आभा आईडी है क्या?
15: श्रोताओं, आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए खुशी एंड रीना दोनों कुड़िया यहाँ पर आती हैं आपके लिए एवरी डे कुछ ना कुछ खास लेकर, और आज हम बात करने वाले हैं आभा आईडी क्या होती है, रीना जी का सवाल है। तो और श्रोताओं, आपका भी यही सवाल होगा ना कि आभा आईडी क्या है? बहुत सारे श्रोताओं को पता है, कुछ ऐसे भी हमारे श्रोता हैं जिनको नहीं मालूम है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथियों, आभा आईडी का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है। यह आपकी मेडिकल पहचान बनाती है। इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब आसान उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है जिससे आपकी पहचान होती है, उसी तरह आभा आईडी आपकी स्वास्थ्य पहचान है। अब श्रोताओं, मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आपने आभा आईडी का नाम पहले सुना था? अगर सुना था तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है? मैं आपको बताती हूँ, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा ना आपसे, जिनको मालूम है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि हम उनको बताने वाले हैं आभा आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है। पुराने समय में फाइल खो जाती थी, रिपोर्ट बार बार बनवानी पड़ती थी, इलाज का रिकॉर्ड अलग अलग अस्पतालों में बिखरा रहता था। डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए की गई है। सोचिए अगर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक सुरक्षित डिजिटल खाते में उपलब्ध हो जाए तो इलाज कितना आसान हो सकता है। आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड में अंतर क्या है ये बताने के लिए रीना यहाँ पर है। पर बताने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

तो देखिए श्रोताओं, हर दस्तावेज का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक उसी तरह आप आईडी और आयुष्मान कार्ड में भी दो अलग अलग चीज है। नाम में आयुष्मान शब्द आने की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानेंगे पहले आयुष्मान कार्ड के बारे में। सो हम सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा हुआ कार्ड है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है तो वह आयुष्मान कार्ड के माध्यम से तय नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज का लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं आभा आईडी। आभा आईडी का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह आपकी एक डिजिटल हेल्थ पहचान है। इसका उद्देश्य है इलाज का खर्चा देना नहीं, बल्कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी और अन्य हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित रखने में मदद करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी अनुमति से उन्हें आसानी से देखा जा सके। तो श्रोताओं, आइए हम इसके कुछ मिथकों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और जानेंगे और भी ढेर सारी बातें। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। सुनते रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम आपका शो फेवरेट लेकर हाजिर हैं महिला मंच। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, आभा आईडी के बारे में और अभी हमने बात की थी मिथक के बारे में। तो दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जहां नई चीज आती है वहां उसके बारे में तरह तरह की बातें भी फैलने लगती हैं। कोई कहता है ये सही नहीं है, कोई कहता है मत बनवाओ, तो कोई बिना पूरी जानकारी के ही दूसरों को सलाह देने लगते हैं। आभा आईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम ऐसे ही कुछ मिथकों की बात करेंगे ताकि सही और गलत का फर्क साफ हो जाए। सबसे पहला मिथक है आभा आईडी बनवाने में पैसे लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई कहे कि भाई आभा आईडी बनवानी है तो 300 या 500 रुपए लगेंगे, तो क्या आप मान लेंगे? असलियत ये है कि आभा आईडी बनवाना पूरी तरह निशुल्क है और अगर कोई इसके नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए, हो सकता है वह गलत जानकारी दे रहा हो, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा मिथक है एवरीवन, ये सिर्फ आयुष्मान कार्ड वाले के लिए नहीं, ये भी पूरी तरह गलत है। मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, क्या दूसरे व्यक्ति की हेल्थ हिस्ट्री महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए आभा आईडी हर भारतीय नागरिक बना सकता है। अब तीसरा मिथक, सरकार मेरी सारी मेडिकल जानकारी बिना पूछे देख लेंगी। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सच ये है कि आपकी स्वास्थ्य जानकारी पर आपका अधिकार होता है। किसी डॉक्टर या अस्पताल को आपका रिकॉर्ड देखने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत होती है, यानी फैसला आपके हाथ में है कि आप किसके साथ अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी जरूर लें, जागरूक बनिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। रीना, आप मुझे कल एक महिला की कहानी सुना रही थी, तो हमारी श्रोताओं को भी उनके बारे में बताइए।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे फिर बताएंगे। तो श्रोताओं बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या बात है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत ही शानदार गाने के बाद फिर से कनेक्ट हो गए हैं और एक छोटी सी कहानी जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए श्रोताओं, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यानी कि मुरादाबाद के पास एक छोटे से गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। दो बच्चों की माँ, घर की जिम्मेदारियां और खेत का काम। दिन कब शुरू होता था और कब खत्म उसे खुद भी नहीं पता चलता था। एक दिन उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। वह उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने पूछा, पहले कभी ऐसा हुआ था? कोई पुरानी रिपोर्ट्स हैं? सीमा ने बैग खोला, कुछ कागज थे लेकिन जरूरी रिपोर्ट घर पर रह गई थी। डॉक्टर को इलाज शुरू करने में थोड़ी कठिनाई हुई और कुछ जांच दोबारा करानी पड़ी। कुछ महीने बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। उन्होंने लोगों को आभा आईडी के बारे में बताया। पहले तो सीमा ने भी सोचा, ये भी कोई नया कागज होगा, मुझे इसकी क्या जरूरत। लेकिन जब पूरी जानकारी मिली तो उसने अपनी आभा आईडी बनवा ली। कुछ समय बाद उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हुई। इस बार अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा कि क्या डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध है और परिवार की सहमति मिली। वहां डॉक्टर को इलाज समझने में सुविधा हुई। घर लौटते समय सीमा ने अपने पति से कहा, अगर हमें पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद पिछली बार इतनी परेशानी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम समय रहते सही जानकारी ले, डिजिटल सुविधा तभी उपयोगी होगी। तो श्रोताओं, जब हमें सही जानकारी होगी तभी हम अपने सारे काम आसानी से करवा पाएंगे। इसीलिए आभा आईडी आयुष्मान कार्ड बनवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना आभा आईडी केवल एक कार्ड नहीं बल्कि भविष्य की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है। यदि आपने अभी तक आभा आईडी नहीं बनवाई है तो सही जानकारी लें और अधिकृत माध्यम से इसे निशुल्क बनवाएं। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसी तक को भी ये जानकारी पहुंचाइए। मैं अब आपसे लेती हूं जाने की अनुमति। मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद
0: 89.6।
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।
1: बाय बाय,
0: टेक केयर।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
6: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिंदास बोल शो में। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और आज नवरात्र शरदी नवरात्रि का पहला पावन दिन है माँ शैलपुत्री का। आप सभी को शरदी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आज खुशी अकेली नहीं है, खुशी के साथ यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल गर्ल है जिसकी वॉइस भी बहुत स्वीट है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। और चलिए लाइव उनसे भी बातचीत करते हैं, हमारे स्टूडियो में आई हैं। आपने उनकी कई शोज में आवाजें भी सुनी होंगी। ओहो, गेस कर पा रहे हैं आप, अरे वाह क्या बात है। वैसे श्रोताओं, आपसे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब आपके खूबसूरत संदेश आते हैं तो दोपहर और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो बात कर लेते हैं प्राची से। हाय प्राची, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, जय माता दी, कैसी हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून, जय माता दी, आज ही खुशी, कैसे हो आप?
0: आई एम हैप्पी टुडे।
1: और मैं भी बहुत खुश हूँ, आज है शारदीय नवरात्र, तो हमारे सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे,
0: और आपको लाइफ में सारी खुशियां मिले जो आप चाहते हो, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हों।
1: हाँ बिल्कुल, हमारी माता रानी हम पे, हमारी श्रोताओं पे अपनी कृपा बनाए रखना। और आपसे तो आपके साथ दोबारा लाइव आके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। और प्राची, आज शरदी नवरात्रि है, आज आपने भी उपवास रखा है, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, माथे पे तिलक है और चेहरे पर इतनी पॉजिटिव स्माइल है। सुबह से कुछ खाया आपने या फिर ऐसे ही हैं आप? अपने बारे में भी जरा हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हाँ आज ही खुशी, मेरा व्रत भी है और मुझे पता है आपका भी व्रत है क्योंकि आप माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं।
0: छोटे से हैं बस सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि माता रानी जो है वो बहुत करुणामयी है, ममतामयी है, उनसे प्यार से हम उनके लिए कहते हैं ना कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो एक्सेप्ट करती हैं।
1: हाँ माँ तो एकदम स्वीकार करती है, वो होती है ना माँ, माँ का दिल तो ममता भरा होता है,
0: ममता भरा
1: हमेशा अपने बच्चों का दिया हुआ कुछ भी उन्हें पसंद आ जाता है।
0: या एब्सोल्युटली राइट।
1: और सच में जब से माँ की नवरात्र आ गए तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और हम बहुत डांडिया करेंगे, माँ की भजन करेंगे हर शाम।
0: या
1: सच में
0: बहुत स्पेशल है,
1: नौ दिन बहुत स्पेशल होने वाले हैं।
0: यस। और प्राची
1: आपको पता है खुशी,
0: हाँ बताइएगा,
1: जब कन्या पूजन होता है, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाना घर में, उन्हें पूजा हलवा पूरी का भोग लगाना,
0: हाँ
1: कितना अच्छा लगता है। और जब हम छोटी छोटी थे, याद है आपको कितना इंतजार रहता था हमें नवरात्रि का, कि आंटी आएंगी हमें लेके जाएंगी और हमारी तिलक लगाएंगी।
0: हाँ, और पता है प्राची,
1: चुनरी पहनाएंगी
0: मम्मा, सुबह उठकर ही हमें सवेरे सवेरे स्नान कराकर न्यू वस्त्र पहनाकर तैयार करके हमको बैठा दिया करते थे कि चलो अब आपको दावत में जाना है, क्योंकि एक दिन पहले इनवाइट कर देते थे हमारे पड़ोस में जो आंटी होती थी। और मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे हुआ करते थे, तो मेरे भाई लोग बोलते थे कि दीदी के पास इतने सारे पैसे जमा हो गए, हमारे पास क्यों नहीं हुए।
1: उस दिन तो बिल्कुल बहुत मन लगता है, बहुत आनंद आ जाता है।
0: बिल्कुल, और आनंद तो हमारे श्रोताओं को भी आ रहा है हमारी बातें सुनकर। तो चलो क्यों ना एक भजन सुन लेते हैं, अपने शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत भजन के साथ, फ्रॉम द मूवी अवतार से। चलो बुलावा आया है,
1: माता ने बुलाया है,
0: जय

0: 1037-896-896।
1: हाँ जी, और शो का नाम बिंदास बोल, जहाँ पर बिंदास होकर बातें करेंगे आप हमारे साथ,
0: और आप हमसे कर सकते हैं बातें। उठाइए नंबर लगाइए 9837896896।
1: हाँ जी, तो सुनते हैं ये खूबसूरत भजन, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और मेरे साथ कौन है? हाँ जी, अपना नाम बता दीजिएगा. मैं क्या जी, दस दो की हालचाल थोड़े
1: जी. मेरा नाम है प्राची.
0: ओके, तो प्राची मेरे साथ है और आज हमारे शो का नाम तो आपको मालूम ही है ना. बोल तो नहीं गए ना? वेरी गुड, नहीं बोले, बिनास बोल. जी हाँ, जहाँ बिनास होकर बातें करते हैं. और देखिए, दो कुड़ियाँ स्टूडियो विच हैं, बड़ी सोनी सोनी लग रही हैं. हाँ जी, तो प्राची आप मुझे बता रहे थे आज कि आज मेरे लिए स्पेशल दिन है, डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज नवरात्रे भी है और दूसरे आपके फेवरेट एक्टर का भी बर्थडे है. तो कौन है आपके फेवरेट एक्टर? जरा उनका नाम भी हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को भी बताइएगा.
1: जो आज उनका बर्थडे है, जो बस मेरे फेवरेट नहीं, बहुत पूरे हिंदुस्तान उनका दीवाना है.
0: बिल्कुल, इंडिया में तो सब उनके फैंस हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री भी उनके फैंस हैं,
1: जिन्होंने कई दशकों से हमारे दिल पर राज कर रखा है.
0: हाँ
1: जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की. आज उनका बर्थडे है.
0: यस, और आज उनका बर्थडे है. 84 इयर्स के अमित जी हो गए हैं, अमिताभ बच्चन जी.
1: तो हैप्पी बर्थडे.
0: Happy birthday to you.
1: तो अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई,
0: शुभकामनाएं. भगवान उनको लंबे
1: आयु
0: दे और वो हमेशा स्वस्थ रहे. अच्छा हाँ, बोलो बोलो प्राची, आज हम आपको पूरा बोलने का मौका देंगे, आपको रोकेंगे नहीं. आज बोलिएगा.
1: तो खुशी जी, मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता भी अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन होंगे.
0: हाँ बिल्कुल.
1: तो श्रोता, आप फिर देख किस बात की कर रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर लगाइए 9837896896, और जो भी अपना पसंदीदा गाना आप सुनना चाहते हैं हमें भेजिए. और दोस्तों, अगर आप अमिताभ बच्चन जी के तो फैन है सबसे बड़े, तो उनको कोई फेमस डायलॉग भी हमें अपने वॉइस नोट में भेजिए.
0: हाँ जी,
1: हम उसे प्ले करेंगे एफएम मुरादाबाद पे.
0: यस, तो एवरीवन क्या करने है आपको, आपको याद है ना अभी प्राची ने क्या बोला है? प्राची ने बोला है, देखिए आज अमिताभ जी का बर्थडे है और आप उनके फैंस हैं हमें मालूम है, तो हम आपसे ना उनकी जो भी आपकी फेवरेट फिल्म है अमिताभ बच्चन जी की, तो उस फिल्म का डायलॉग आपको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजना है, है ना? इतना सिंपल सा आपको काम करना है. एंड जो दीवानगी है आप अपने तक सीमित रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आपकी दीवानगी हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचे. क्यों?
1: और हम भी जानना चाहते हैं कि आप अमिताभ बच्चन जी के कितने बड़े फैन है.
0: हाँ,
1: तो कितनी दीवानियत है उनके लिए आपके मन में.
0: तो आपको क्या करना है एवरीवन, हमारे ऑफिशियल नंबर पर आपको अपना मैसेज पहुंचाना है. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. और प्राची, एक और खूबसूरत सा गीत है, आपको मालूम है, फ्रॉम द मूवी सुहाग, जो 1979 में आई थी, अमिताभ बच्चन जी और साथ में रेखा जी, बहुत पॉपुलर ट्रैक है, नवरात्रि स्पेशल. और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो क्यों ना इस ट्रैक से शुरुआत, मतलब शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन ये सेकंड गाना जो मेरे दिल को बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा मेरे दिल तक नहीं, अपने श्रोताओं के दिल तक भी पहुंचना चाहिए ये ट्रैक. क्यों?
1: हाँ बिल्कुल खुशी, सुनाइए ना हमें अपना पसंदीदा ट्रैक.
0: चलिए एवरीवन, अभी हम लौट कर आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के इस पार. आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो
0: और मुस्कुराते भी रहो.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: पर खुशी आपके साथ है। और देखिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुहाग, अमिताभ बच्चन जी और साथ में रेखा जी पर फिल्माया गया खूबसूरत सा ट्रैक। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। प्राची आपको कैसा लगा?
1: मुझे तो खुशी बहुत बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं के मन को भी बहुत भाया होगा।
0: बिल्कुल भाया होगा। और आपको मालूम है ना दोस्तों, आज दो कुड़ियां स्टूडियो विच हैं, एक नहीं है दो दो हैं, एक खुशी है और एक प्राची भी है। और हमारे आज आपने बताया है कि आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है, जो कि हमारे सभी ऑडियंस के फेवरेट एक्टर हैं। तो आप कुछ कह रहे थे, कुछ संदेश आए हैं हमारे श्रोताओं के, जरा बताइएगा प्राची किनका मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है।
1: हाँ श्रोता देखिए, रोहन जी पहुंचाते हैं मैसेज।
0: ओ रोहन जी का मैसेज कहाँ से आया है ये बताइएगा।
1: ये सहारनपुर से अपना मैसेज पहुंचाते हैं।
0: ओके क्या पहुंचाते हैं?
1: और देखिए बड़ा ही खूबसूरत लिखा है उन्होंने। ये लिखते हैं कि पता नहीं ये मैसेज आप तक पहुंचेगा या नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी दिल की बातें हम तक पहुंच जाती है। आपसे वो लिखते हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में कि उनसे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी आवाज और अदाकारी हमेशा अपनी सी लगती है। आपको स्क्रीन पर देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे बचपन की बहुत सारी खूबसूरत यादें फिर से जी रहा हूँ। बस दिल से यही दुआ है कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। जन्मदिन मुबारक हो सर, आपसे बहुत प्यार और ढेर सारा सम्मान।
0: अरे वाह क्या बात है, दिल को छू गया है सर का मैसेज। और सर ने बोला था पता नहीं ये मैसेज आप तक पहुंच पाएगा या नहीं, आपने इतनी शिद्दत के साथ अपने दिल की बातें लिखी अमिताभ जी के लिए, तो कैसे न हम तक पहुंचे, कैसे न हम तक पहुंचता, क्यों प्राची बताओ बताओ।
1: ये बिंदास फूल है,
0: ये बिंदास फूल है
1: और यह होती है बातें दिल से दिल तक। तो टेंशन मत लीजिए, आपकी बातें हम तक जरूर पहुंच जाएंगी।
0: बिल्कुल आप पहुंचाइए तो सही, और उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। एंड हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है सनी जी का, और ये भी हमें जय माता दी पहुंचाते हैं। जय माता दी आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्राची आया है, खुशी दीदी जी को नमस्कार, आपके साथ जो दूसरे साथी हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: ये मैसेज अपना हमें पहुँचाते हैं चमरुआ जिला उत्तर प्रदेश से ब्रजेश मिस्त्री जी हैं, साथ में इनकी मिसेस भी हैं कविता जी, इनकी डॉटर हैं वैष्णवी, और ये अपने फैमिली के साथ एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। साथ में कहते हैं कि मैम आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है, तो हमारी ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा है कि मुझे गाना सुनना है, गाना जो मैं आपको बता रही थी ना, याद है, तो तुम्हारे अंगना में हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है तो यही गाने की रिक्वेस्ट सर ने भेजी है। एंड उसके अलावा इन्होंने कहा है कि मैम इस समय हम मैसेज आपको दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 से मैसेज भेज रहे हैं, और मौसम बारिश जैसा हो रहा है लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है, काम कर रहे हैं हम 5 मंजिल की ऊंचाई पर, फिर भी आपका एफएम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप काम के साथ साथ एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और सच में आपके जज्बे को भी सलाम, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके हमारे लिए इतना सुंदर आशियाना बना पाते हैं।
0: या एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं खूबसूरत से गाने, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, रेडियो सुनते जाइए एफएम मुरादाबाद
1: 89.6,
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए, और हाँ मुस्कुराना मत भूलिए।
0: हाँ वो बिल्कुल नहीं भूल रहे, मुस्कुरा रहे हैं पर मैसेज करने में कंजूसी दिखा रहे हैं। ये मत करो, आप जल्दी से मैसेज पहुंचा दीजिएगा, हमें इंतजार है, अपनी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुंचाइएगा।
2: वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और मेरे साथ यहाँ पर प्राची भी हैं। हाय प्राची, वंस अगेन वेलकम बैक, कैसी हो डियर?
1: मैं अच्छी हूँ, आपके साथ हूँ इस शो में तो अच्छी ही हूँ कि बढ़िया हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है। और हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, इस समय लिसनर सुन रहे हैं, वो भी बहुत हैप्पी हैं। कुछ कामों में व्यस्त हैं तो कुछ अभी आराम से बैठे हैं और कुछ अभी चाय बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि अभी वेदर चेंज हो गया है काफी।
1: और शाम का भी तो समय होने वाला है, चार बजने वाले हैं।
0: हाँ,
1: और सब कुछ होता है ना, कुछ लोगों को चाय की आदत होती है शाम में,
0: तलब
1: तलब, हाँ इसे हम तलब कह सकते हैं।
0: हाँ तो उनको ना वो फिर समय नहीं देखते हैं, उनको अगर चाय पीनी है तो पीनी है।
1: वैसे खुशी जी आपको पता है मेरी मम्मी जी को भी बहुत तलब है चाय की, शाम में उन्हें चाहिए चाय।
0: ओके, कुछ भी हो जाए लेकिन चाय ना छूट जाए,
1: चाय की बिना तो उनकी शाम अधूरी है।
0: जैसे हमारी मॉर्निंग अधूरी होती है, मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ। अच्छा। आप पीते हैं चाय?
1: वैसे मैं तो नहीं पीती हूँ चाय।
0: ओके, कभी नहीं पीते हो?
1: हाँ कभी ओकेशनली किसी ने ज्यादा जिद की तो पी ली।
0: अच्छा जी। वैसे मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ एंड ऐसा नहीं है कि अगर ना मिले तो रह नहीं पाएंगे, रह लेते हैं, इतनी भी नई लत लगी हुई है।
1: तो आज हमारी श्रोताओं को पता चला है कि खुशी जी है मॉर्निंग टी लवर।
0: हाँ, उसके बिना दिन अधूरा लगता है और मेरे दिन की शुरुआत हमेशा यू नो ब्लैक कॉफी से होती है, फिर उसके बाद सारे काम करने के बाद फिर चाय पीते हैं।
1: अरे वाह,
0: और वो भी अदरक इलायची वाली चाय।
1: अरे वाह, वैसे अदरक इलायची वाली चाय तो मुझे भी पसंद
0: है ना।
1: तो हमारी श्रोताओं को कौन सी चाय पसंद है
0: वो तो वही बताएंगे। भाई देखो, इतने जादूगर तो हम नहीं है कि हम उनके दिल की बातें जान सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं, प्रॉपरली नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चाय पसंद है।
1: हाँ दोस्तों हमें बताइए, मैसेज करिए हमें 9837896896 पर और बताइए कि आप मॉर्निंग टी लवर है, इवनिंग टी लवर या ऑल टाइम टी लवर।
0: तो अब देखिए, इतना मतलब हमने आपको जान लिया है तो आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमें। और प्राची आप कुछ बताने वाले थे? हाँ, हम अपने ऑडियंस से पूछने वाले हैं, अभी मालूम करने वाले हैं कि दोस्तों आप हमें बताइएगा अमिताभ बच्चन जी की करियर की फर्स्ट फिल्म कौन सी है, फर्स्ट फिल्म कौन सी है जिस फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, फिल्मी करियर की शुरुआत की, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। एंड एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्राची।
1: दोस्तों आपको बताना है अमिताभ जी की फर्स्ट डेब्यू फिल्म जिससे उन्होंने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत की।
0: हाँ जी, उस फिल्म का नाम आपको बताना है और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।
1: और उसके बाद हम आपको बताएंगे अमिताभ जी के जीवन के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात,
0: इंटरेस्टिंग बात
1: जो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर देगी।
0: या तो चलिए अभी लौट कर आते हैं, तब तक के लिए आप सुनिएगा कुछ खूबसूरत गीत। वैसे जब आप आए थे तो बाहर का वेदर कैसा था उस समय पर?
1: वैसे वेदर तो आज का फाइन है, अच्छा है।
0: ओके,
1: अपने काम करने के लिए हम बाहर आ जा सकते हैं, अच्छा है, आज ज्यादा परेशानी नहीं हुई वेदर में, वरना एक दो दिन पहले वेदर बहुत खराब हो गया था अचानक से।
0: हाँ बारिश भी हुई थी ना जब आप स्टूडियो आए थे, आपने मुझे बताया था कि आप भीग भी गए थे और वो बारिश ना ऐसी आई थी बिन बुलाए, बारिश आई
1: बिन बुलाए, और कोई मतलब ऐसे दूर दूर तक तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बारिश हो जाएगी आज के दिन।
0: या
1: पर वो बारिश आई तो सच में बहुत तेज थी।
0: हाँ, और जब बारिश आई ना तो सर्दी की फीलिंग्स भी मतलब आने लगी कि हाँ अब सर्दी आ गई है।
1: और खुशी एक बहुत सारे लोग, मेरी मम्मा बता रही थी कि जैसे श्राद्ध शुरू हुए तो तब भी बारिश हुई और जब श्राद्ध जा रहे थे तब भी बारिश हुई।
0: हाँ
1: तो ये काफी कोइंसिडेंस जैसा है।
0: यस, तो चलिए विवान सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, धूप में ना निकला करो रूप की रानी।

0: रंजीत जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
8: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और मेरे साथ यहाँ पर प्राची भी है। एंड समय मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, वक्त हुआ है 3:54 एंड 3:54 राइट नाउ। स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है, आप भी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। मुझे पता है घड़ी पहनते हैं लेकिन टाइम नहीं देखते हैं आप घड़ी में, टाइम तो आप मोबाइल में ही देखते हैं क्योंकि मोबाइल अपने हाथों में जो होता है। हाँ प्राची, अक्सर आप भी ऐसा ही करती हो, मैंने नोटिस किया है। आप अपने वॉच पर ध्यान नहीं देती हो, आप अपने मोबाइल में ही टाइम देख लेती हो।
1: हाँ वैसे आजकल क्योंकि हमारे पास तो हमेशा फोन और हमारी आंखें हमेशा फोन में रहती हैं, तो टाइम देखने के लिए फोन ही काम आता है।
0: लेकिन जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तब तो टाइम भी नजर नहीं आता है,
1: तब तो टाइम बस उड़ता है।
0: चलो अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, और साथ ही रे तेरे बिना भी क्या जीना। और सच में जब हम रेडियो पर आते हैं ना, जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, और अगर हम रेडियो से थोड़ा सा भी डिस्टेंस बनाते हैं तो ऐसा लगता है इसके बिना जिंदगी अधूरी है।
1: हाँ, तो ये बात करने का सिलसिला, अपने फेवरेट आरजी को सुनने का सिलसिला जो रहता है ना, वो उस टाइम का हमें बहुत इंतजार रहता है।
0: एग्जैक्टली राइट, सही कह रहे हो आप।
1: और आरजी खुशी आपने ऐसी ही हमारे दिलों में एक ऐसी ही पहचान बना रखी है।
0: थैंक यू सो मच, ये तो आप सबका प्यार है। एंड आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की, और आप उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे मुझसे, तो हमारी ऑडियंस को भी जरा बताइएगा।
1: हाँ, जैसे कि हमने अपनी ऑडियंस से कहा था कि जब ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो उनके बारे में, उनके जीवन का हम एक बहुत फैक्ट बताएंगे। आज जो आवाज हमारे दिलों को छूती है, जिसने हमारी दिल पे जादू कर रखा है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उनकी आवाज की वजह से ही उन्हें बहुत जगह रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आवाज को तीखी दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाजों में से एक बनाया।
0: बिल्कुल, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं अमिताभ
1: जी। बिल्कुल खुशी जी। और दोस्तों, जब उन्होंने अपने जीवन में अपने करियर की वो शुरुआत कर रहे थे, तो अमिताभ जी ने जब ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर के लिए अप्लाई किया था तो उनकी आवाज की वजह से ही उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर देखिए, कुछ ऐसे फिल्में भी रहीं जहां उन्हें उनकी आवाज की वजह से फिल्में के लिए मना कर दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी आवाज के बल पर ही देखिए अपनी अलग पहचान बनाई, और आज वो हमारे दिलों पर राज करते हैं।
0: और दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत मैसेज भी आए तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ प्राची। एंड हमारे पास यहाँ पर इटली से मैसेज आया है आसिफ जी का, और ये कहते हैं, गुड इवनिंग खुशी जी एंड प्राची जी।
1: वेरी गुड इवनिंग आसिफ जी।
0: आज का दिन हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी, दमदार आवाज और बेहतरीन अंदाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया है। और आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। देखिए, वो तो दिलों पर राज अभी भी कर ही रहे हैं, एंड कौन बनेगा करोड़पति। बिग बी सभी पर राज कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन जी ने हमें ऐसी अनगिनत यादगार फिल्में और किरदार दिए हैं जिन्हें आज भी देखना उतना ही अच्छा लगता है। उनकी अभिनय क्षमता, संवाद, बोलने का अंदाज और पर्दे पर उनकी मौजूदगी हमेशा से ही कुछ अलग और खास रही है। सच कहूं तो अमिताभ बच्चन जी मेरी पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं, इसीलिए उनके जन्मदिन पर उनकी तरफ से शुभकामनाएं देना मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। खुशी जी, आज के शो में अगर अमिताभ बच्चन जी से जुड़ी कुछ पुरानी यादें और उन्हीं के कुछ पुराने किस्से, पुराने गाने अगर यहाँ पर प्ले हो जाएं तो शो और खास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, खुशी जी और प्राची जी, आप दोनों का शो हमेशा यूं ही खूबसूरत और यादगार हम सबको यादगार बनाता रहे। थैंक यू सो मच, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है।
1: थैंक यू सो मच आसिफ जी, और हमें भी आपके मैसेजेस पढ़कर बहुत अच्छा लगा।
0: एग्जैक्टली राइट। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, निखत फातिमा जी हमें मैसेज पहुँचाती है। और हमने पूछा था ना कि अमिताभ जी की डेब्यू फिल्म कौन सी है, मूवी कौन सी है, तो हमारे पास सही जवाब हमें पहुंचाया है, अभी बता दें या थोड़ा सा इंतजार और कराएं?
1: मुझे लगता है खुशी जी हमें और इंतजार नहीं कराना चाहिए,
0: बता देना चाहिए,
1: और हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है।
0: अभी नहीं, हमारा टाइम तो 5 बजे होता है। ओके अच्छा ओके, ओ प्राची को इस समय शायद चाय पीने का मन है तो ये बाहर जाना चाहती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें निखत फातिमा जी राइट आंसर पहुँचाती हैं, और राइट आंसर है 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सही जवाब दिया है।
1: बहुत बहुत थैंक यू निखत जी कि आपने हमें सही आंसर पहुंचाया।
0: लगता है कि बहुत बड़ी
1: अमिताभ जी की बहुत बड़ी फैन है
0: हाँ, और फिल्मों की भी शौकीन है, क्योंकि जो फिल्मों से जुड़ा होता है और जिस एक्टर या एक्ट्रेस में हमें दिलचस्पी होती है ना, तो उनके बारे में हमें सब चीज जानना बहुत अच्छा लगता है।
1: और अमिताभ जी ऐसे कलाकार है जो हर उम्र के लोगों की दिल पे छाई हुई है,
0: छाई हुई है एग्जैक्टली। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव ट्रेलर जी का, और ये कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, कैसे हालचाल है आपके, और प्राची जी के साथ कार्यक्रम पेश कर रही हैं आप, दोनों का कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है,
1: आवाज थैंक यू गौरव जी,
0: और कहते हैं कि आवाज सुनकर अमिताभ बच्चन जी के जो यू नो ट्रैक आपने प्ले किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां पहुंचाते हैं सर। थैंक यू सो मच, आप सब इतने खूबसूरत मैसेज यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, और श्रोताओं सुनते हैं कुछ और खूबसूरत गीत, तब तक के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो बजाते
1: गुनगुनाते
0: गुनगुनाते रहिए। तो चलिए सुनते हैं एक शानदार गाना, लौट कर आते हैं, और आप कुछ कहना चाहते हैं?
1: और बस मुस्कुराना मत भूलिए।
0: हाय इतने प्यार से बोलोगी ना तो हमारे जो लिसनर्स है ना वो नींद में भी मुस्कुराएंगे। क्योंकि हमारे जो लिसनर है बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं प्राची, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, मतलब
1: हाँ जब आप उन्हें इतना प्यारा शो देते हो।
0: और कहते हैं ना प्राची, जब दिल से दिल का रिश्ता होता है ना तो बात अलग होती है ना।
1: हाँ, और इस रिश्ते का एहसास होता है हमें खुशी के साथ, खुशी की शो में। थैंक यू आरजी खुशी,
0: मोस्ट वेलकम प्राची। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद हम लौट कर आएंगे, एंड लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन एड ब्रेक का टाइम भी हो गया, वो भी बहुत जरूरी है, अभी आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के। इस बार
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: पता था हमारा इंतजार कर रहे हैं, तभी तो हम चले आए हैं आप सभी से बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर खुशी एंड प्राची दिल खोलकर बिंदास होकर बातें कर रहे हैं, और ये मौका हम आपको भी दे रहे हैं, लेकिन आप है कि मैसेज पहुंचाने में कंजूसी दिखा रहे हैं। हाँ प्राची, कंजूसी कर रहे हैं हमारे श्रोता।
1: हाँ, हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं पर अपने
0: कह नहीं पाते हैं।
1: हाँ, पर उन्होंने अपनी बातें दिलों की दिल में ही रखी है,
0: रखी हुई है। अच्छा, आप अभी कौन सी अपडेट लेकर आए हैं, जरा हमें बताइएगा।
1: हाँ,
0: खेल जगत से जुड़ी हुई बात है, आप बता रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग से, यू नो, जो खेल से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट से कनेक्टेड है, उनके लिए बहुत स्पेशल है आज का दिन।
1: हाँ, तो आज हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत ही प्यारी अपडेट है,
0: या
1: क्योंकि आज है बर्थडे हार्दिक पांड्या जी का, और आज वो 33 वर्ष की भी हो गए। तो बहुत बहुत बधाई है हार्दिक पांड्या जी को, आप हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। एफएम मुरादाबाद विशेस यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों, उनके लिए कुछ लाइन्स है जो मैं कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल कहिएगा प्राची।
1: हर छक्के पर शोर, हर जीत पर प्यार, हार्दिक पांड्या जी आप हैं करोड़ों दिल के स्टार, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, इतने ब्यूटीफुल अंदाज में आपने हार्दिक पांड्या जी को वश किया है। तो हार्दिक जी तो
1: डिजर्व करेंगे,
0: डिजर्व करते हैं एब्सोल्युटली।
1: हार्दिक पांड्या जी डिजर्व करते हैं, जिन्होंने जो हमारे देश के लिए खेलते हैं, और सच में क्रिकेट लवर्स के लिए हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा नाम है। और हार्दिक पांड्या, तो दोस्तों आप भी बताइए अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम, और करिए हार्दिक पांड्या जी को बर्थडे विश, और जो भी बर्थडे नोट आप उनके लिए लिखकर भेजेंगे वो हम सुनाएंगे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तो अपने दिल की बातें बस अपने दिल तक सीमित मत रखिए, नंबर उठाइए, मैसेज करिए या फिर हमें कॉल करिए और जुड़िए हमारे साथ।
0: बिल्कुल। और प्राची, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, संडे अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, राइट? और आपके लिए संडे कितना स्पेशल है? आप संडे में स्पेशली देखिए, एवरी डे तो हम बिजी होते हैं, कोई ना कोई हमारे यू नो लाइफ में काम होता ही है डेली रूटीन में, लेकिन संडे कैसा होता है जब हम फ्री होते हैं?
1: देखिए खुशी जी, संडे तो स्पेशल इसलिए है क्योंकि बिंदास बोल आता है हमारा,
0: ओके,
1: और आपसे जुड़ने का मौका मिलता है, श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलता है, उनके प्यारे प्यारे संदेश जो मिलते हैं, तो इसलिए संडे तो हमेशा स्पेशल रहता है। और देखिए नवरात्रि आ गए हैं, और रोज कुछ ना कुछ इतना स्पेशल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है फिर मुरादाबाद में। तो हर तो संडे हो, संडे एवरी डे, ऑल डे आर वेरी गुड।
0: या और पता है प्राची, कल क्या हुआ, सैटरडे में नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए हम लोग मार्केट गए प्रकाश नगर, वहाँ पे इतना रश था ना भक्तों का कि पैर रखने की ना जगह नहीं मिल रही थी, मतलब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आने, ऊपर से यू नो इतनी सारी जो लोग थे शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी, मतलब जहाँ पे हमें आधा घंटा लगता ना, आप सोच रहे हो वहाँ पे हमें एक डेढ़ घंटा लगा शॉपिंग करने में, उतना रश, क्योंकि नवरात्रि है स्पेशली, और सभी लोग यू नो दुकानें इतनी खूबसूरत सजी हुई थी, पूरा मार्केट इतना माहौल चहल पहल इतना खूबसूरत लग रहा था। और आपको बताइए कि हमारे नियर बाय रामलीला भी चल रही है रामलीला ग्राउंड में,
1: और दशहरा भी आने वाला है,
0: दशहरा भी आएगा बिल्कुल।
1: वैसे जब खुशी जी मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत इंतजार रहता था शारदीय नवरात्र का, क्योंकि रामलीला चलती है।

0: रामलीला में हमें इतना सुंदर अभिनय देखने को मिलता है, रामायण के बारे में पता चलता है, और रामायण हमें कितना कुछ सिखाती है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो रामायण देखने का मुझे मौका मिलता है, और फिर दशहरा
1: और गरबा डांडिया।
0: गरबा डांडिया, तो मुझे ये टाइम, ये महीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा फेस्टिव मंथ बन जा रहा है।
1: मंथ है और दिवाली भी आएगी,
0: तो सच में ये जो टाइम होता है ना, तो बहुत स्पेशल होता है।
1: स्पेशल होता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और मैसेज आए, संदेश आए, मैं उनको भी शामिल कर देती हूँ जल्दी से, ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाएं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कि हर चेहरे पर मुस्कान सजाने का जिनका अंदाज है, हर चेहरे पर मुस्कान सजाने का जिनका अंदाज है, अपने अपनों के दिलों पर बस एक खास आवाज है, दुआ है यही हमारे रब से, खुशियों से हमेशा महकती रहे उनके रास्ते। यही शायरी आपके लिए है खुशी दी। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ अफरोज, फातिमा जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं। आप दोनों को सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच अफरोज फातिमा, हमें भी आपके संदेश पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है।
1: और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी और प्राची जी, आज तो क्या खूब गाने बज रहे हैं, पहले फोक म्यूजिक का रंग और फिर रॉक का जबरदस्त तड़का, वाह, संगीत का ऐसा शानदार मेल तो पूरे मूड को अपने आप ही नो खूबसूरत बना देता है, और शो में चार चांद लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि आप दोनों की प्रस्तुति बेहतरीन, एनर्जी और संगीत का ये अनोखा अंदाज वाकई लाजवाब है, इतनी शानदार म्यूजिकल महफिल सजाने के लिए आप दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अपना संदेश, अपने दिल की बात हम तक पहुंचाने के लिए।
1: तो चलिए क्यों ना हो जाए एक और खूबसूरत सा ट्रैक।
0: ना बिल्कुल
1: प्राची, आप मुझे बताइए आज आपकी पसंद का हमको ट्रैक सुना चाहेंगे।
0: मेरी पसंद का ट्रैक है तेरी गलियां।
1: तेरी गलियां, ओके, फ्रॉम द मूवी
0: एक विलन।
1: ओके, बहुत प्यारी सी फिल्म है। आई रिमेम्बर सिद्धार्थ मल्होत्रा है।
0: हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा है,
1: श्रद्धा कपूर। यस, बहुत प्यारा ट्रैक है। तो चलिए विवन सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना तेरी गलियां, और आपको भी एफएम की गलियां आना है, मतलब एफएम पर हमें मैसेज पहुंचाना है, और उसके लिए क्या करना है प्राची, आप मुझे बताइएगा। एंड मुझे तो पता है, आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा वो कैसे अपने संदेश, अपने मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं, और जो अंतिवी कार में सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। इस पर अपनी बातें, अपने दिल की बातें हम तक पहुँचाइए, क्योंकि आपकी दिल की बातें सुनते हैं हम।
1: अभी फिलहाल सुनवाते हैं एक गाना जो प्राची को बहुत पसंद है और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UPL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा
2: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
4: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
7: Stacked on Facebook.
8: Oh my God.
9: So...

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शुभ नाम है बिंदास फूल, खुशी है आपके साथ। और मेरे साथ में कौन है सर, अपना इंट्रोड्यूस हमें इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा।
1: थैंक यू सो मच खुशी जी, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्राची। और थैंक यू सो मच खुशी जी कि आपने गलियां तेरी गलियां वाला गाना हमें सुनाया और हम देखिए फिर से आपकी गलियों में लौट कर आ गए हैं। हाँ, अपनी श्रोताओं की गलियों में फिर से लौट कर आ गए।
0: और अब हम बात कर लेते हैं एवरीवन वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के युवाओं से मिले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, हुनर की पहचान और मेहनत का सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में अपने प्रतिभा दिखाने वाले युवाओं से मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। ये युवा देश के टैलेंट और स्किल्स की ताकत को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं एंड उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और अब बात कर लेते हैं एवरीवन दोस्तों, अब बात करते हैं हम बिग बॉस 20 में स्काउंडर ओपी की पर्सनल लाइफ की जो चर्चा चल रही है अभी सोशल मीडिया पर। दोस्तों, बिग बॉस 20 में स्काउंड ओपी की पर्सनल लाइफ को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पाशी हीरानंदिनी के साथ उनके कनेक्शन और रिश्तों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब देखते हैं दिलचस्प होगा क्या नेक्स्ट शो में। और अभी हमारे साथ यहाँ पर प्राची, तो आपको मालूम ही है कि प्राची हमारे साथ पूरे तीन बजे से हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं और बहुत सारी बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड दोस्तों, एक और अपडेट है जो आप तक पहुँचानी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर फैजल शेख यानी मिस्टर फीसो की जिंदगी में एक खूबसूरत नया मोड़ आया है। उन्होंने सऊदी अरब की पवित्र शहर मदीना में अपने परिवार की मौजूदगी में निकाह किया और अपनी नई जिंदगी के लिए फैंस से दुआएं मांगी। हम भी दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी प्यार और बरकत से भरी रहे। हाँ, शादी की बहुत बहुत मुबारक है बोथ ऑफ यू। तो यहाँ पर प्राची, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: बस बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं फैजू और उनके हमसफर को। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और इस जीवन की एक नई शुरुआत हो और एक बहुत अच्छी शुरुआत हो।
0: या और हमारे पास अभी कुछ और मैसेज आए हैं, उनको भी रीड कर लेते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, शरदीय नवरात्रि के पहले दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पूरी एफएम मुरादाबाद की टीम को। और ये कहते हैं कि कार्यक्रम आपका हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी।
1: आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष राज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दिल की बातें हम तक पहुंचाई।
0: और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर कविता जी का आया है न्यू मुरादाबाद से। ये हमें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं आज तो शो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दो दो सोनी सोनी कुड़ियां स्टूडियो में आई हैं, उनकी मीठी आवाज सुनकर हमारी शाम खूबसूरत हो गई है।
1: बहुत बहुत थैंक यू जी।
0: तो चलिए इस शाम को और खूबसूरत बनाते हैं कुछ खूबसूरत गानों के साथ, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल खुशी।
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6
1: रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: अरे वाह क्या बात है, लगता है कि लड़की एक नहीं दो कप चाय पीकर आई है। हाँ बताइए कितने कप चाय पीकर आए हो, एक कप या दो कप?
1: खुशी, मैंने आपको बताया था कि मैं चाय बहुत कम पीती हूँ।
0: ओहो, लेकिन आपने तो मुझसे बोला था कि खुशी जी मुझे मेरे जाने का टाइम हो गया, मतलब चाय पीने का टाइम हो गया है।
1: हाँ, वो थोड़ा सा कभी कभी ओकेजनली।
0: ओके,
1: जब कभी जरूरत होती है।
0: लगता है आज प्राची ने ज्यादा ही मेहनत कर ली है इसलिए चाय पीने का मन था। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इनको अब हम और मेहनत करवाएंगे ताकि मेहनत का फल मीठा होता है प्राची। और हाँ, मुझे लगता है कि जितना लाइफ में स्ट्रगल करो, मेहनत करो, सीखो, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है।
1: जैसे अभी हमने अमित जी की कहानी से ये प्रेरणा ली कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हाँ, भले रिजेक्शन मिले, फेलियर मिले, बट स्टिल हमें ट्राई करते रहना चाहिए और एक दिन हम जरूर सफल भी होते हैं।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना डर के आगे
1: जीत है।
0: हाँ
1: और
0: जी।
1: कोशिश करने वालों की कभी
0: हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती।
1: जी
0: अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारी बातें ना
1: कभी खत्म नहीं,
0: कंप्लीट नहीं होंगी।
1: हम पूरे स्टूडियो में बातें करते रहते हैं और फिर बाय बोलते हुए भी बातें करते हैं कि आप बातें हम कल कंटिन्यू करेंगे।
0: हाँ जी, तो अभी गाने सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का दिन तो पूरा भक्तिमय है और पूरे 9 दिन तक हम भक्ति में रहने वाले हैं। माँ की सेवा, पूजा अर्चना, आराधना और गरबा, डांडिया, ओ हो, इतने सारे फेस्टिवल और इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब बैक टू बैक चल रहे हैं। और मैं आपसे प्राची जानना चाहूंगी कि आप मुझे बताइए, गरबा की शुरुआत कहाँ से हुई है और कौन सी सिटी से, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा गरबा सेलिब्रेट किया जाता है?
1: आज ही खुशी जी, अगर हम गरबा की बात करें तो ये जो गुजरात की अहमदाबाद और वडोदरा, ये बहुत ही बड़े और फेमस शहर है, यहाँ से गरबा की शुरुआत हुई थी। और गरबा सच में नवरात्रि को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है, क्योंकि गरबा का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है माँ अम्बे की आराधना करना, माता के 9 रूपों की आराधना करना, भक्ति में होना और जीवन में खुशियों और पॉजिटिविटी के साथ रहना। और ये गरबा हमें बताता है, गरबा जो नवरात्रि के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमें बताता है कि जीवन कितना, आपको पता है, उल्लास का एक मौका है जो ईश्वर ने हमें दिया है। और इस मौके को हमें बिल्कुल त्योहार की तरह अपनी जिंदगी के हर पल को जीना चाहिए। और ये 9 दिन माँ की आराधना के 9 दिन हमें इस बात के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए शारदीय नवरात्र मेरे पसंदीदा त्योहारों में से एक है।
0: और पूरे, मतलब कह सकते हैं कि भारत में सेलिब्रेट किया जाता है ये पर्व, नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं आपसे बताने वाली थी कि देखिए, दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट की जाती है बंगाल में, कोलकाता में। अच्छा, मुझे बताओ, आपने भी गरबा के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाया है, बहुत प्यारे से। प्रैक्टिस हो गई है आपकी गरबा की?
1: प्रैक्टिस तो खुशी जी आपके साथ करनी है।
0: तो हमारे पास
1: बताइए, आप कब फ्री है?
0: हम कब फ्री हैं? जब आप आ जाएंगे हम फ्री हो जाएंगे।
1: तो बिल्कुल, हम बहुत जल्दी शेड्यूल करते हैं कि हमें कब प्रैक्टिस करनी है, और हमें सच में बहुत आनंद आने वाला है।
0: और हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है गरबा को लेकर। एंड अभी हमने ड्रेसेस डिसाइड किया है, और अभी प्रॉपरली भी नहीं हुआ है, प्रॉपरली ड्रेस मतलब डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हमने सोच के रखी है कि ये भी करना है, वो भी करना है। अब देखते हैं टाइम पे क्या होता है। और दोस्तों, गुजरात की धरती से निकला गरबा सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि माँ अम्बा की भक्ति, सांस्कृतिक और खुशियों का उत्सव है। जब ढोल की थाप पर कदम थिरकते हैं तो पूरा माहौल भक्ति में हो जाता है। जय माता दी आप सभी को।
1: आप सभी को जय माता दी।
0: और चलिए, अब हमने गरबा की बात की है तो एक ट्रैक भी हो जाए, बहुत ही खूबसूरत है। एंड लौट कर हम आते हैं, थोड़ा सा गरबा अपने श्रोताओं को भी करवाते हैं। भैया, अकेले अकेले हम क्यों करें, है ना?
1: तब तक मैं और आप करते हैं,
0: तब तक हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, तो हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो गरबा के लिए बहुत तैयार है, एक्साइटमेंट है उनके अंदर भी, और वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो कुछ हम भी हेल्प कर देते हैं उनके ये गाने प्ले कर। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो चलिए लौट कर आते हैं कुछ दमदार एंड धमासान ट्रैक के बाद।

0: क्या बात है दोस्तों, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने एंजॉय किया अभी। अरे प्राची बस भी करो भाई, गिर जाओगी, क्यों इतना झूम झूम के नाच रही हो? हाँ पूरे स्टूडियो में घूम रही हो आप, थोड़ा रुक जाओ। कैसा लगा बताओ ये ट्रैक आपको?
1: बहुत अच्छे लगे ये ट्रैक, सच में इस ट्रैक ने एनर्जी को और भी डबल कर दिया।
0: और ये लड़की पूरे स्टूडियो में घूम रही है गोल। और दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी रामलीला से, और अब हमारी जाने का भी वक्त हो गया है। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्यों प्राची?
1: हाँ मन तो वैसे मेरा भी नहीं है खुशी जी, पर जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, हम लौट के आते रहेंगे।
0: हाँ जी, हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी को शारदीय नवरात्रि की वंस अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए एंड प्रोस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं माता रानी सभी पूरे करें, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। और बिलीव इन कर्मा, अच्छे कर्मास कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, और बाकी खुश रहिए, खुशियां बांटती रहिए, और हमें दीजिए
1: हमेशा जुड़ी रहिए। हाँ जी, खुशी आज ही खुशी को सुनते रहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, और जो खुशी जो बिल्कुल हमारे मूड को हमेशा बिल्कुल डबल हैप्पी बना देती है, उसके लिए खुशी जी का बहुत बहुत थैंक यू। और आपने मुझे शो से जोड़ा, थैंक यू, और लिसनर्स के साथ जुड़ के आपने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: मोस्ट वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्राची, आपने इतनी सारी तारीफें कर दी है। देखो मैंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया है, हाँ पर ये तारीफें इतनी सारी
1: आपने दिया तो है, आपका नाम ही खुशी है, आपने खुशियाँ दी है, प्यार दिया है, और इतने मस्ती और इतना मजा जो हमें आया है फिल्म में।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच प्राची, एंड आपने मेरे साथ ज्वाइन किया उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज की हमारे शो कन्वर्सेशन जो हमारी बातचीत है, हमारे श्रोताओं को भी पसंद आई, उन्होंने भी इंजॉय किया है मुझे मालूम है। तो दोस्तों अब हमें दीजिएगा अनुमति, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, प्रेम से बोलो
1: जय माता दी,
0: सारे बोलो
1: जय माता दी,
0: आवाज नहीं आई,
1: जय माता दी,
0: जय माता दी। दोस्तों मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो

0: सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहाँ की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहाँ गलियों में स्वाद बसता है और जहाँ हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोन संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
1: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
0: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
1: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
0: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
1: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
1: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
0: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
1: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
0: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा,
1: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
0: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज़ आएंगी।
1: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
0: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
1: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
1: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
0: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
1: प्राची,
0: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: बाय बाय।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत मेरठ विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारी को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंसी की ओर जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्य स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है।
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद

0: उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स, जहाँ हाथों की कला, हुनर और मेहनत मिलकर खूबसूरत हस्तशिल्प को जन्म देती है। आखिरकार एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, कारीगरों के

0: एक बार इस फील्ड में कदम रखूं, तो ब्रास के लिए मैंने एक आइडिया मेरे मन में आया। मैंने एक शोरूम की स्थापना करने का मन बनाया। अब मैं एक नया वेंचर जो है स्टार्ट करने आ रहा हूं 12 अक्टूबर पैकिंग नवरात्र।
1: तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि हैंडीक्राफ्ट हमें शुरू करना है।
0: हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर घर में पीतल काम होता है। तो मेरे पिताजी ने भी 1970 में ब्रास का काम स्टार्ट किया था। हम बहुत छोटे थे, 4 साल का हुआ करता था। मेरे सामने पेटी में रख के, पहले कॉरूगेटेड बॉक्स तो कम होते थे, पेटी में माल जाता था, क्योंकि सरकार ने बाद में लकड़ी के लिए मना कर दिया, तो बाद में कॉरूगेशन का निर्माण हुआ, उसमें कॉरूगेशन में जाने लगा। तो हमने ब्रास काम बचपन से देखा, तो मेरी इच्छा थी जो मेरा घर में काम चला 10 साल, उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊँ।
1: सर SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत आपने कैसे करी?
0: देखिए, ब्रास का जो इतिहास है, मुराद में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लगभग 450 साल पुराना है। 450 साल पहले शाहजहां के पुत्र मुराद ने जो ये शहर बसाया मुरादाबाद, इसकी खास बात ये थी कि ये रामगंगा किनारे जो रेत है बहुत बारीक है, जो ढलाई के काम में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है। उस वजह से यहाँ पर ढलाई का काम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो आइडिया जो है मेरे मन में था कि ये क्यों ना विरासत वाला काम स्टार्ट किया जाए, उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शोरूम के रूप में देना चाह रहे हैं, जो अब तक माल मुरादाबाद से बाहर के मार्केट में बिक रहा था, अब वो सीधे मुरादाबाद के लोगों को मिले शोरूम के माध्यम से।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 तारीख को ही SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत यानी कि ओपनिंग आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि 12 तारीख को ही हमें ओपनिंग करना है।
0: मैम, 12 तारीख को सेकंड नवरात्र है और जो नारी शक्ति के लिए नवरात्र की पूजा होती है, ये काम जो है मैंने अपनी मैडम नेहा खन्ना के नाम से स्टार्ट किया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन उनके नाम से ही है। उनका मन था कि मैं कुछ करूं, तो उन्हें मुरादाबाद के इस काम में जो है इंटरेस्ट था और काफी उन्होंने जो है मेरे को सहयोग भी किया है, तो उस वजह से मैंने नवरात्र में ये काम चालू किया है।
1: सर दिवाली और दूसरे त्योहारों में लोग घर को सजाने के लिए कुछ यूनिक ढूंढते हैं, तो SKI हैंडीक्राफ्ट्स में ऐसा क्या खास मिलेगा जो घर की सजावट को एक अलग ही लुक दे सकते हैं? मतलब क्या एक अलग यूनिक है आपके पास प्रोडक्ट?
0: एक तो मैम हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, वैसे तो सारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में यूनिक ही होता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ किसी कारीगर के हाथ के द्वारा बना होता है। हमने कुछ ब्रास के ऐसे आइटम सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है, तो उसमें पीतल के करुए हम दे रहे हैं, कॉपर के कुछ ऐसे यूटेंसिल हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और चूंकि चांदी महंगी हो गई है, तो चांदी की उर्ली रखना संभव नहीं है आज की तारीख में, तो ब्रास पे अगर हम चांदी की पॉलिश करके रखते हैं तो सेम चांदी की उर्ली से ज्यादा अच्छी ये हमारी ब्रास की लगती है। इस तरह के कुछ पर्टिकुलर ऐसे आइटम है जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे।
1: SKI हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट से क्या अलग बनाता है जो लोग आप तक कनेक्ट हुए?
0: SKI हैंडीक्राफ्ट जो है ना, एक विरासत को आगे लेके आया, जैसे कांसा है, अभी जो है काफी हद तक कांसा मार्केट से गायब हो चुका है। अगर हम ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट जरूर रख रहे हैं कि वो महंगा भले ही हो, मतलब अपने कॉस्ट के हिसाब से, बट बेनिफिशियल है, तो वो जो है मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल आज की तारीख में।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट होती है उसमें मेहनत कितना लगता है? क्योंकि हर काम में मेहनत बहुत मायने रखता है, और देखा जाए तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, आजकल हर कोई यही सोचता है कि ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: उसके पीछे का प्रोसेस जो है केवल डेडिकेशन है। कोई भी आप देखिए, कोई भी चीज बनाते हैं आप हाथ से, तो उसमें कितना टाइम लगता है, उससे आपकी ना एक मन की भावना आस्था जुड़ जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट भी सेम ऐसी ही चीज है कि कोई चीज आपने ब्रास की या किसी भी चीज की, देखिए कि मेरी नानी या मेरी दादी का ये बर्तन यूज होता था या ये फूलदान यूज होता था, तो आपके उसे आपकी आस्था जुड़ जाती है। तो यही सब चीजें जो है हैंडीक्राफ्ट को विशेष बनाती।
1: सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके साथ आपके बेटे हैं और आपके दोस्त हैं, तो क्या ये भी आपके साथ ही आपके काम में हेल्प करते हैं? तो आप इनके बारे में खुद ही बता दीजिए, फिर इनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आराम से शांत बैठे हुए हैं कि हमारे पास नंबर नहीं आएगी, लेकिन आने वाली आपके पास भी नंबर, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप। तो सर आप पहले इनके बारे में बताइए।
0: हाँ, ये दोनों मेरे साथ एसोसिएट हैं और मेरे इस वर्क में मेरे को हेल्प करते हैं और इनकी स्टडी भी बिजनेस की है तो उसपे ही वर्क ये आगे बढ़ा रहे हैं अपना।
1: तो आर्यन जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपके फादर साहब ने बताया कि उनके फादर साहब भी पीतल का ही काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने फादर के साथ ही काम करूंगा और अपने जो हमारा बिजनेस है उसको

0: आगे बढ़ाएंगे। तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इसको और ग्रो अप करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अलग है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि बस पापा के साथ ही काम करेंगे और इसी बिजनेस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं?
1: हाँ, काफी टाइम से जब हम ऑलरेडी कॉरोगेटेड बॉक्स का काम हो रहा है, तो जब सैम्पलिंग होती थी तो उस हिसाब जब मैं देखता था कि अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं, तो मैंने लोकल मार्केट में देखा तो वो डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वो सब डिजाइन बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना शोरूम लेके आ रहे हैं, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स होंगे और फिनिश होगी वो हम मुरादाबाद के लोगों को दे देना चाहेंगे।
0: तो आपके यहाँ ट्रेडिशनल डिजाइन और मॉडल डिजाइन भी देखने को मिल सकता है, कुछ क्या अलग है आपके पास?
1: हाँ, एक काफी बेहतरीन कॉम्बो है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल में ब्रास का, मॉडर्न में ईपीएनएस का, और बाकी काफी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जब मार्केट में रिसर्च करी इस बारे में, तो हमें बहुत जगह जाकर हमने बहुत लिमिटेड डिजाइन को फाइनलाइज करके अपने शोरूम में लेके आए हम, और आपको वही सब देखने को मिलेगा 12 तारीख को एसके हैंडीक्राफ्ट के शोरूम दिल्ली रोड।
0: तो आर्यन जी, हमारा अगला क्वेश्चन है SKI हैंडीक्राफ्ट को लेकर आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, किसको और कैसे ग्रो अप करवाना है?
1: एसके हैंडीक्राफ्ट के शोरूम के साथ साथ हम ऑनलाइन भी एंट्री ले रहे हैं, और पहले तो हम मुरादाबाद के लोगों को केटर करेंगे, पहले मुरादाबाद के लोगों को सर्व करेंगे, उसके बाद हम पूरे डोमेस्टिक, पूरे पैन इंडिया हम अपना ब्रांड को लेके जाएंगे आने वाले समय में।
0: तो राजेश जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, हैंडीक्राफ्ट की चीजें मशीन मेड प्रोडक्ट से अलग होती है, एक ग्राहक SKI से कोई प्रोडक्ट खरीदते समय कैसे समझ सकता है कि यह एक हैंडमेड आर्ट प्राइज खरीद रहे हैं?
2: हमारे पास जो है सर्टिफिकेट भी है, और हमारे पे गुरु हैं श्री चिरंजी लाल यादव जी, जिन्होंने अभी भारत का एक बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सम्मान पाया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उनके द्वारा कुछ निर्मित चीजें हम जो है अपने शोरूम में रखने की हमारी बात चल रही है, जो 100% हैंडीक्राफ्ट है। इसके अलावा हम जो है जो भी प्रोडक्ट रहे उनमें मात्र 20-30% ही जो है मशीन मेड है, बाकी 70% उस प्रोडक्ट पे हाथ से काम हुआ हुआ है। हमारे गुरु जी श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्म विभूषण अवार्ड जो मुरादाबाद के 100% हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला है, वो हमारे मुरादाबाद की एक तरह से गौरव की बात है। तो उसी गौरव को हम कायम रखते हुए हम 100% जो हैंडीक्राफ्ट से हैंडमेड आइटम है वो रखेंगे, और जो भी हमारे आइटम होंगे वो केवल 20-30% ही जो है मशीन मेड होंगे, बाकी उसमें 70% काम हाथ से या हैंडमेड से ही किया गया हुआ हो।
0: तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई ग्राहक पहली बार SKI हैंडीक्राफ्ट में आए, तो आप चाहेंगे कि वह सिर्फ शॉपिंग करने ना जाए बल्कि यहाँ से भारतीय कला और कारीगरों के हुनर की कौन सी याद लेकर जाए?
2: इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मुरादाबाद को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये SKI हैंडीक्राफ्ट का जो शोरूम है वो एक तरह से एग्जीबिशन है, जो एक आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आप लोग आइए, यहाँ पर अनुभव कीजिए कि जो है हैंडीक्राफ्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं मुरादाबाद में, और हम फर्नीचर में, हम टेबल वेयर में या शो पीस में कितने भी आइटम जो मुरादाबाद में बनते हैं उसके हम कुछ कुछ जो है सैंपल हम यहाँ रखेंगे, और पूरे मुरादाबाद को अनुभव कराएंगे एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से कि हैंडीक्राफ्ट में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं।
0: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि 12 अक्टूबर को SKI हैंडीक्राफ्ट की ओपनिंग है, तो आपके पास ऐसा एक खास कोई अलग क्या यूनिक प्रोडक्ट है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हुए और क्यों कनेक्ट हुए? कुछ तो आपके पास खास होगा ना, तो आप बताइए कि जो सोचे कि हम इस ओपनिंग में नहीं गए तो बहुत सी चीजें हमने मिस कर दी, तो ऐसा क्या खास है?
2: हम जो है जो हमारे 12 अक्टूबर के इनॉग्रेशन में सम्मिलित होगा उसको हम जो है अपने लीगेसी में शामिल करेंगे, और स्पेशल ऑफर उनको जो है हम पेशकश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर आते हैं तो उन्हें नया कुछ एग्जीबिशन के टाइप का देखने को मिलेगा, कल को वो कुछ और भी जो है अपने विचार हमें ताकि नए डेवलपमेंट हमसे करवा सकते।
0: तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो लोकेशन क्या है?
2: बहुत सिंपल लोकेशन है, मुरादाबाद आपके गागन पुल दिल्ली से रोड से लेकर और प्रेम मंडल तक सिचुएटेड है, उसी बीच में सारा मुरादाबाद जो है आता है। हमारा जो है मेन रोड NH 24 पर कुंदन पेट्रोल पंप के पीछे जूडियो के सामने, और उसकी लोकेशन यूनियन बैंक के सामने है, और बहुत इजी अप्रोच है। आप NH 24 पे आप किसी से पता कीजिए, कुंदन पेट्रोल पंप कोई भी बता देगा।
0: तो एक मैसेज जो आप देना चाहे सभी को?
2: मेरा मैसेज यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए आय का साधन जो है व्यवस्थित कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा जीवन शैली और अपने मुरादाबाद को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो अपनी विरासत को हमें संभालना पड़ेगा और लोगों को एक साथ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इसमें कोई भी हम इस तरह की जो है भावना न लाए कि हम ये हैं हम वो हैं, हम केवल मुरादाबादी हैं और अपने मुरादाबाद को प्रमोट।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी। इस शो में हम कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ और करने वाले शाम को भैया ढेर सारी बातें। शाम ये देखिए, शाम होते ही ना दिन भर की भागदौड़, थकान लगती है, लेकिन मुरादाबाद की गलियों में अभी रौनक बाकी है। बाजारों में भीड़, दुकानों में रोशनी, दोस्तों की गपशप और कहीं से आती है गर्मा गर्म समोसे की खुशबू, कहीं चाट का चटकारा तो कहीं कबाब की महक। तो क्यों ना आज की शाम घर बैठे बैठे मुरादाबाद की गलियों की सैर की जाए। तो बस अब होती है असली कहानी, असली मुरादाबाद शाम की शुरुआत, क्योंकि बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई आपने अगर घुमाया तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर जाएंगे। और देखिए, गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप घर बैठकर सुन रहे हैं ना, तो आपको हम आज बाहर जाने से और बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों खुशी, सही कह रही हूँ ना मैं?
7: बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।
8: हेलो, हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आप हमें सुबह भी सुनते हैं, दोपहर भी सुनते हैं, अब हम शाम में भी आपके साथ आ गए हैं। आई होप आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा। आप इस शाम को बनाने आए थोड़ा और हैपनिंग खूबसूरत ब्यूटीफुल शाम, क्योंकि देखिए दोस्तों, सोचिए बाजार में चलते चलते सामने गोलगप्पे वाला दिखाई दी जाए और एक तरफ कुरकुरी पूरी, ओहो हो, और दूसरी तरफ आलू मसाला, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी और फिर वो ठंडा ठंडा मसालेदार पानी, भैया एक प्लेट और लगाना और पहला गोलगप्पा मुंह में जाते ही बस दिन भर का तनाव गायब हो जाता है। क्यों रीना?
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि एक गोलगप्पा मुंह में जाते ही दिन भर की तनाव गायब, छू मंतर हो जाती है।
8: एक्चुअली हम खुद ही ऐसा करते हैं, जब हम ऑफिस से फ्री होकर दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें कहीं भी पानी पूरी का स्टॉल नजर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको बताएं एवरीवन? हाँ, बताएंगे, थोड़ा सब्र तो करो। ओहो, आप क्या चाहते हैं हम आपको अभी बता दें? ना, थोड़ा इंतजार करवाएंगे, इंतजार करो, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। क्यों खुशी, क्यों रीना?
0: अरे अरे, तुमने तो मेरा नाम खुशी रख दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल आपसे पूछना चाहेंगे श्रोताओं कि आपको गोलगप्पे खट्टे पसंद है या फिर
8: मीठे तीखे?
0: तो तुम बताओ, तुम्हें कौन सा पसंद है?
8: मुझे पानी पूरी ना ज्यादा तीखा वाला पसंद नहीं है, मुझे खट्टा मीठा दोनों पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना, खट्टा मीठे में ना टेस्ट अच्छा आता है और ज्यादा तीखा अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझसे तो नहीं खाया जाएगा,
0: कान से हवा निकलने लग जाती है।
8: रीना स्पेशली तीखा खा लेती है, बट मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ।
0: लेकिन गोलगप्पे मुझे भी मीठे पानी वाला ही पसंद है।
8: मुझे सूजी वाले पसंद है।
0: सूजी वाले तो मेरा पसंद है।
8: वैसे गाइस, आप भी मुझे बताइएगा, हम लोगों को बताइए कि आपको कौन से पानी पूरी पसंद है, आटे वाले या सूजी वाले,
0: और पानी भी बताना आप।
8: हाँ, और जब तक हम करते हैं आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ना एक प्यारा सा गाना। चलो सुनते हैं एक धमाकेदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आपका भी पानी पूरी खाने का मन है ना, उसमें दोष हमारा नहीं है, आपका मन विचलित है तो हम क्या कर सकते हैं।

0: देखिए, शाम होते होते ना मन करता है भैया कुछ चटपटा अटपटा खा ले, तो मुझे लगता है इस मन को ना दुखी नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, अब जैसे जैसे शाम होती है ना, बस गली मोहल्ले से मार्केट से ना खुशबू आने लग जाती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं गोलगप्पों के बाद समोसों की खुशबू। आए हाय, मुझे पता है कि आपके बहुत पसंद है गोलगप्पे और साथ ही साथ समोसे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, अब जरा हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना के साथ और खुशी के साथ, यहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अब जरा अपनी कल्पना को बाजार की अगली गली में ले जाइए और वहां से आती है एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघ कर कोई भी रुक नहीं पाएगा। गर्मा गर्म समोसे की कड़ाही के तेल में छन छन समोसे का सुनहरा रंग और साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी। अब बताइए, समोसा अकेला अच्छा लगता है या साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा दुगनी हो जाती है। मेरी तरफ से चाय के बिना समोसा थोड़ा अधूरा रहता है। अब समोसा हो और चाय ना हो, फीकी पड़ जाती है ना?
1: चाय के बिना समोसा अच्छा नहीं लगता है और समोसे के बिना चाय नहीं अच्छी लगती है। दोनों साथ में होते हैं तो कॉम्बो अच्छा लगता है। अब चाट का चटपटा स्वाद लेते हैं। मुरादाबाद की शाम हो और चाट का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है रीना? सोचिए, प्लेट में कुरकुरी पापड़ी, ऊपर उबला हुआ आलू, दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और आखिर में मसाले की हल्की सी बारिश। पहला निवाला मुंह में जाते ही ना खट्टा मीठा तीखा और कुरकुरा, चारों स्वाद एक साथ, और फिर वो आवाज, भैया थोड़ी चटनी और डाल दीजिए ना।
0: हाँ, ये तो अक्सर हम करते ही।
1: अब रीना के मुंह में पानी आने लगा है खाने की बातें सुन।
0: मेरे मुंह में नहीं, मतलब जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आने लगा है। वो तो यही कह रहे हैं, भैया गाड़ी न्यूटन ले लेते हैं और
1: पहले कुछ खा ही लेते हैं।
0: हाँ, तो चलिए अब हम बात करेंगे कबाब की खुशबू। मुझे आपको पसंद है ना? मुझे हाँ, तो बहुत पसंद,
1: मुझे भी पसंद है यार, कबाब को भी पसंद है और हाँ। हमारे जो बहुत सारे श्रोता है ना उनको भी पसंद है ना?
0: एक काम करिए, एक प्लेट भिजवा दीजिए आप।
1: मैंने तुमको खिलवाया था ना, याद है तुम्हें? वो वाला कबाब कितना टेस्टी था।
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज तो फास्ट है, कल चलेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, कबाब की बात करेंगे। अब अगर आप मुरादाबाद के किसी खाने वाली गली से गुजर रहे हैं और अचानक मसालों और सिकते कबाब की खुशबू आपकी नाक तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए आपका पेट आपको रोकने वाला है। सीख पर लगा कबाब, आग की हल्की आंच, ऊपर से प्याज और हरी चटनी और गर्मा गर्म खुशबू, आए हाय। मुरादाबाद के मुलायम खाने और कबाब बिरयानी की अपनी खास पहचान है। अब सवाल ये है कि आप सिर्फ खुशबू लेकर निकल जाएंगे या प्लेट भर के खा लेंगे या फिर घर वालों के लिए भी ले जाएंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिलहाल देखिए, अपने लिए आप खा रहे हैं और घर वालों के लिए ले जा रहे हैं ना, तो एक प्लेट इधर भी भिजवा दीजिएगा स्टूडियो में।
1: पर आज तो हम नहीं खा पाएंगे, अगर हमारे लिसनर जो है सुन रहे हैं, अगर भिजवा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
0: मतलब आज ना भिजवाइए, आप कल भिजवा दीजिएगा। ये तो चलेगा ना?
1: ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा फिर तो। हाँ, अब हम बात करते हैं, पता है रीना किसकी? हम बात करते हैं बिरयानी का इम्तिहान। अब जरा कल्पना कीजिए, ढक्कन उठता है और अंदर से आती है मसालों में पके चावल की गर्मा गर्म खुशबू, ऊपर से हरे धनिए की हल्की महक और साथ में नरमा नरम पीस। जी हाँ, बात हो रही है बिरयानी की। मुरादाबाद की बिरयानी अपनी खास मसालेदार स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। और बिरयानी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आप कहते हैं बस थोड़ी सी खाऊंगा या थोड़ी सी खाऊंगी, और प्लेट खत्म होने के बाद याद आता है कि थोड़ी तो बचनी चाहिए थी।
0: लेकिन मेरा मानिए तो एक प्लेट और ले लीजिए। और साथ ही साथ आपने बताना है मुरादाबाद में बिरयानी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है। हाँ, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि अगली बार अगर हम खाने के लिए जाए तो उसी शॉप पर जाने वाले हैं।
1: हाँ, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि बिरयानी मुरादाबाद की कहाँ की पॉपुलर है, क्योंकि हमने अभी तक बिरयानी का टेस्ट किया है लेकिन अपने घर पर बनाकर, किसी स्टॉल का नहीं खाया है। तो हम चाहते हैं कि किसी शॉप की मुरादाबाद वालों से हम जानना चाहते हैं कि मुरादाबाद की सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ पर मिलती है। आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो दोस्तों, हम अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आपकी शाम को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। कुछ खाने पीने की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीजें और हैं। वो क्या है अभी बताते हैं आकर।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और आज की शाम को हम बनाने वाले हैं आपकी खूबसूरत बना ही रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ओहो खुशी जी और रीना जी आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हैं। भैया हम तो रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, आज पेट भरा है फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ तो स्पाइसी हो जाए, कुछ तो चटपटा हो जाए, तो खाइए, रोका किसने है। बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और दोस्तों पता है आपको भीड़ और खाने का कनेक्शन, दोस्तों मुरादाबाद में शाम को भीड़ देखी है आपने? हे भगवान, इतनी भीड़ होती है ना रीना, हम खुद दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम सोचते हैं कि आधे घंटे में रिटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन कब दो घंटे गुजर जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता, जबकि हम पैदल होते हैं। अगर स्कूटी से जाएंगे तो पता नहीं रात को 10-11 बजे घर आएंगे शायद।
1: भीड़ भी ज्यादा होती है ना शाम के टाइम,
0: इवनिंग में बहुत ट्रैफिक होता है मुरादाबाद में। और कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूता देख रहा है, कोई बच्चों का हाथ पकड़ के घूम रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस खाने निकले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या रीना, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो वहाँ जाकर देखो, 90% संभावना है कि कुछ वहाँ कुछ स्वादिष्ट जरूर मिल रहा होगा। मुरादाबाद की शाम में बाजार की रौनक और खाने की खुशबू मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि घर जाने का मन ही नहीं करता, और एक प्लेट चाट खाए बिना तो बिल्कुल भी घर हम जाते नहीं है।
1: मतलब ये है कि

0: जो भी घर से निकल जाए वो कुछ ना कुछ खा कर ही आएगा।
1: खाली पेट तो भैया कोई नहीं आएगा।
0: अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम जाते हैं बाहर सामान खरीदने के लिए और कहते हैं कि नहीं यार जंक फूड नहीं खाएगा।
1: और वहाँ जाते क्या होता है हमें पता नहीं,
0: मुंह में पानी आने लग जाता है।
1: हाँ, हम खुद पर इतना कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम घर से कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, जाकर शॉपिंग करेंगे, जो काम है वो खरीद कर लेकर आएंगे सामान।
0: और कंट्री करके हम खा लेते हैं, कहते हैं एक प्लेट तो एक प्लेट में।
1: हाँ, पर हम लोग ऐसा करके खाते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है।
0: और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दूसरा प्लेट भी ऑर्डर कर देते हैं।
1: लेकिन ये पता है टाइम आपको रीना बहुत मेमोरेबल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम और बड़े हो जाएंगे ना तो हम इन चीजों को बहुत मिस करेंगे।
0: देखो ये तो है, बड़े होने के बाद चीजें जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें याद तो आता है,
1: याद आता है। इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से बोलती हूँ कि दोस्तों अपने टाइम को ना यूटिलाइज किया करो, जो वक्त आपके पास है उसे एंजॉय करो, हर पल खुल के जियो, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल क्या होगा,
0: क्योंकि जो पल गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता।
1: या आई एग्री विद यू यार। और हम खुद ऐसा करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा,
0: प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है और आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता है, सर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए भैया जलेबी का जादू जरूर खाइए।
1: माय गॉड, जलेबी गर्मा गर्म और है, है।
0: मलाई वाली जलेबी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। हाँ, सच यार मैंने मथुरा में खाई थी फर्स्ट टाइम मलाई वाली जलेबी।
1: अच्छा तो कैसा था उसकी,
0: आज तक मुझे ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला।
1: एक बार मुझे याद आया, जलेबी से रीना ने मुझे एक बार जलेबी खिलाई थी, जबकि इसको मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसने इसका मन किया उस दिन, तो उसने कहा कि जलेबी खाते हैं। मैं इसका चेहरा देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरे घर आती है मैं इसको कुछ स्वीट खिलाती हूँ तो ये मना करती है कि नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है, और वहां जाकर ये लड़की इतना जलेबी टुकड़ टुकड़ देखी जा रही है और उसको खाई जा रही है।
0: पता है जब मुझे ना मलाई वाली जलेबी मिल जाए और साथ ही साथ उसमें इलायची वगैरह जो डाल,
1: इलायची का टेस्ट तो अलग ही होता है,
0: मजा आ जाता है मुझे। साथ रबड़ी वाली भी जलेबी मिल जाए ना यार, तो बस छोड़ो मत, आने दो।
1: पनीर वाली जलेबी खाई है आपने?
0: नहीं यार, पनीर वाली नहीं खाई है, तुम्हें खिला देना।
1: अच्छा ठीक है, तो मैं पनीर वाली जलेबी आपको जरूर खिलाऊंगा। हाँ, ठीक है,
0: तो चलिए हम बात करते हैं जलेबी की, बात करें भैया। आज मुझे भूल जाओ, सच बता रही हूँ, गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाओ।
1: पेमेंट तुम कर देना, खा मैं लूंगी रीना, ठीक है, इतना काम करना।
0: हाँ, स्कैनर दिखा के आ जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई में गोल गोल घूमती हुई जलेबी, बाहर से कुरकुरी, अंदर से चाशनी से भरी हुई और ऊपर से गर्मा गर्म खुशबू। अरे यार, आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं?
1: बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक।
0: बहुत से श्रोता कह रहे होंगे अरे बस रुक जाओ मैडम, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस हमें खा कर आने दो।
1: हाँ, लेकिन हाँ मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, और अगर कुछ खाने का मन है तो खा लीजिएगा,
0: लेकिन गाड़ी साइड में पार्क करिएगा।
1: हाँ, वो जरूरी है,
0: क्योंकि इसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाती है। और एक जलेबी लेने गए थे, दुकानदार ने पूछा कितनी, तू मुंह से निकला भैया पहले आधा किलो कर दो, उसके बाद 2-3 किलो हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जलेबी दूध के साथ अच्छी लगती है या अकेली,
1: ये हम अपने लिसनर से पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप उनसे उनको ट्रांसफर कीजिएगा।
0: हाँ, तो आप बताइए कि आपको रबड़ी के साथ, मलाई के साथ, या दूध वाली, या आइसक्रीम वाली जलेबी है ना, कौन सी जलेबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? फिलहाल मुझे तो कुरकुरी जलेबी हो और मलाई हो उसके ऊपर रबड़ी वाली, आय हाय मजा आ जाता है यार।
1: सिंपल जलेबी भी अच्छी लगती है चाशनी में डूबी हुई ना, कुरकुरी
0: होने से।
1: हाँ हाँ, वो अच्छी,
0: और तभी अच्छी लगती है गर्मा गर्म, उसके बाद
1: ठंडी होने के बाद नहीं टेस्ट आता है।
0: लेकिन वो बचपन में पता क्या करती थी, जब भी मेरे पापा जलेबी लाते थे ना, मैं उसको अगले दिन खाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे जो जलेबी है वो करारी अच्छी नहीं लगती थी।
1: अच्छा, वो सॉफ्ट होने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद
0: अगले दिन खाती थी,
1: नेक्स्ट डे आप खाते थे। ओके,
0: लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं है, अब मेरा मन चेंज हो गया है।
1: बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप भी मुरादाबाद के किसी बाजार में खड़े हो तो आपको सिर्फ खुशबू ही नहीं, आवाज भी सुनाई देगी। भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना, थोड़ा तीखा, थोड़ा पानी तीखा बनाना, चटनी ज्यादा डालना, और दूसरी तरफ कढ़ाई से आती छन छन, हाँ यही छोटी छोटी आवाजें बाजार को बाजार बनाती हैं। और सच बताऊं, इन आवाजों को सुनकर आपके पेट ने भी अभी तक एक आवाज तो जरूर निकाल दी होगी।
0: कि भैया बस कुछ खा ही लेते हैं, यारे मेरी बात मानिए, खा लीजिए, मन को इतना नहीं तरसाना चाहिए। बस जो मन करे खा लो।
1: लेकिन अच्छी शॉप से खाएं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर खाना चाहिए, क्यों नहीं ना।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। फिलहाल घर का खाना या बाहर का खाना ये आप बता सकते हैं मुझसे मैसेज करके, लेकिन कभी कभी मन भी करता है यार बाहर का खा लेते हैं।
1: हाँ, देखो बाहर का खाना मुझे लगता है कि रीना इतना गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज को आप जब लिमिटेड खाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, अनलिमिटेड कोई भी चीज ठीक नहीं होती। हाँ, है
0: शाम को घर पहुँचते ही माँ या पत्नी पूछती है खाना लगा दूं, और तभी दिमाग घूमता है गोलगप्पे, चाट, समोसा, टिक्की, कबाब, बिरयानी। अब दिल कहता है बाहर चल रहे हैं यार, पेट कहता है घर का खाना खाओ, और मन मन तो बोलता है दोनों कर ले भाई। दोनों जरूरी है। और साथ ही साथ आप जरूर बताइएगा आज शाम आपकी पहली पसंद क्या है, घर का गर्मा गर्म खाना या बाजार का चटपटा स्वाद। देखिए हम दोनों तो कभी कभी बाहर का खाना इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बस घर आके खाने की हिम्मत नहीं होती,
1: नहीं खाते हैं। मैं भी अगर हम हल्का बाहर लाइट फूड लेते हैं पर उसके बाद में खाना नहीं खाती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ।
0: हाँ, लेकिन एक बार तुमने सोचा होगा कि हम जितना बाहर का जंक फूड खाते हैं ना, घर आने के 12 एक बजे के बाद फिर चूहे कूदने लग जाते पेट में।
1: मैं जब एक बार सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, मेरी तो ये रहता है।
0: अगर मेरे को नींद नहीं आती ना, सच बताओ मेरे को दोबारा भूख लगी आती है।
1: हाँ नहीं, अगर आप लेट नाइट सोकर जैसे एक बार अचानक से उठते हैं तो फिर भूख लगती है। अब बारिश और चटपटा खाना, मान लीजिए शाम का मौसम थोड़ा ठंडा हो, हवाएं चल रही हो और कहीं से पकौड़े तलने की खुशबू आ जाए, बस फिर क्या, आंखें दुकान खोजती हैं, पैर अपने आप उसी तरफ चल पड़ते हैं और मुंह बोलता है भैया एक प्लेट पकौड़े लगाना गर्मा गर्म। प्याज के पकौड़े हो या फिर आलू के, ऊपर से चाट मसाला और साथ में चाय। कभी कभी खुशी बहुत महंगी नहीं होती, बस एक गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट जितनी होती है। क्यों दोस्तों, आपका भी अगर मन कर रहा है ना, समय देखिए मौसम मानसून का वेदर है एंड आपका मन है कुछ खाने का थोड़ा सा, तो खा सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, लेकिन पेमेंट हम नहीं करेंगे, इस बात को गांठ आप बांध लीजिए, पेमेंट तो आपको ही करना होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा मत खाइएगा,
0: लेकिन खाना पेट भर के।
1: हाँ, पेट भर के खाओ लेकिन ज्यादा मत खाओ।
0: लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि देखिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए घर जाते जाते ना मार्केट से सब्जियां भी जरूर लेकर चले जाइएगा। अच्छा, लेकिन सिर्फ खाने खाने में आप बिजी हो गए और सब्जियां नहीं लेकर गए, तो घर जाते जाते फिर से आपको ताने सुनने को मिल जाएंगे कि अच्छा अभी तो तुम पेट भर के आ गए हो, सुबह देखते हो तुम्हें क्या खाते हो।
1: अरे रीना ऐसा होता है कई बारी, मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, मामा ने कुछ सब्जी के लिए पापा जी को बोला और पापा जी रिटर्न में शाम को घर आए वापस, तो मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन जो मम्मी ने कहा था सब्जियां वो नहीं लेकर आए। फिर मम्मी ने पापा जी को थोड़े ताने सुनाए, पापा ने बोला अच्छा मैडम मैं वापस आता हूँ, अभी सब्जी लेकर फिर वापस आता हूँ।
0: हाँ देखिए लेकर जाइएगा, पता चले कि उतनी दूर आपको फिर से आना पड़े और फिर से आपको ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आएंगे आप भैया, तो यहाँ पर आपको जमकर भीड़ मिलने वाली है। शाम के टाइम में तो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि हर कोई बाहर की जो रौनक है वो देखने के लिए निकलते हैं, शेयर करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं,
1: ऑफिस से भी घर आते हैं।
0: हाँ बहुत से देखिए लेट आते हैं, वो घूम के आते हैं दोस्तों के साथ। देखो यार दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत
1: जरूरी है,
0: साथ ही साथ फैमिली वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और तुमने कभी ये मतलब मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, जब मैं घर रहती हूँ तो जब मैं घर जाती हूँ, मैं चाहे मैं यहाँ रहूँ तो मैं बाहर से कुछ खाऊं ना खाऊं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ ना तो पापा से एक उम्मीद रहती है मेरी कि जब मेरे पापा आएंगे बाहर से
1: तो मेरे लिए ये लेकर आएंगे। हाँ। वो हम ना कहें तो भी लेकर आते हैं।
0: हाँ।
1: पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अगर हम कुछ भी ना कहें ना तो भी वो बिना कहे कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं।
0: मेरे पापा सबसे ज्यादा मोमोज लेके आएंगे, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना,
1: हाँ,
0: वो ताने बहुत देती है।
1: अच्छा दादाजी आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आए?
0: भाई वो जो भी घर में आए ना शाम के टाइम, चाहे मेरा भाई आए, चाहे मेरे पापा आए, चाहे कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, उसको भी कह देती है मेरे लिए मोमोज लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो, मतलब वो नहीं शर्माती, उसको गोलगप्पे चाहिए
1: भाई। वो गोलगप्पे घर में छोटी है लेकिन वो बनती सबसे बड़ी है, सबको सब उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता है। एक बार को तुम्हारी बात टाल देंगे रीना, लेकिन उसकी बात नहीं टालेंगे।
0: नहीं नहीं नहीं, चलिए हम बातें बहुत करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं, गाना भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: हाँ यार अभी तो हमने बोला म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारी बातें फिर शुरू हो गई।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है ना भैया, वो बढ़ाकर अगर आप गाने सुनेंगे तभी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी लॉन्ग सफर भी कब आपको थोड़ी पड़ने लग जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आप भी यही सोचेंगे, यार अभी तो निकला था, इतनी जल्दी पहुंच भी गया, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए वॉल्यूम जरूर बढ़ाइए, तभी आपको मजा आएगा। और अब हम बात करने वाले हैं मुरादाबाद का स्वाद। मुरादाबाद सिर्फ पीतल की चमक के लिए नहीं, बल्कि अपने जायके के लिए भी याद किया जाता है और याद रखा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पीतल के सामानों के साथ साथ बिरयानी और मुगलाई स्वाद, कबाब चाट, समोसे, जलेबी और चाय शाम में जैसी हर तरफ खाने की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। और देखिए, आप जरूर मैसेज करके हमें बताइएगा कि शाम होते होते आपको किस चीज की ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, भैया क्या खाना है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो डेली खाते हैं, भाई कुछ भी हो जाए थोड़ा खाओ, लेकिन खाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। और साथ ही साथ ऊपर से मूंग दाल मिल जाए, आय हाय, वो तो सुबह से लेकर शाम तक उसके ठेले खत्म ही नहीं होते हैं। और साथ ही साथ मूंग दाल का चीला,
1: वो बहुत यम्मी
0: है ना, मूंग दाल। और पिज्जा भी आजकल मूंग दाल का मिलने लग गया भैया, पिज्जा।
1: अच्छा, पिज्जा तो मैंने नहीं खाया मूंग दाल का,
0: लेकिन खाया तो मैंने भी नहीं है, पर बहुतों से सुनती हूं।
1: मूंग दाल हमने खाई है यहाँ मुरादाबाद की,
0: बहुत टेस्टी लगती है।
1: हाँ, मुरादाबादी दाल बहुत यम्मी।
0: और देखिए आप,
1: उसमें नींबू और मक्खन एंड
0: होती है ना कश्मीरी मिर्च डाल के जो देते हैं,
1: हाँ रोस्ट की भी जो मिर्च होती है वो उसका टेस्ट अलग ही होता है।
0: बिल्कुल, देखिए अगर आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं,
1: अरे पगली क्या करेगी, मेरे को स्टूडियो से बाहर भेजने के लिए क्यों मजबूर कर रही है।
0: मैं कहती हूँ जाओ और एक प्लेट मेरे लिए भी लेके,
1: आप पहले खुद खा रहे फिर हमारे लिए लेकर आना।
0: हाँ, ये तो होता है, देखिए अगर खा भी रहे तो साथ में लेकर आना भी बहुत जरूरी होता है।
1: और फैमिली के लिए भी लेकर जाना, कभी आप सोचें कि अरे मैं अपना पेट भर लेता हूँ, घर वालों को थोड़ी ना पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के लेकर जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, ये तो है, देखिए सबके साथ मिलकर खाते तो अलग ही मजा आता है,
1: अलग ही।
0: लेकिन दोस्तों के साथ जब मिलकर खाते ना भैया, पैसों का नहीं पता है कहाँ चले गए पैसे।
1: मत पूछो भैया, जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा इतना बिल आया है, और खाते वक्त नहीं भैया ये भी ऑर्डर कर दो, अच्छा भैया
0: ऑर्डर कर दो,
1: ये भी मंगवा लीजिएगा। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तब, ओहो यार मेरे तो पास इतने पैसे है ही नहीं।
0: और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ खाने का मजा सिर्फ प्लेट में नहीं होता, साथ बैठे दोस्तों की हंसी में, परिवार की बातचीत में और बाजार की चहल पहल में भी होती है। क्योंकि देखिए खाना खाते समय हम ना बाहर की रौनक भी देखते हैं, अच्छा भैया इसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, अच्छा कल को मैं भी ऑर्डर कर लेती।
1: अक्सर हम लड़कियों में तो ये चीजें होती हैं।
0: नहीं यार, लड़कों में भी होती है,
1: लड़कों में भी होती है।
0: हाँ, लेकिन लड़के दिल के बड़े होते, वो नहीं देखते यार, जो पहन लिया पहन लिया। हम लड़कियां 70 बार सोचते हैं।
1: मैं भी बहुत ज्यादा यू नो डिसाइड करती हूँ बाहर जाने के लिए कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
0: नहीं, लड़कों को मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बाहर जाने चल यार देखी जाएगी,
1: वो जैसे भी है वैसे ही, अरे चल यार चल, मैं
0: स्मार्ट लगते हैं
1: वो, ऐसे ही फेस वॉश कर लेते हैं ना सिंपल सा, और बस हाथों बालों में हाथ घुमाते हैं तो वो उसी में हैंडसम लगने लगते हैं। और
0: एक बात है, जब वो बाहर जाएंगे ना तो बालों में पता नहीं हाथ क्यों मारते हैं। ये आज तक लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया,
1: नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट एक मुझे समझ नहीं आता रीना अभी भी, कि जो बाइक चलाते हैं लड़के, पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
0: अरे वो पीछे मुड़कर इसीलिए देखते हैं,
1: नहीं समझ,
0: सुंदर लग रही है।
1: मुझे नहीं समझ आता।
0: चलिए फिलहाल हमारा यहाँ से जाने के टाइम है, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती है।
1: तो जनाब, आज की शाम हमने घूम ली मुरादाबाद की गलियों में, कहीं गोलगप्पे का पानी चखा, कहीं समोसे की खुशबू महसूस की, कहीं चाट का चटकारा लिया, और कहीं बिरयानी की खुशबू ने दिल जीत लिया। लेकिन अब आखिरी सवाल, इतना सब सुनने के बाद भी भूख लगी है या नहीं, ये आप जरूर हमें बताएगा। अगली अगर लगी है तो जाइए कुछ अच्छा सा खाइए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ हंसिए और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। मैं आपकी आरजी खुशी अब हम आपसे लेते हैं जाने की अनुमति, एंड जाते जाते बस यही कहेंगे कि अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। अगर घर पर हैं तो इस मौसम का अपनों के साथ लुत्फ उठाइए। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे आपको बहुत जल्द।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
3: लाइन मार रही हो।

0: ने कहा कि त्योहार में किसी भी दशा में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित न हो, इसके लिए दुर्गा पूजा समितियों से बात की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिमा विसर्जन मार्गों का निरीक्षण कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर जिले में शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि नारी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान जारी है। नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। जो समाज नारी का सम्मान करता है, वही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है।
1: वह समाज जो नारी शक्ति का वंदन और अभिनंदन नहीं कर सकता, वह विकास की बुलंदियों को भी नहीं छू सकता। और इसीलिए बेटी हो, कोई बहन हो, कोई महिला हो, उसकी सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान उसी क्रम में संचालित हो रहा है। उसका थीम ही है कि महिला की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनका स्वावलंबन। इस तीनों एक साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, उसकी राशि घर की मालकिन के नाम पर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आज की इस विशेष श्रृंखला के क्रम में हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की मौजूदगी में आज वाराणसी के नमो घाट पर 94वें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम को आयोजित किया गया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। नमोघाट से शुरू हुई साइकिल यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में 2026 आईजी नाकोया एशियाई खेलों के पदक विजेता प्राची चौधरी, पारुल चौधरी, जय कुमार और राजकुमार पाल भी शामिल हुए। शारदीय नवरात्र का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का यह धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही मां भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्यरात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है और देश विदेश से श्रद्धालु विंध्याचल पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। विंध्याचल से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
5: विंध्याचल में लगे शारदीय नवरात्र मेले में आज प्रथम दिन से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल रात से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2500 से भी अधिक पुलिस के जवान तैनात हैं। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्पर्श व फोटोग्राफी पर भी रोक लगाया गया है। मेला क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 1000 सफाई कर्मी तैनात है। मेला क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
0: बलरामपुर जिले के देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ प्रातः काल पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ। मां के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोग कतारों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं के आवास एवं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र का सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के प्रथम दिन मंदिर में पूजन अर्चन किया, बाद में बालिका सम्मान कार्यक्रम में स्टडी टेबल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर।
0: वहीं वाराणसी सहित अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मां तरकुल्हा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। नवरात्र के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों

के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी श्रेणी में 3548 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें मुख्य वाणिज्यिक, सह टिकट पर्यवेक्षक, मालगाड़ी प्रबंधक, कनिष्ठ लेखा सहायक, सह टंकण और वरिष्ठ क्लर्क के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आवेदन 6 नवम्बर तक किए जा सकेंगे। रणजी ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश टीम ने बिहार के खिलाफ राजगीर में हो रहे मुकाबले में पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना लिए हैं, जिसमें माधव कौशिक और रिंकू सिंह के शानदार नाबाद शतक शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दशहरा पर्व की तैयारियों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा नारी शक्ति का सम्मान और सशक्तिकरण समाज की प्रगति का है आधार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में लिया हिस्सा। फिटनेस अपनाने और नशा मुक्त भारत बनाने का दिया संदेश। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू, प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हाय गाइस, कैसे हाल चाल हैं? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मंडे की शाम है, बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस से घर पहुंच जाए, लेकिन कुल मिला के यार आप जहां भी इस वक्त हो आपको मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। और इस वक्त कितने बज रहे हैं ये आप मुझे

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
0: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से।
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त के दौरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया, CJP संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन पर हर संभव मदद की पेशकश की गई। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू करेगी दुर्गा ई ऑटो योजना। पहले चरण में 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9,75,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और नवरात्र आज से धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ शुरू। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त OHCHR के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया।
7: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
6: जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं और संगठन के अपने आसपास कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। श्री जायसवाल ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां पूरी तरह से कानून के अनुसार काम करती हैं और देश की अदालतें किसी भी शिकायत के समाधान के लिए सबके लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने आज कहा कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन की जानकारी मिलने पर अधिकारी उन्हें यह खबर देने और हर संभव सहायता की पेशकश करने के लिए उनसे मिले। DCP नेहा यादव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि अधिकारियों ने दिपके से कई बार पूछा कि क्या वो अपने माता पिता से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि CJP से जुड़े लोगों का पिछला व्यवहार दिखाता है कि वो किए गए वादों और निर्देशों का पालन नहीं करते।
8: CJP के पूर्व आचरण के अनुसार उन्होंने पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग्स तथा लॉकल डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया था और इनके द्वारा जुटाई गई भीड़ द्वारा भारी टकराव, आगजनी, हिंसा की गई तथा सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान भी पहुंचाया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के मामलों को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी गई थी।
6: दिल्ली सरकार ने राजधानी में अराजकता फैलाने, आम नागरिकों को परेशान करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर आम जनता को परेशान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और शहर की सामान्य व्यवस्था को बाधित करना उचित नहीं है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को बंधक बनाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा, उनकी सुविधा और शहर की सामान्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें कथित उप निरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। पुलिस ने इस वीडियो को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि फर्जी सामग्री बनाने या प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आज मेट्रो के सभी स्टेशन खुले हैं और दिल्ली मेट्रो सुचारू रूप से चल रही है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां भी निर्धारित समय सामग्री के सारणी के अनुसार संचालित की जा रही हैं।
3: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
6: रेलवे ने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की घोषणा की है। रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अनुसार कुल 3,548 रिक्तियों में से 2,750 पद मालगाड़ी प्रबंधक के लिए हैं, 371 पद वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए, 300 पद कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट के लिए और 127 पद मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 नवम्बर तक खुले हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर 2026 है, जबकि आवेदन में संशोधन की अवधि 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट देखी जा सकती है। वेबसाइट है rrb.indianrailways.gov.in। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
6: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सतत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दुर्गा ड्राइविंग उत्थान और रोजगार ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिला लाभार्थियों के लिए और 130 ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
9: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी और पात्र आवेदकों की संख्या जिले के उपलब्ध कोटे से ज्यादा होने पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
6: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज गीता कॉलोनी में दिल्ली दृष्टि अभियान द्वारा आयोजित कॉर्नियल अंधत्व मुक्त दिल्ली विजन फॉर ऑल के अंतर्गत निशुल्क नेत्र जांच शिविर में भाग लिया। शिविर में लोगों की निशुल्क नेत्र जांच की गई। श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर नेत्र स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में ये एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज भाजपा कार्यालय में आयोजित नारी शक्ति मंथन कार्यशाला में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कार्यशाला के दौरान नारी शक्ति के उत्थान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के प्रयासों को नई गति देने पर सार्थक मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हर बेटी को शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें, प्रत्येक महिला स्वावलंबी बने और प्रत्येक माँ अपनी बेटी के सुरक्षित तथा उज्ज्वल भविष्य को लेकर आश्वस्त रहे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर आयोजित जनता दरबार में क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े विषयों को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। अवैध निर्माण और जर्जर भवनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। दिल्ली सरकार ने बताया कि 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच नगर निगम ने सभी 12 जोन में 1046 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, 282 संपत्तियों को सील किया और 47 खतरनाक इमारतों को ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के मामले में संबंधित एजेंसियों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 9,75,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने बताया कि कुल स्वीकृत राशि का 60% प्रथम चरण में सत्यापित बैंक खातों के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों को हस्तांतरित किया जाएगा। शेष 40% राशि उपयोगिता प्रमाण पत्रों और संबंधित वाउचरों के सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट।
10: विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस वित्तीय सहायता से कुल 89 एलीट खिलाड़ी और 34 स्कूली खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एलीट खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 20,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग विशेष कोचिंग, आधुनिक खेल उपकरणों, पौष्टिक आहार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण जैसी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों और एलीट खिलाड़ियों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक स्वीकृत सहायता राशि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
6: दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह आज अर्जुन अवार्डी और भारतीय कबड्डी खिलाड़ी श्री पवन सहरावत के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पवन सहरावत ने एशियाई खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय कबड्डी के इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीवी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
6: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मां दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्र आज से धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ शुरू हो रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और नवीन शुरुआत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। उपराष्ट्रपति ने कामना की है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झंडेवालान मंदिर पहुंची और मां भगवती के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा का ये पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति, शक्ति और सदाचार का संदेश देता है।
11: सभी देशवासियों को मेरी ओर से नवरात्रों की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद हमारी पूरी दिल्ली पे, पूरे देश पे, हर नागरिक पे यूं ही बना रहे।
6: भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सेल के पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन पर हर संभव मदद की पेशकश की गई। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू करेगी दुर्गा ई ऑटो योजना। पहले चरण में 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 9,75,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नवरात्र आज से धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो मेरे अकेले RJ आनंद का नहीं, मेरे साथ दो और कमाल के लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, मौजूद है, उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे आज हम। और वो आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं ये मैं नहीं, वो ही बताएंगे, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि जब रेडियो पे कोई एक बार अगर सुनाई देता है तो फिर उसकी पकड़ और पहचान दोनों ही हो जाती है। यही तो खास बात है, फिर मुरादाबाद में जो आते हैं फिर वो फेमस हो जाते हैं। चलो जी, ये तो हुई हमारी थोड़ी सी फालतू बात, अब करते हैं काम की बात। आज हमारे स्टूडियो में दो लोग बहुत ही कमाल के हैं जैसे मैंने बताया, और दोनों के नाम डेफिनेटली मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन्हीं से उनका तारूफ जो है आपसे सीधा करा दें तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्योंकि ये आज की जो बेहतरीन महफिल है ना, ये आपको बहुत कुछ आनंदित करने वाली है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को सुनने को मिलेगा, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे प्यारे से जो अब हमारे श्रोता हैं और हमारे प्यारे गेस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका FM मुरादाबाद में। एक बार अपने बारे में थोड़ा बताएं जी। सर, पहले मैं चाहूंगा आप, सर आपसे जो है थोड़ा परिचय हो।
6: ये तो लखनऊ की संस्कृति थी कि पहले आप, ये मुरादाबाद में भी लागू हो गई है जी।
5: बिल्कुल सर। देखिए, दूसरी आवाज आपने पहली आवाज से पहली सुन ली, लेकिन उनको मुखातिब आपसे थोड़ी देर के बाद ही कराएंगे, क्योंकि थोड़े स्पेशल लोगों को वेट कराना चाहिए। जी सर, आप थोड़ा सा बताएं।
7: जी जी बिल्कुल आनंद जी, मैं हाजिर हूँ। श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: जी जी बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार।
7: सब भी मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं हूँ मनोज बनू, मुरादाबाद से, और दिल से शायर भी, कवि भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी कहने की कोशिश रखता हूँ। और मेरे साथ जो साथी आज एक अजीम हस्ती है जो मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखती है, शहर जिगर से ही ताल्लुक रखती है, ये हैं शुभम कश्यप जी। शुभम कश्यप जी आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। शुभम कश्यप जी, कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को।
6: FM मुरादाबाद 89.6 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शुभम कश्यप, शुभम मुरादाबादी, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आप सबसे मुखातिब होने का ये मौका मिला है। उसके लिए मैं FM मुरादाबाद की सभी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर पे मैं मनु जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस लायक समझा कि FM मुरादाबाद के सभी श्रोताओं से मैं रूबरू हो सकूं।
7: नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आज एक नया नाम है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपकी जो छाप रहेगी वो काफी लंबे समय तक हमारे श्रोतागण याद रखेंगे।
5: बहुत ही बढ़िया, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुभम जी, जो अभी आपने जैसे कि दो लाइनें बोली और सर को आपने इंट्रोड्यूस भी किया प्रोग्राम में, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन एक मजे की बात यह कि आपको ये लेकर आए, फिर आपने इन्हीं को क्रेडिट दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी यही चाहिए कि अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो उसका वो मत भूलिए, थैंक्स तो करना बनता है। सर, आपको भी धन्यवाद। मनु जी, आपको भी
7: थैंक्स टू यू। मैं बिल्कुल धन्यवाद अदा करता हूं। और अभी भाई कह रहे थे कि ये लखनऊ की रवायत है कि पहले आप, तो क्यों ना हो, हमारे यहाँ की जो राजधानी है, एक्चुअल वो
5: लखनऊ की राजधानी है,
7: हमारे योगी बाबा लखनऊ में विराजते हैं।
5: बिल्कुल,
7: तो लखनऊ है तो हम हैं।
5: ऐसी बातचीत तो बिल्कुल आपने सही कहा मनु जी, बहुत अच्छा बोला आपने, लखनऊ तो लखनऊ है, और लखनऊ वालों की बात ही अलग है। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में तो नहीं, मुरादाबाद में हैं। फिलहाल एक बढ़िया सा गीत लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे, तो फिर ये जो महफिल है इसको और अच्छे से सजाएंगे। शुभम जी हमारे साथ हैं, मनु जी हमारे साथ, तो आप कहीं मत जाइए, मेरा भी साथ आपके साथ ऐसे ही बरकरार।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने प्रोग्राम में सुना, और आज का ये जो प्रोग्राम है बेहद खास है क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत ही उम्दा खूबसूरत बना रहे हैं। हमारे साथ मनु जी हैं और साथ में शुभम भैया हैं, और शुभम जी से तो खैर हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और वो स्टूडियो में भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भैया आपको अच्छा लग रहा है हमारे ऑफिस में?
1: बहुत अच्छा लगा, खासकर वर्क कल्चर का बहुत अच्छा है, और संडे की छुट्टी आपने अपनी कुर्बान में रूपा करी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा है जब अपने जैसे कलाकार लोग मिलते हैं तो उनके लिए दिल से सलाम निकलता है क्योंकि एक कलाकार कोई कलाकारी पहचान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल सही बात
0: है ना सर
2: जी, बिल्कुल सही।
0: तो बस वही चीज है, और जब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ऑडियंस का प्यार चाहते हैं, और जब प्यार मिलता है तो कलाकार की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। क्यों?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: चलिए तो पहले ये बताइए, पहले भैया आपसे शुरुआत करें। देखिए मनु जी से तो हमने बहुत कुछ सुना है और आज भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है।

0: थी देखी गई खरी अच्छी, और ये शेर और साथ में नसीहत के घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों, घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों, गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी, गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि मनु जी भी कुछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी बहुत ही उम्दा बात किया दी बातों बातों में। मुझे लगता है कि कुछ कुछ शायरी मनु जी ऐसी होती है जो एकदम सच्चाई से हमें रूबरू कराती
2: है। जी बिल्कुल सही
1: है ना। और अब मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ बेहतरीन पेश करें।
2: देखिए आज का दिन तो शुभम जी के नाम है
1: बिल्कुल,
2: लेकिन
1: बीच में आप भी साथ देंगे तो ये महफिल में और चार चांद लग जाएंगे।
2: बिल्कुल सही,
1: मतलब
2: बिल्कुल सही आपने कहा
1: जी, जी।
2: मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले प्रोग्राम में एक नज्म के ऊपर बात हमारी,
1: हाँ हाँ, और वहीं से हमारे जो बातों का सिलसिला था वो खत्म हुआ।
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं आनंद जी ये चाहता हूँ कि एक नज्म अपने दर्शकों के अपने श्रोताओं के
0: बीच में रखूं। बिल्कुल स्वागत है।
2: और जाहिर सी बात है श्रृंगार में वियोग और संयोग दोनों ही होते हैं।
1: करेक्ट।
2: और जितने जुड़े हुए दिल खास होते हैं, टूटे हुए दिल उससे भी ज्यादा खास होते हैं। तो नज्म मैं हाजिर करता हूँ अपने श्रोताओं की पेश नजर है। इसका उन्वान है कभी तुमसे वफा की जस्तजू। देखें किस तरह अपना सफर तय करती है नज्म। कभी तुमसे वफा की जस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: वाह।
2: कभी तुमसे वफा की जस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदा सा दिखता था। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदा सा दिखता था। तेरे एहसास की शिद्दत बला थी मैं खुद से भी जुदा सा दिखता था। कभी मरकज वफा की तू ही तू थी, कभी मरकज वफा की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: क्या कहने।
2: देखें किस तरह रवानी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप भी जिसके साथ ये कैफिया बीती हो वो इससे रिलेट करें।
1: बिल्कुल।
2: कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर।
1: क्या कहने।
2: नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस थम जाती थी अक्सर।
1: क्या कहने।
2: कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर। नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस रुक जाती थी अक्सर। महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी, महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको।
1: क्या कहने।
2: कहा चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे कर चाहा था तुझको।
1: क्या कहने।
2: मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको। कहा चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे टूट कर चाहा था तुझको। मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी, मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात।
0: क्या कहने।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल। क्या बात है सर। आपने जो लास्ट में बोला ना मजा आ गया इसको सुनकर।
2: शुक्रिया।
1: नब्ज यही जो होती है, जो नज्म होती है सर उनकी बात ही अलग होती है सर। मतलब वो अंदर तक हमें चीजों से रूबरू करा देती है। बहुत ही बेहतरीन। शुभम भैया आप क्या अर्ज करना चाहेंगे इसी बात पे।
0: पहले तो मैं मनु जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत शानदार आपकी नज्म रही और जो टूटे हुए दिल की गूंज थी वो यहाँ तक आ रही थी।
2: शुक्रिया शुक्रिया दोस्त।
1: जब तक शुभम भाई तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गाना सुन लेते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: वेलकम बैक है एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, जहां बातें हो रही हैं ढेर सारी, और वो बातें जो शायद आप सुनकर भूल ना पाओ और कहीं ना कहीं आप भी अपने पुराने वाले टाइम में पहुंच जाओ। और इस पुराने वाले टाइम को याद दिला रहे हैं मनु जी और साथ में शुभम जी। बहुत बहुत आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुभम जी, और सर आपका भी धन्यवाद आप आए। और दोस्तों आप इस वक्त इस महफिल को एंजॉय कर रहे हैं, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। शुभम जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कुछ बेहतरीन आप अभी माइक के पीछे सुनाने की बात कर रहे थे, तो आप देर ना कीजिए।
1: जी मनु जी ने इतनी शानदार अपनी नज्म कही है
2: मोहब्बत भाई,
1: और मेरा भी मन हो रहा है कि ऊपर वाले की शान में कुछ अर्पित कर सकूं।
0: डेफिनेटली
2: जरूर भाई, बहुत
1: मतलब रखता हूं कि साल उसके हैं हर सदी उसकी।
2: क्या बात है,
1: साल उसके हैं हर सदी उसकी, बात करते ऋषि मुनि जिसकी, बात करते ऋषि मुनि जिसकी। और शेर है कि उसने मतलब है कि काम आती है बंदगी उसकी, काम आती है बंद

0: जिंदगी उसकी हर्ष देती है, शायरी उसकी
1: क्या बात है,
0: और शेर है मतलब है कि उसने मतलब अगला के सांस उसकी है जान भी उसकी, सांस उसकी है जान भी उसकी, अपनी आंखों में रोशनी उसकी,
1: क्या बात है,
0: अपनी आंखों में रोशनी उसकी, और शेर है कि वही अव्वल है वही आखिर है,
1: वही अव्वल है वही आखिर है, वाह
0: वही अव्वल है वही आखिर है, सबको लाजिम है बंदगी उसकी,
1: क्या बात है, वाह वाह,
0: सबको लाजिम है बंदगी उसकी, और शेर है कि उसके हाथों निजाम है जग का, उसके हाथों निजाम है जग का, मौत उसकी है जिंदगी उसकी, मौत उसकी है जिंदगी उसकी, और मक्ता यानी अंतिम शेर के, फिर ना कुछ दरमिया नजर आया, फिर ना कुछ दरमिया नजर आया, जब शुभम याद आ गई उसकी, जब शुभम याद आ गई उसकी, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट उस परमपिता परमात्मा ऊपर वाला गॉड खुदा को।
1: वाह वाह,
0: मैं श्रोताओं से उम्मीद करूंगा कि उनको पसंद आया होगा और आनंद जी को भी।
1: शुभम जी, बात ये है दरअसल की ये जब जो चीज इबादत की होती है, देखिए कुरान शरीफ के हवाले से भी ये कहा गया है कि शायरी हराम है, लेकिन ये विशेष इसलिए है कि जब इसमें सदाकत, जब इसमें सच्चाई का इस्तेमाल होता है, जब उसमें उसकी इबादत की बात होती है, जब उसकी इबादत में जो लफ्ज अदा होते हैं तो वो एक प्रार्थना बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जाहिर सी बात है इनको अगर कोई पसंद ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो ये सभी के दिलों को छूने वाली चीज है, और हम ये बेशक मानते हैं कि खुदा भगवान ईश्वर वो एक ही है, तो इबादत के ये जो आप
0: तरीके हैं वो अलग
1: जी, अलग जी, जी, जी। इबादत के लिए जो ये मिसरे आपने अदा किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप जो मक्ता कह रहे हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता पहले जान चुके हैं कि मक्ता किसे कहा जाता
0: किसे कहते
1: है?
0: हैं मतलब
1: गजल के थोड़े से ग्रामर के हवाले से।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इवन हमें भी पता चल रहा है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर देते हैं, समझना नहीं चाहते, लेकिन अगर इनको समझो तो इनकी बात ही अलग है।
1: अरे इसमें कशिश है आनंद भाई,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसमें वो कशिश है कि ये अपनी तरफ खींच लेता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और शुभम जी आप कुछ सुना रहे हैं या मैं मनु जी की तरफ आ जाऊं?
0: मैं तो चाहूंगा कि मेरा मन है मनु जी को भी सुना जाए कि क्योंकि केवल ऐसा लग रहा है कि शादी का दूल्हा बना बैठा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए मनु जी का भी, क्योंकि मुझे यहां तक लाने में मनु जी का बहुत योगदान है। तो मनु जी को उतना ही मैं चाहूंगा कि सम्मान मिले और उतना ही रेस्पेक्ट मिले, क्योंकि जब मनु जी का सम्मान होगा मैं समझूंगा मेरा ही सम्मान हो रहा है।
1: क्या बात है, अरे हमारा सम्मान तो तभी बड़ा जब आप हमारे साथ आए हैं। देखिए जहां तक बात चल रही थी तो जैसे अभी मैंने पीछे बताया तो होता क्या है कि शायरी संदेश देती है, बात करती है, महबूब की बात करती है, संयोग की बात करती है, वियोग की बात करती है। आप सामाजिकता से लेकर के दो तीन मिसरे देखें
0: जी, स्वागत है।
1: जुबां में फर्क डाला जा रहा है,
0: क्या बात है,
1: जुबां में फर्क डाला जा रहा है, उसे दिल से निकाला जा रहा है,
0: क्या कह दिया, क्या कह,
1: किसी के वास्ते पलके बिछी हैं, किसी के वास्ते
0: पलके
1: बिछी हैं, किसी को सिर्फ टाला जा रहा है,
0: क्या कहने,
1: किसी को सिर्फ टाला जा रहा है, जुबां में फर्क डाला जा रहा है। और देखें तो एक बड़ी हल्की फुल्की बात है कि
0: जी
1: मियाँ दुनिया घुमाई जा रही है,
0: हाँ।
1: बड़े चक्कर में डाला जा रहा है,
0: क्या कहने भाई, चक्कर में डाला जा रहा है,
1: बड़े चक्कर में डाला जा रहा है, और कहीं लाले पड़े, ये संजीदा शेर है
0: जी,
1: कहीं लाले पड़े हैं रोटियों को, कहीं लाले पड़े हैं रोटियों को, कहीं जाया निवाला जा रहा,
0: क्या
1: है,
0: कहने, क्या कहने,
1: कहीं जाया निवाला जा रहा है। और ये शेर बतौर खास कि किसी दहलीज पे दीपक रखा था, किसी दहलीज पे, शुभम भाई, किसी दहलीज पे दीपक रखा था, गली भर में उजाला जा
0: क्या
1: रहा
0: कहने,
1: है,
0: अच्छा शेर है,
1: गली
0: अच्छा
1: भर में उजाला जा रहा है। और आनंद भाई के کہ اب آزاد ہو جائے پرندہ, کہ اب آزاد ہو جائے پرندہ, یہ پنجرا توڑ ڈالا جا رہا ہے, یہ پنجرا توڑ ڈالا جا رہا ہے, معنی خیز ہر ایک شیر اپنا محبت سے سنبھالا جا رہا ہے, محبت سے سنبھالا جا رہا ہے. اور دیکھیں دور حاضر میں کبھی ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے,
0: جی جی,
1: تو کیسے کھیت کھلیان, کھیت کے ملے ہوئے اپنے کھلیان جیسے بڑے ایک آنگن ہوا کرتے تھے, تو اسے کی بات کرتا ہوا ایک شعر اس میں دیکھیں آپ. شبھ
0: جی سواگت.
1: کبھی رہتا تھا دالانوں میں کھل کر, آپ ملٹی سٹوریز دیکھیے اور گاؤں کا پریدرشیہ دیکھیے جو ہم چھوڑ کر شہروں میں پہنچ گئے ہیں,
2: پہنچ گئے ہیں, بالکل بالکل سر.
1: کبھی رہتا تھا دالانوں میں کھل کے,
0: واہ,
1: مگر اب چار مالا جا رہا ہے,
2: ارے واہ,
1: مگر اب چار مالا جا رہا ہے, اور کہاں کا لطف یارو عاشقی میں, کہاں کا لطف یارو عاشقی میں, مسلسل درد ڈھالا جا رہا ہے, مسلسل درد ڈھالا جا رہا ہے, کہیں لالے پڑے تھے روٹیوں کو, کہیں لالے پڑے ہیں روٹیوں کو, کہیں سایہ نوالا جا رہا ہے, زباں میں فرق ڈالا جا رہا ہے, انہیں دل سے نکالا جا رہا ہے.
2: ارے واہ گزب, بہترین. تو شروتاؤں, یہ جو محف ہے وہ لگاتار جو ہے سجی ہوئی ہے, کچھ نظم سے تو کچھ شعر و شاعری سے تو کچھ غزلوں.
3: ہائے دیانند جی, آپ کا دولہا تو بہت ہی جج رہا ہے.
4: ہو بھی کیوں نہ بھابھی, راج کلیکشن نے جو سجایا ہے, آفٹر آل ان کا کہنا ہے دولہے ہم سجاتے ہیں باراتی بھی سجنے آتے ہیں.
5: کمپلیٹ رینج آف
6: نیپال کی بوڑھی گنڈکی ندی میں اچانک
7: ویسن کے ساتھ 10,000 کی خرید پر ہلدی آؤٹ فٹ فری.
8: تو آج ہی وزٹ کریں راج کلیکشن, اولڈ تحصیل گیٹ مراد آباد.
9: سر درد, لکوا یا ریڑھ کی تکلیف, کیا آپ بھی ان پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں؟ تو اب علاج کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. بی ایم سی ہاسپٹل میں اپلبدھ ہیں انوبھوی نیورو سرجن ڈاکٹر مونت اگروال, جہاں ہوگا آپ کے ہر نیورو پرابلم کا صحیح سمادھان. پتا A42 گاندھی نگر مراد آباد.
10: شادی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ہو نیچر کا تھرل اور لگژری کا چل, تو سواگت ہے دیوشاد جنگل ریسورٹ اینڈ سپا جم کوربٹ رام نگر نینی تال میں, جہاں بنتی ہیں ڈریمی ویڈنگز ود پرائیویٹ پول, جکوزی رومز, گرینڈ بینکویٹ ود 120 پلس رومز, سپا اینڈ مچ مور.
11: بک ناؤ 9258253081 اینڈ فور مور ڈیٹیلز واٹس ایپ 9258253081.
12: अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है. भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है. हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है.
13: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया. चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है. श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
12: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा. Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
13: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की.
12: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे. Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा.
13: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.
12: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है. हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
13: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
3: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
5: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
6: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
5: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
7: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं।
5: डीकॉलोनाइजेशन। सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध

0: हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। हमें प्राप्त होता था उसकी भी बात और थी,
5: बिल्कुल सही,
4: क्योंकि कहीं ना कहीं गांव का वो माहौल रहता था कि लोग आपस में एकजुट थे, और आज का माहौल यह है कि आदमी बहुत ज्यादा तन्हा है।
6: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आप,
4: भीड़ में भी तन्हा है,
6: भीड़ में भी तन्हा है, बिल्कुल भैया। और मुझे लगता है कि देखिए, अब जो है ना जमाना, जिससे थोड़ी देर पहले मनु जी ने भी कहा कि बहुत फास्ट हो गया है, इंसान को ना पेशेंस नहीं रहा है, सब्र नहीं रहा है, हर किसी को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए,
4: बिल्कुल,
6: मतलब उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज तुरंत मिनटों सेकंडों में हो जानी चाहिए, जबकि पहले के लोगों में बहुत पेशेंस। उनको देखो ना, खेती कर रहे हैं, अगर आज हमने गेहूं लगाया तो पूरा वेट करना पड़ता है उनको, और उसके बीच में कितनी सारी वो लोग मेहनत करते हैं, जा रहे हैं खेत खलियान की साफ सफाई, सारी चीजें। तो वो पुराने लोगों में पेशेंस भी था, और पुराने लोगों में एक अपनी ईमानदारी भी थी कहीं ना कहीं।
4: और उसमें भी रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा ये कि मौसम खराब न हो जाए, उसके बाद भी कभी किसान ने ये नहीं कहा, कभी वो किसी को मतलब बद्दुआ नहीं देता,
5: ब्लेम नहीं दिया,
4: ब्लेम नहीं दिया, है ना।
6: करेक्ट करेक्ट यार, वो चीज तो यू नो सीखने वाली है।
5: देखिए, यही चीज जो अनसर्टेनिटी है, जो मौसम की अनसर्टेनिटी थी, यही जो है उस ऊपर वाले के लिए उसमें जो हमारा एक विश्वास होता है उसको अट्यूट बनाती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज जो हमारे हाथ में नहीं होती, वो प्रकृति के हाथ में होती है, और उसका निजाम उस खुदा के, उस ईश्वर के पास होता है। तो विश्वास की जो जड़, जो नींव मजबूत होती थी, वो यही। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम विज्ञान के साथ प्रगति करके सब कुछ अपने लिए अरेंज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भूल है। हालांकि ऐसा नहीं है, विज्ञान के जो भी अभी हम पायदान चढ़ते हुए आए हुए, हमने तरक्की की है, ये भी अपने आप में कम चीज नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन यह है कि किसी को फरामोश कर देना ऐसी स्थिति में कि ईश्वर को मानना नहीं, या उस असीम शक्ति जो एक ये पूरा जहां चला रही है, उससे हम अलग हो जाए, उसको हम मानना बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए,
6: नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मनु जी आपने, बहुत ही बेहतरीन बात आपने बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और गाइस, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम लेंगे इन लोगों से इजाजत। जाते जाते भी कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। एक बहुत ही खूबसूरत गीत निकाल कर लाए हूं, इसको सुनते हुए आ गएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का करना चाहूंगा। लौट कर आता हूं, अभी नहीं जा रहे, डोंट फरी।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जहां आनंद के साथ आज की जो महफिल है वो बहुत ही एकदम धाकड़ वाली हो गई है भाई, क्योंकि यहां पर हमारा साथ दे रहे हैं शुभम जी, मनु जी, और लगातार कुछ ना कुछ नई नई बातें कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो जो शेरो शायरी का माहौल बना हुआ है महफिलों बहुत ही बढ़िया, लेकिन बीच बीच में मजे की बात है कि उन्होंने सीखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, नए नए शब्द, नई नई जानकारियां, और जो ये बता रहे हैं, जो ये सुना रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम चाहेंगे आप ऐसे ही हफ्ते भर में एक दो बार चक्कर लगाएं और कुछ नया सिखा कर जाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आप बुलाते रहेंगे तो हम आते, आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे।
0: अरे शुभम जी, आपका तो बुलाते रहेंगे, वाई नॉट। और मनु जी तो खैर हमारे साथ जुड़े हैं ही, तो अब जो है पहले कौन शुरुआत करेगा और क्या, अब ये हमारा लास्ट है, तो अब जाने से पहले कुछ अच्छा हमारे श्रोताओं के लिए जो आप चाहें।
3: फिर वही लखनऊ की, पहले आप आ गया,
2: उम्र हाथ में ज्यादा फर्क नहीं है।
0: देखिए मुझे लगता है कि भाषा कोई भी उसमें तहजीब होनी चाहिए।
3: मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हाँ। ये जो हमारी बातचीत चल रही है इसे बोलते हैं अदब,
0: अदब
3: और अदब के मामले में जो लखनऊ है वो एक स्कूल है,
0: स्कूल है,
3: रामपुर एक स्कूल है,
0: एग्जैक्टली।
3: तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ की बात चलेगी वहाँ का जिक्र हमेशा होता ही,
0: बिल्कुल, और वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जिसे कह सकते हैं वो हम मतलब बैठे मुरादाबाद में होते हैं लेकिन पहुंच लखनऊ में जाते हैं, मजे की बात है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल
3: छोटा सा याद आ रहा है
0: जी, सर प्लीज अर्ज
3: के दिल में ही रहती है तस्वीरें यार, दिल में ही
2: रहती है तस्वीरें
3: यार, जब जरा नजर झुकाई देख ली।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही
3: शेर कहे गए हमारे उस्तादों द्वारा।
2: और इसी शेर से याद आता है कि मुझे शेपर रसूल साहब का, कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया।
3: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: गजब, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा शुभम जी आप आए, मनु जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत ही आनंद आया, आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत आनंद आया होगा। तो अब जाने का समय हो रहा है, हमारे तमाम सारे श्रोता हैं जो चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम और ज्यादा चले, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को हम जो है यहीं पर समाप्त इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे।
2: बिल्कुल
0: क्यों शुभम जी,
2: बिल्कुल
0: दोबारा भी तो बुलाना है यार, सारा पिटारा आज ही थोड़ी खुलवा लेंगे भाई,
2: सही बात।
0: तो शुभम जी फिलहाल मैं लेकिन चाहूंगा कि जाने से पहले आप कुछ चार शब्द हमारे लिसनर्स के लिए कहकर जाएं, कुछ बेहतरीन सा सुनाकर जाएं जो आपके लिए भी बेहतर हो और हमारे श्रोताओं के लिए भी।
2: मैं
0: और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा हमारे लिसनर्स।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एफएम मुरादाबाद 89.6 में आके मुझे बेहद खुशी हुई, और आनंद जी से खास तौर पर मिलके जिस सादगी से आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और साथ ही में कई बार क्या होता है जो एंकर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब बोल जाते हैं, इसमें क्रिटिसाइज इसलिए ऑडियंस उनको करती है कि जो हमारे जो मेन गेस्ट है उनको सुनने को नहीं मिल पाता, बट मैं इस चीज में आपकी तारीफ करूंगा कि आपने गेस्ट को टाइम दिया एक तो उसके लिए, और बहुत ही आपका बोलने का बहुत शानदार लहजा है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से।
0: आप जैसे लोग आते हैं तो सीख जाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा कुछ इनसे सीखा कुछ।
3: ये तो शुभम जी समझने की बात है कि हम जिनके साथ रूबरू हैं, जो हमारे आरजे हैं आनंद, उनका नाम ही आनंद है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और तो साथ में आनंद आ गया देखकर, इनसे मिलकर, इनके प्रोग्रामों के साथ अगर आनंद ना आए तो क्या बात है,
0: क्या बात है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाते जाते मैं एक देशभक्ति के कलाम से इजाजत लूंगा सभी श्रोताओं से, कि
3: बहुत अच्छी बात है देशभक्ति,
2: क्योंकि देशभक्ति का माहौल भी मैं समझता हूँ होना चाहिए, देश प्रेम होना बहुत जरूरी है आज के समय में।
3: नहीं बिल्कुल सही बात,
2: तो मतलब अर्ज करता हूँ कि एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है,
0: क्या बात है,
2: एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है, एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है। और हिंदुस्तानी आदमी कैसा है कि इवन महिलाएं भी, मतलब एक हिंदुस्तानी होने का क्या अर्थ है कि सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं,
0: क्या बात है,
2: सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है, काबिले तहसीन का अर्थ मैं बताता चलूं कि तारीफ लायक, काबिले तहसीन यानी तारीफ के काबिल। और शेर है कि चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, ए वतन तेरे लिए हर एक ही कुर्बान है, ए वतन तेरे लिए हर एक ही कुर्बान है। और शेर है कि है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ,
3: वाह
2: है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगा FM रेडियो 89.6 के सभी श्रोताओं से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और साथ ही आनंद जी वेरी मच, जोरदार तालियां यार, आपने तो माहौल अलग ही कर दिया। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं 26 जनवरी के दिन तो नहीं आ गया हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। और जाते जाते ये बड़ा हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा और उनके लिए एक यादगार भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी आपने जो है बात कह दी।
3: नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और बहुत अच्छी हुई है, जो इनका संदेश था
0: जी
3: वो कौमी एकता के लिए है, जो हिंदू है।

0: समझे, खुदा करे कोई। तो समझ नहीं थी, उम्र कम थी, 10 साल में, 10-11 साल में पिछले जो भी सीखा हूँ ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। और
1: बेहतर है, बहुत अच्छी बात है।
0: और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मनु जी का लगातार सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। जब भी मैं कहीं अटकता हूँ तो मनु जी को ही याद करता हूँ कि भाई यहाँ अटकाऊ।
1: ये तो मोहब्बत है भाई आपकी,
0: तो
1: अदरवाइज तो हम सीखते हैं आपसे।
0: नहीं नहीं, तो ये है।
2: थैंक यू शुभम भाई, बहुत बढ़िया लगा। और मैं आपको दोबारा जरूर इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, और मेरे श्रोताओं को भी इंतजार रहेगा और मुझे भी इंतजार होगा। मनु जी, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, मुझे पता है श्रोता बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम दोबारा के लिए भी चीजें बचा के रखना चाह रहे हैं। तो मनु जी, आप जाते जाते कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें, कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे तमाम मुरादाबाद की जनता को?
1: आनंद जी, जैसे आपने कहा संदेश की बात है, एक शायर अपने कलाम से ही
0: बिल्कुल
1: कोई भी बात कह सकता है, तो वही कहने की कोशिश है। देखिए, आपने सुना होगा कि ताली एक तरफ एक हाथ से नहीं बजती है।
2: करेक्ट, बिल्कुल।
1: तो आप इस चीज को नजर में रखें और 2-3 मिसरे देखें।
2: बिल्कुल
1: शुभम भाई, आप भी देखें।
0: स्वागत है।
1: खूब तर तो है
0: हाँ,
1: मगर ये फैसला दोनों पे है।
0: क्या कहने,
1: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आवो हवा दोनों पे है। और तू है बीमारे तमन्ना और मैं बीमारे इश्क, आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है।
0: क्या कहने, बहुत।
1: आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है। और कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, बावफाई बेवफाई मसला दोनों पे है।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: मसला दोनों पे है। और इस कदर भी टूटकर, इसे ताईद भी समझ सकते हैं, इस कदर भी टूटकर क्या चाहना इस राह में, इस कदर भी टूटकर क्या चाहना इस राह में, निस्बतें किसकी बदल कर हों जुदा दोनों पे है।
0: क्या कहने,
1: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए,
2: क्या बात है,
1: आबो हवा दोनों पे है,
2: दोनों पे है।
1: और बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए।
2: वाह वाह, क्या बात है।
1: देखिए, परिवारों पे भी ये चीजें अक्सर रही हैं। बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए, आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है। आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है। और ये गजल का शेर गजल में जरूरी हो जाता है, तो देखें कि झुक गईं दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर, झुक गईं दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर, खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है। खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है। खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आबो हवा दोनों पे। तो साथियों, श्रोतागणों से मैं अपने कहना चाहता हूं कि केवल ये इंतजार ना करते रहें कि पहले आप पहले आप, ये एक अच्छी बात तो है, लेकिन इसके पीछे एक चीज ये भी छुपी हुई है कि कई अच्छे मौकों पर पहले आप की वजह से हम लोग इन चीजों से दूर हो जाते हैं। तो हमें वो दूरी कम करनी है और हम ऐसे जहां हमारे रिश्ते बसते हों, जहां हमारे संबंध बसते हों, जहां हमारे लिए एक अच्छी बातें होती हों, उसमें पहल करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। और फैसला दोनों पे होता है तो निश्चित रूप से सामने से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना है।
2: क्या बात है, क्योंकि विश्वास बिल्कुल आपका मानना ही हमारा मानना है। आपने जो है मेरी बातों को एकदम यहीं पे प्रोग्राम को टेन कर दिया है। थैंक यू सो मच शुभम एंड मनु जी, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद। मैं उम्मीद करता हूं श्रोताओं आपको ये प्रोग्राम डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताना। फिलहाल लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, छोड़ के जा रहा हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। जल्दी होगी आपसे मुलाकात और फिर से लेकर आएंगे शुभम जी को, साथ में मनु जी को। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

क्या बात है। देखो अभी जैसे ही गाना बजा ना, मैं वापस स्टूडियो में आ गया हूँ, आपसे बात करके चैन मुझे भी मिलता है। कैसे हालचाल है? वेरी गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। एंड आज दिन की बात कर लेते हैं भाई। संडे का दिन है, 9:21 हो रहे हैं, अपनी घड़ियां मिलाओ एक बार। वेलकम बैक एक बार फिर से, जितने भी लोग जहां भी जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट यार। वैसे संडे है, आई नो दैट आज बारिश होगी, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, कुछ लोग हैंगआउट करने के लिए निकल रहे होंगे तो कुछ लोग घूम घाम के घर की तरफ वापस आ रहे होंगे। और मैं आया हूं एक जोरदार जुखाम के साथ, क्योंकि यार वेदर चेंज हो रहा है बाहर। आपको बताया ना मौसम में कितनी मतलब तेजी से जो है चेंजेस हुए हैं, कितनी तब्दीली हुई है वेदर में। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जो बारिश हो रही है बाहर, ये जो मौसम बदल रहा है ना, अब हम धीरे धीरे ठंडी की तरफ जो है अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, अगर आपके घर में छोटे बुजुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। फिलहाल हेलो हाय नमस्कार, कैसे हालचाल आप सभी का, वेलकम एक बार फिर से। आपने ट्यून इन कर लिया है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज FM मुरादाबाद 89.6। आप मुझे जहां भी सुन रहे हैं बहुत ही बढ़िया मेरी जान, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान है 9837896896। स्टूडियो का नंबर है, कोई गाना सुनना चाहते हो, कुछ भी बात अगर दिल में है तो डू शेयर विद मी 9837896896। मेरा नंबर है, एक अच्छा सा गाना बजाते हैं फिर लौट कर आते हैं। कुछ खास लोग स्टूडियो में हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो यार मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए, आपकी मोहब्बत है यार, मैंने बोला नहीं इधर कॉल आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा इंतजार करो यार, अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा सांस तो लेने दो भाई। वैसे किस किसने व्रत रखा है जल्दी से बताओ मुझे। मुरादाबाद, इस वक्त आप मुरादाबाद में नहीं है, मुरादाबाद के बाहर भी मुझे सुन रहे हैं आप, जहां भी सुन रहे हैं, जिस भी स्टेट में आप मुझे सुन रहे हैं, वहां से आप मुझे एक मैसेज जरूर ड्रॉप करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूं आपके लिए, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आएंगे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर। मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे कॉल्स मेरे पास नॉनस्टॉप आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर आपको कॉल नहीं लग रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको दिल से फ़ोन लगाना है, बटन दबाना है अपनी स्क्रीन पर जाके 9837896896 पे, ठीक है जी। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज की ये संडे की स्पेशल वाली जो इवनिंग है इसको और भी वंडरफुल बना सकते हैं आप हमारे साथ। कुछ अगर सुनना चाहते हैं, कुछ अगर कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे। और इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नॉनस्टॉप कॉल्स हमें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए हर दिन एक कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ हमें देकर जाता है, सिखाकर जाता है ना। वैसे ही आज की शाम भी है जो बहुत कुछ देकर जा रही है। आज पूरे दिन में क्या कुछ स्पेशल आया वो सब कुछ हमें पता लग रहा है, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़े, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो सर, मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप गाड़ी में हैं तो प्लीज़ अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लें रेडियो की, वरना मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं तो रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें प्लीज, नहीं तो मेरी आवाज मुझे सुनाई देती है। हेलो
1: ओके सर, ओके।
0: हाँ जी हाँ, कैसे हैं सर? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? अरे सर थैंक यू, माई प्लीजर। क्या नाम है सर आपका?
1: हर्षित रस्तोगी।
0: ऑल राइट, कहाँ से कॉल कर रहे हैं हर्षित भाई? अच्छा, गाड़ी में बैठे हो क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। कहाँ निकल रहे हो यार?
1: बस ऐसे ही, अब तो अपना शहर इतना बढ़िया हो गया, रोड इतनी बढ़िया हो गई, लाइटिंग इतनी अच्छी हो गई।
0: आई नो यार, आई नो। मतलब मुरादाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यार इन बीते दिनों में मुरादाबाद जो एक अलग ही चकाचौंधी में नहाया है ना, उसकी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है यार मुरादाबाद शहर को लेकर। मैं खुद मुरादाबाद से नहीं हूँ, बाहर से हूँ, बट अब देखता हूँ
1: बाहर से आए दूर ले जाने से अच्छा शहर में भी काफी कुछ घुमा सकते हैं।
0: ट्रू यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। हर्षित भैया वैसे प्रोफेशनली क्या करते हो आप?
1: मेरा सर बिजनेस है।
0: ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। रेडियो पे क्या इंटरेस्टिंग लगता है हर्षित भाई आपको यार, जरा थोड़ा सा ये बताओ।
1: किस चीज़ में?
0: हाँ, रेडियो पे क्या इंटरेस्टिंग लगता है यार?
1: रेडियो में सर जो वन टू वन टॉक्स होती है, एकदम सडन बातचीत निकल के आती है, आप लोगों से बात करते हैं, उनके अलग व्यूज निकल के आते हैं, आपके शेरो शायरी सब चीजें बढ़िया लगती है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है।
0: और सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या लगता है मुझे? सबसे बड़ा एडवांटेज की आप खुद भी अपनी आवाज सुन पाते हो, आप खुद भी लोगों से बात कर पाते हो। हर्षित भाई, मैं खुद पहले रेडियो लिसनर था, मैं बड़ा ट्राई करता था एंड मेरे को ऐसी फील आती थी यार मैं कब रेडियो जॉकी बनूंगा, एंड अब जब मैं खुद आरजे बनाऊं तो अब मैं वो जो एक स्पेशल मोमेंट होता है ना लिसनर वाला, वो बड़ा मिस करता हूँ यार मैं, कि उस टाइम पे मतलब एकदम से कॉल लगाना, जब कॉल लग जाता है।
1: बहुत लोग कहते हैं तुम्हारी बोलने की कला बहुत अच्छी है, कुछ करो करो, बस अपनी रूटीन लाइफ में व्यस्त है।
0: अरे तो सर किसी दिन टाइम निकाल के आइए ना, हम एक बढ़िया सा टॉक शो बनाते हैं आपके साथ। कैसी बात कर दी आपने?
1: डेफिनेटली
0: हम एक नया शो लेकर आने वाले हैं, ऐसे शौकीना लोगों के लिए जो बहुत शौकीन है, जिनको बातों की दुनिया से प्यार है, उनके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं।
1: चलिए सर,
0: बहुत बढ़िया। तो हर्षित भाई बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज की शाम, कुछ कहना चाहोगे? संडे है, नवरात्रि की शुरुआत होगी, सबसे पहले तो जय माता दी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, जय माता दी। और एक तरीके से एक नव वर्ष है, एक तरीके से नया नौ दुर्गे शुरू हो रहे हैं, पहला दिन है तो सब लोग अपना एक पॉजिटिविटी से
0: संडे
1: था
0: या
1: नया स्टार्ट करें, एक अच्छी वाइब से, अच्छी पॉजिटिवनेस से, और लाइफ को एक बढ़िया तरीके से लेके चलें।
0: बहुत तो बढ़िया,
1: नीचे सब चलते रहता है चीजों में,
0: बहुत ही
1: एक नई शुरुआत करें, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ।
0: यार हर्षित, अब तो मैं भी बोलना चाहूंगा कि सच में आपके अंदर बोलने की कला तो अच्छी है, नो डाउट।
1: चलिए सर, अब देखिए दो मिनट के अंदर इतना साबित कर दिया, अगर दो घंटे बैठेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे।
0: आई टोटली एग्री विद यू यार, सही बात है, और आप जैसे लोगों की तलाश करते हैं हम।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, नंबर सेव कर लीजिएगा। डेफिनेटली। अच्छा कौन कौन है साथ में अभी गाड़ी में आपकी?
1: सर मेरे पास सर एक वाइफ है मेरी जो एक ही है।
0: हाँ, वाइफ एक ही होती है यार, ये क्या बात होती है।
1: और क्या कहते हैं, बाकी हमारा बेटा भी गाड़ी में
0: बैठा है। ओह वाओ, क्या बात है यार, क्या नाम है बेटे का?
1: वर्षित,
0: क्या बात है, हर्षित विद वर्षित।
1: के ऊपर भी एक कहानी है, मेरी वाइफ का नाम वर्षा है।
0: वर्षा, अयो जी,
1: वर्षित,
0: हर्षित वर्षा एंड वर्षित, वाओ यार, मतलब पूरा पैकेज लेके घूम रहे हो।
1: हर्षित वर्षित, तो वर्षित ऐसे निकलाया।
0: अच्छा, ओ वाओ, वेरी नाइस। नहीं मतलब एक पूरा प्लैटिनम पैकेज लेके घूम रहे हो आप साथ में ना?
1: हाँ सर, बस प्लैटिनम पैकेज की बात तो सर ऐसी है कि अभी वर्षित पार्ट 2 भी आने वाला है।
0: हाउ स्वीट यार, चलो एडवांस में कांग्रेचुलेशन भाई। तो हर्षित भाई बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगा कि आप विद फैमिली हमारे स्टूडियो आए, किसी दिन बैठ के मस्ती करते हैं सर।
1: बिल्कुल
0: वंडरफुल टॉकिंग टू यू हर्षित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। क्या सुनोगे आज की शाम? गाड़ी में हो, फैमिली है, इतना अच्छा माहौल है, ओकेजन इतना बढ़िया है, सो टेल अस यार क्या सुनना चाहोगे?
1: गाड़ी में तो सर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, इसके लिए कुछ सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो बाद में सुनने को मिलेगा।
0: आई नो यार, इसीलिए मैं चाहता हूँ भाभी जी खुश हो जाए, इसीलिए वो मुस्कुरा भी नहीं है आपकी बातें सुन के, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो कौन सा गाना मैं अपनी पसंद का चला दूं या आप कुछ सुनेंगे भाभी के लिए स्पेशल?
1: हाँ सर, मेरा एक फेवरेट गाना है जो मैं इनको हमेशा डेडिकेट भी करता रहता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब आई फील लाइक दैट।
0: अरे वाह, प्लीज यार।
1: गाना है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है,
0: ये तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तेरे बिन, ये लिफ्ट का गाना है आई थिंक, ये अक्षय कुमार वाला, राइट?
1: हाँ जी एग्जैक्टली।
0: ऑल राइट, अच्छा मैं चाहूंगा यार हर्षित थोड़ा सा गुनगुना दोगे तो भाभी और खुश हो जाएगी यार, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तुझे पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, तू कभी सोच ना सके। बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब वो कहते ना शाम मेरी खूबसूरत कर दी आपने यार, सच में यार बड़ा मजा आया।
1: आप काफी लोगों की शाम खूबसूरत करते हैं, आज हमने आपकी शाम कर दी
0: यार, ये तो मेरे लिए बड़ी लक की बात है यार, बहुत अच्छा लगा आज। वैसे मेरी संडे ड्यूटी होती नहीं है बट आज हाँ, मैं मोस्टली मेरा मंडे टू सैटरडे में आता हूँ हर्षित भाई।
1: अच्छा ओके, और सर मैं मंडे टू सैटरडे मिलता ही नहीं हूँ, मतलब मेरे पे टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी।
0: अच्छा यार, ये तो बड़ा गजब सिनेरियो हो गया।
1: कोइंसिडेंस वाली बात है सर, आज कुछ होना था, आपकी मेरी बात होनी थी।
0: आई नो हर्षित भाई, सच में यार आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी बात पे ये गाना मैं वर्षा भाभी के लिए प्ले कर रहा हूँ यहाँ से, और साथ में जरा वर्षित का भी ख्याल रखिए, है ना? चलिए बाय बाय, थैंक यू भैया। ये थे हर्षित रस्तोगी एंड पूरी फैमिली के साथ रेडियो पर थे। अगर आपको सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए ना यार, मैं आपके पास हूँ। कुछ भी कहना चाहते हो, अकेला फील कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना आपके साथ, आपका दोस्त। कुछ भी कहना चाहते हो या कहना चाहती हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर बहुत आसान है एंड अब तक ये नंबर आपको याद हो जाना चाहिए था, 9837896896, दिस इज़ माई नंबर। तुलसी कुमार अरिजीत सिंह की आवाज़ फ्रॉम द फिल्म एयरलिफ्ट का एक गाना, इसकी रिक्वेस्ट डाली थी हर्षित भाई ने, एंड अपनी फैमिली के साथ वो इन्जॉय करने वाले हैं इस गाने को, आप भी वॉल्यूम बढ़ा के इन्जॉय करो। कॉल नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा, कर लो यार।

लिफ्ट का गाना भी आप एंजॉय कर थे। वेरी गुड इवनिंग, आपके चरणों में समर्पित होते हुए आपको बोलता हूँ, कैसे हालचाल है जी? आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। 11 अक्टूबर की शाम है, संडे का ये दिन है। कैसे संडे चला जाता है यार, मुझे खुद को भी नहीं पता होता। इतना एक्साइटेड होते ना जब स्कूल टाइम में होते थे, यार कल संडे स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टी रहेगी, ये वो, मतलब। लेकिन अब यार संडे का बिना मतलब इतना क्रेज रहा नहीं है यार। एक बार फिर से वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को। खुशी की ड्यूटी होती है लेकिन आज उसका फास्ट है। मैंने कहा चल बच्चा तू रेस्ट कर, आज मेरे को दे दे थोड़ा सा टाइम।

0: हाँ जी, तो भैया देखो अभी फिलहाल मैं आपके साथ 10 बजे तक हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, और आपको पता है कड़क अपडेट देता हूँ। मुरादाबाद के अंदर जो रामलीला ग्राउंड है, अगर आप वहाँ पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो जरूर आओ यार, क्योंकि मैं भी आपको वहाँ कहने के मिल जाऊंगा ऐसे ही जाते आते जाते, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है। रामलीला एक साल में एक बार होती है, और ये जो रामलीला होती है ना, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि दशहरे का मेला भी होता है, और ये रामलीला और भी स्पेशल हो जाती है जब हम मुरादाबाद की बात आती है। और आज की रामलीला बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप ये सोच के नहीं जा रहे कि बारिश हो रही है वो, तो एक्सक्यूजेस मत दो यार, आज रामलीला में आ जाओ, मेरे से भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आइए, मैं भी पहुंचूंगा थोड़ी सी देर में, यहां से सीधा रामलीला ग्राउंड में ही आपको मिलेंगे। और वहां पे एक्सक्लूसिवली क्या चल रहा है अगर आप ये जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, मेरा इंस्टा हैंडल फॉलो करना है, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूं। फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, अच्छी बात नहीं है, जल्दी फॉलो करो यार, मेरे भी थोड़े से फॉलोवर बढ़वा दो भाई, मजाक सुनो से, डोंट माइंड यार, हां आई एम जस्ट किडिंग बॉस। एक कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं बड़ी देर से, एंड ये काफी पुराने लिसनर है मेरे, इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: हेलो नमस्कार भाई साहब।
0: जी जी, आपको भी नमस्कार। जी जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मझोली मुरादाबाद से बोल रहे हैं हम।
0: जी जी बताइए, मझोली, अच्छा ये मझोला मझोली दोनों एक हैं अलग अलग हैं?
1: अलग अलग हैं, थोड़ा एरिया में वो है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: बहन भैया होते हैं ना?
0: अच्छा बहन भैया होते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, मैं बड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ, ये मझोला है या मझोली है?
1: अच्छा आपको।
0: अच्छा जी जी जी जी, तो आप ये बताइएगा सर, आज आपने फोन किया है तो आप कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना तो सुन लेंगे, थोड़ा बात तो कर ले आप।
0: हाँ सर बिल्कुल, आपकी शेरो शायरी सुनना चाहता हूँ मैं। आपने कहा था ना कि वो मैं शेरो शायरी करूंगा, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कुछ शेरो शायरी हो जाए। नवरात्रि की शुभकामनाएं पहले आपको सर।
1: भगवान सबको दुआ देवे, मैं जो सब कहता हूँ।
0: जी सर बहुत अच्छी बात है, हमारी भी दुआ आपके लिए है बस।
1: जो ब्रत रखे उनकी उम्र बड़ी हो,
0: मेरी भी उम्र बड़ी कराओ यार, मेरी भी उम्र बड़ी कराओ।
1: आदमी कुछ लालच में ही ब्रत रखता है।
0: अच्छा ये मुझे नहीं पता था, वैसे मेरे मन में कोई लालच नहीं, मैंने बस माता रानी के लिए व्रत रखा है।
1: नहीं बिना लालच के कोई आदमी नहीं करता, ये मेरी गारंटी लिख के रख लो आप।
0: अरे वाह क्या बात है सर, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो शायद हो सकता है।
1: कौन भगवान के लिए रखता है, कौन भगवान की दुआ करता।
0: सही बात है सर। अच्छा आज कौन सी शायरी सुनाएंगे आप, भगवान जी वाली सुनाएंगे या प्यार वाली?
1: मैं तो दोनों को मिक्स कर दूंगा।
0: हाँ तो आप दोनों सुनाओ, बहुत मजा आएगा सर, आपकी शेरो शायरी सुनते हैं।
1: आपका नाम क्या भाई साहब?
0: सर मेरा नाम आनंद है, मैं यहाँ पे डेली शो करता हूँ।
1: आनंद नहीं है मेरे दिल में आनंद खाकर।
0: हाँ
1: आनंद नहीं है मेरे दिल में आनंद खाकर।
0: जी
1: गुटके को तो आदमी यूं ही फूंक देते हैं।
0: हाँ क्या बात है, ये जो आपने शायरी बोली ये बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको आप आइडेंटिफाई कर दीजिए।
1: मैं अंग्रेजी नहीं आती मुझसे।
0: मैंने कहा सर आपने जो शायरी बोली है ना, उसका थोड़ा सा आप अर्थ बता दीजिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ना।
1: आनंद नहीं आता मुझको आनंद खाकर, आनंद एक माउथ।
0: अच्छा वो एक माउथ फिनिशनर है। अच्छा आनंद नहीं आता मुझको आनंद खाकर, लोग उसको थूक देते हैं, ऐसा आपने कुछ बोला? अच्छा ओके ओके,
1: खाकर तो यूं आदमी थूक देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ और शायरी शायरी सर?
1: छोटी सी थी बहुत ही।
0: बहुत बढ़िया, और बताइए सर कैसे चल रहा है जिंदगी, सब बढ़िया चल रही है?
1: बस बढ़िया, आपकी दुआ भाई साहब। आज पहली बार आपसे बात करिए, अखिल भाई होते हैं ना, अखिल भाई का नाम उनका नक्शा।
0: हाँ अखिल, अखिल नाम है, अखिल नाम है वो। हाँ, अखिल भैया ही होस्ट करते हैं रात
1: का शो। बहुत ही मजा आता है उनसे शायरी करते हैं। समझा ना मुझको अपना होते हुए भी अपना।
0: हाँ
1: समझा ना मुझको अपना होते हुए भी अपना।
0: ओए होए
1: अब टूट गया वो देखा था वो कभी सपना।
0: क्या बात है, कौन सा सपना टूट गया है आपका सर, बड़े दुखी लग रहे हैं आज आप।
1: अरे नहीं अभी ये मेरे मुंह से समझा ना था मुझको अपना होते हुए भी अपना, अब टूट गया वो जो देखा था कभी सपना।
0: ओहो
1: दिल पर लगा जख्म चाहे नाश हो जाए, अपनेपन को दूर करने के लिए कोई हमारा बनेगा।
0: ओए होए होए क्या बात है, जरूर बनेगा, मैं ढेरों दुआएं देता हूँ आपको। एक गाना चलाता हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया सा, मुझे लगता है कि ये गाना मैं अपनी तरफ से आपके लिए बजाता हूँ, बहुत मजेदार गाना।
1: नहीं, कौन सा गाना बजाओ पहले बता दो।
0: सर देखो मुझे पता भी नहीं है, जो आएगा आपके लिए बजा दूंगा, या आप बता दो मुझे अपनी पसंद का कोई गाना।
1: शायरी तो सुना दो आप भी मुझे कोई।
0: सर यार मेरे को शेर व शायरी आती नहीं है सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा।
1: नहीं यार
0: सर मैं आपको अभी मैं आपको शेर व शायरी सुनाऊंगा, देखो आप जब रेडियो सुनोगे ना तो आपके नाम के साथ एक अच्छी शेर व शायरी बनाऊंगा मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो।
1: छोड़ के जा रहा हूँ मुझको मेरे वतन के लिए, अकेले ही खड़ा हूँ मैं बंदूक लेकर।
0: एक बंदूक आप मेरे को भी दे दीजिए, काम आएगी मेरे को। कौन सा गाना आप सुनेंगे ये बताइएगा।
1: गाना तो कोई सा भी सुन लेंगे।
0: अच्छा,
1: पतन पे जाहिर है मेरी जमानत, अब छोड़ रहा हूँ अब तुम्हारे लिए मैं अमानत।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच प्रताप जी। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, जल्दी आपसे जुड़ेंगे, ठीक है सर?
1: ठीक है, नमस्कार,
0: नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया एड ब्रेक का, 9:47 हो रहे हैं। प्लीज एक बार घड़ी मिला लें अपनी और हम जल्दी से लौट कर आ रहे हैं कुछ शॉर्ट एड ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक। कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करें 9838968 96। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
0: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
6: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से वेलकम बैक है। इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, दिस इज FM मुरादाबाद 89.6। कहां जा रहे हैं आप ही से बात कर रहा हूं सर। अच्छा, अकेले हो गाड़ी में, मतलब सीट बेल्ट लगा लो यार। एंड कुछ कहना चाहते हो तो मुझे फोन कर सकते हो आप 9837896896। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड्स की टोली आ गई है एंड बहुत ही मजेदार बातें करेंगे, बट उससे पहले गाना। अरे सॉन्ग क्या गाया है सोनू साहब ने, रिक्रिएशन गाने का बहुत अच्छा है। आप सभी के लिए यहाँ से निकाल रहा हूँ तुझको। कॉल लगा लो यार, तरस आ रहा है ना बच्चे पे, कर लो फोन।

0: आप सोच रहे आनंद को क्या हो गया है, रात में थोड़े लाइट सॉन्ग प्ले होने चाहिए, बट ये दिल पे चलाई छुरियां, नहीं भाई मेरे दिल पे कोई छुरी नहीं चलाई है। हाँ थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है,
1: देखी मेरी मजबूरी,
0: बिकॉज हम इंसान ही AI नहीं है यार।
1: देखी मेरी मजबूरियां,
0: देखो यार अगर मैं सिर्फ ये वाली बात बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाइफ है तो प्रॉब्लम आती जाती रहती है ना, लाइफ है तो डाउनफॉल जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर की हिम्मत को मत खो, मोटिवेट रहो और थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं मन में उम्मीद रखो, जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसकी होप मत छोड़ो, डेफिनेटली होगी। और बाकी जिंदगी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो अच्छे लोग हैं ना उनको संभाल के रखिए, क्योंकि अच्छे लोग ना बहुत कमी से मिलते हैं यार। आज मुरादाबाद के लालबाग में जो काली मंदिर है वहाँ पर मैं गया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस बहुत अच्छा लगा। अगर अभी तक आप वहाँ नहीं गए हो, आज पहला नवरात्र था, कल दूसरा नवरात्र है माता ब्रह्मचारिणी का। सुबह मैं अपने शो पे बात करने वाला हूँ कल कौन सा रंग कौन सा अंग क्या कुछ स्पेशल होगा, कल मंडे है, कल ढेर सारी बातें हम अपने शो पे करेंगे, एक एस्ट्रोलॉजर लाइव होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, तो कल डेफिनेटली आप ट्यून इन कीजिएगा सुबह 7 से 10, आपके लिए ढेर सारा पैकेज लेकर आने वाला हूँ। एंड अभी जाने से पहले मैंने कहा था मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड वो स्टूडियो में हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई चेयर हिला रहा है तो कोई चेयर हिला रही है एंड कोई फ़ोन चला रहा है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, कुछ लोग नींद के मारे बुरे हाल हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जो रामलीला में जाने के लिए बेकरार हैं, मतलब मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज आई रियली लव रामलीला, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, और अभी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से आप एक की आवाज़ तो डेफिनेटली सुन चुके होंगे शेरो शायरी के माध्यम से, मतलब क्या शायरी करता है ये बंदा, भले ही दिल के अंदर कोई कुछ और चल रहा हो लेकिन जुबान पे कुछ और ही आ जाता है, कभी कभी होता है ना बोलते कुछ है बट हो कुछ और जाता है ना। कि एनीवेज चलो इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं फटाफट से, उसके बाद मैं भी यहाँ से खिसकूंगा। हाय हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है आप लोगों के दोस्तों? हेलो हेलो हाय, कैसे हो आप लोग, कुछ तो बोलो गाइज।
2: हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, यहाँ पे तो मैं हूँ और आप
2: हैं, आपकी ऑडियंस भी है ना?
0: अच्छा हाँ, वो हाँ ये सेज मेरी ऑडियंस भी है। हाय आप कैसे हो भाई? ये माइक एक्चुअली बंद है यार, सॉरी। आप इधर से बोलो, खड़े होके बोल दो, ये आवाज आ रही है तेरी, बोल भाई मैं सुन पा रहा हूँ, मैंने स्पीकर से वॉल्यूम बढ़ा दी, बोल।
3: मैं भी एकदम मस्त, आप बताइए।
0: मैं भी बहुत हैंडसम हूँ यार,
3: कर और मस्त हो
0: गया। अरे वाह मस्त हो गए, कितने किलो ब्लड बढ़ गया होगा? ऑलमोस्ट
2: खून बढ़ा है,
0: खून खून। मैं तेरा माइक ऑन ही कर देता हूँ, ले भाई बोल भाई।
3: जुनून बढ़ा है, जुनून
0: जुनून
3: बोलने का,
0: क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी मेरे साथ है, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, और लड़कियों को हमेशा अपनी तारीफ पसंद होती है, वो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्यों जी? थोड़ा सा बताओ,
2: मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है,
0: बाकी लोगों को नहीं पता है क्या?
2: नहीं,
0: एक बंदा और है जो लाल टी शर्ट में खड़ा है एकदम बॉडीगार्ड की तरह, आओ जी दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है सबका भाई। हाँ सर बोलो आप।
2: जी सर आपकी।
4: हेलो दोस्तों।
0: हेलो दोस्तों, आप कैसे हो, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो थोड़ा सा माइक से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अरे भाई वो टूट जाएगा, अरे अरे उसको नहीं छूना यार, इन लोगों में बाहर भगा के आता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा, नहीं तो ये मेरी भी नौकरी पक्का खा जाएंगे। एनीवेज नहीं नहीं आप हाथ माइक है छू सकते हो भाई, प्लास्टिक नहीं लाइव है। हाँ आप कैसे हो सर, आप अपने बारे में बताओ।
4: मैं आनंद एकदम बढ़िया,
0: यहाँ पे आके बोल सकता है, मैं वहाँ पे तेरे को सुन रहा हूँ, इधर इधर वाला माइक ज्यादा अच्छा है, तू बोल।
4: तो आनंद भाई यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है, और बस जल्दी से ये
0: एसी बंद है, एसी बंद है इसलिए मजा आ रहा है।
4: एसी बंद है कोई बात नहीं, आज मौसम वैसे ही बहुत ठंडा हो रहा है भाई।
0: जी जी बस यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको?
4: यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अब बस थोड़ी देर में हम रामलीला जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके और भी ज्यादा मजा आएगा।
0: क्या बात है, तो गाइज आप ब्लैक रेड ब्लैक एंड ये कलर क्या बोलते हैं इसको,
2: क्रीम
0: क्रीम क्रीम, वो तो मैं लगा के नहीं आया हूँ अभी, क्रीम कलर की शर्ट पहन के आया मेरा एक प्यारा सा भाई। एंड बाकी ये हैं सब लोग इंस्टाग्राम पे बने हुए हैं लगातार, और शायद आप इनमें से कुछ चेहरों को जानते भी होंगे, आई थिंक शायद नहीं सभी को आप जानते होंगे, लेकिन अभी इनके नाम इतना ज़रूरी नहीं है बताना, क्यों? क्योंकि फिर कभी बुलाऊंगा ना उसके लिए मैं इनको। और बाकी कुछ कहना चाहते हो गाइस, आप लोग का संडे कैसा होता था स्कूल टाइम में, तुम बताओ यार।
2: यहाँ पता है जब मेरा संडे होता था ना, क्योंकि मुझे स्कूल जाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मुझे ना संडे की छुट्टी नहीं चाहिए होती।
0: ओके नाइस,
2: है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे गेम्स खेलने होते थे मुझे अपने फ्रेंड्स के।
0: कौन सा गेम है जो तुम्हारा फेवरेट था?
2: उस टाइम में हम खोखो बहुत खेलते थे,
0: खोखो। हाँ। वो 8-10 लोग बैठते थे, उनके पास से भागना होता था।
2: खोखो पे मैंने 6th क्लास में सीखा है, उससे पहले मैं वो खेलती थी बर्फ पानी।
0: बर्फ पानी, उसमें क्या होता था,
2: एक जो हमारी टीम थी वो बॉयज की होती थी और जो दूसरी टीम थी गर्ल्स की होती थी, और गर्ल्स तो थोड़ा हल्के भागते हैं, अदाओं में भागते हैं, तो हमारे बॉयज जीते।
0: अदाओं में भागते हूँ मैं, गौरी से मुझे पता नहीं था, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। वो कैसी अदाएं करती थी थोड़ा सा ये तो बताओ,
2: मुझे ऐसे मत टच करो मैं गिर जाऊंगी,
0: ओ माय गॉड,
2: इतने
0: आप आज की डेट में तो वो गिरा देंगी।
2: आज की डेट में तो वो ब्लू टब में डाल रही है।
0: अयो माँ तुम कैसे बातें करते। अच्छा और कोई तेरा फेवरेट, तुमने वो स्कूल टाइम में वो खाई, एक अंकल आते थे वो बनाते थे ना, किसी से छतरी बना दी, मोर बना दिया,
2: वो बहुत एग्जैक्टली
0: फिर उसे खाते थे अपन, मोर बनाओ।
2: आपने
0: वो लाल लड्डू खाए, उसे खाके हम जीभ निकालते थे, देखो मेरे होंठ लाल हो गए। एक गोले गोले से आते थे, वो रिसेंटली हमें एक बंदे ने खिलाए भी थे अभी वहीं पे, छोटे छोटे गोले।
2: टाटरी
0: वॉट इज दिस टाटरी?
2: काले कलर का चूरन होता है
0: वो, मैंने भी वो लंबे से पैकेट में आता था, मैंने लाल वाला खाया है बहुत ज्यादा।
2: मैंने वो ब्लैक वाला बहुत खाया,
0: एक,
2: और
0: एक
2: गोला बहुत खाया,
0: गोला ही तो मैं बोल रहा था यार, उसको लाल जीप करते हैं खा करके। गुरु चेला खाया है?
3: बर्फ का गोला,
0: ओके सॉरी, एक लाल चेला आता नहीं, गुरु चेला आता
2: है,
0: हाँ वो खाया आपने? चांद तारे
2: सब खाए हैं, और चटोरी बहुत खाई है, खटोरी, चटोरी।
0: खटोरी क्या होता है?
2: खटोरी जो होता था वो छोटे छोटे,
0: चटोरी तो गली है ना मुरादाबाद की,
2: हाँ जी बहुत फेमस।
0: हाँ तो फिर खाया क्या है?
2: हमने चटोरी भी खाई है और हमने खटोरी भी खाई है,
0: खटोरी भी खाई है, और मैंने माँ की लाते भी खाई है और चाटे भी खाए हैं। लेकिन यार हमने वो भी खाया, मैंने तो अपने वो एक करोली टाइप की आती थी, पांच फिंगर में पहन के खाते थे उसको,
2: पाइप बोलते थे
0: दीपक की भाषा में, उसे फुकनी बोलते हैं,
2: फिंगर स्टिक।
0: आजकल के बच्चे कितने पढ़े लिखे हुए ना मुझे छोड़ के यार, सब लोग एआई का इस्तेमाल जो कर रहे हैं। बाय द वे आपने क्या खाया मनप्रीत? आपको वाला माइक मैंने फिर से ऑफ कर दिया है यार, मैं वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ एक मिनट। हाँ बोलो प्रीत भाई।
3: मैंने लाते खाई है क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया ना ज्यादा।
0: अच्छा यार पता है एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे लिसनर्स को भी लगेगा यार ये क्या कर रहे हैं। मैं एक बार स्कूल गया और स्कूल में गया ही नहीं था, मैं स्कूल के बाहर ही खड़ा हो गया था जाकर के। और
2: तो तुमने स्कूल में जो है सबसे बेस्ट मेमोरी क्या बनाई?
0: बेस्ट मेमोरी मैंने क्या बनाई है? मैंने सबसे दोस्ती अच्छी की है, मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है बस। हाँ और मैंने कभी किसी के टिफिन भी नहीं खाई है चोरी
2: तो
0: करके।
2: तुमने अपने स्कूल या कॉलेज में वो दिखाया आई एम द बॉस?
0: नहीं यार मैं हर टाइम मतलब हर क्लास में मैं मॉनिटर बनना चाहता था लेकिन पीछे बैठने वाला बन जाता था,
2: बैक बेंचर।
0: हाँ लेकिन आज लाइफ में थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, वो बात अलग है।
2: बैक बेंचर हमेशा फ्रंट सीट पे होता है सक्सेसफुल।
0: सच में? तो शायद इसी वजह से मैं पीछे बैठता था,
2: बैक बेंचर नहीं थी मैं, टॉपर थी।
0: अभी भी टॉपर है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कुछ जो तुमने अपनी लाइफ में, अच्छा लड़कों का थोड़ा सा अलग होता था क्रेज।

0: मेरे को लगता है ना प्रीत, आपने अपने स्कूल में कुछ किया ऐसा फन?
1: मैंने मेरा थर्ड क्लास का सीन बताता हूँ। थर्ड क्लास में मेरी मतलब एक लड़के से पटन नहीं रही थी, तो मैंने पेंसिल थोड़ी ज्यादा शार्प करी, उसके सीट के नीचे लगाई और उसे बिठा दिया।
0: अयो माँ, ये तो बहुत ही भयंकर सीन है, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए।
2: वो
0: मैंने भी एक बार किया था, मैंने किसी के पेपर फाड़ दी थी, उसने मेरे को टीपने नहीं दिया था। तो मतलब एक बार मैंने ऐसा किया था, मेरे को पहले टीपते थे ना। तूने क्या किया है भाई दीप, ये क्या लेके बैठा है हाथ में, रुई टाइप का?
3: अरे यार, मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, है ना। मुझे बताओ कि स्कूल में पैंट किस किस की फटी है?
0: पैंट नहीं, पैंट तो नहीं फटी है, आई थिंक
3: फटी है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा
0: ओके,
1: जब कबड्डी खेलते थे तब बहुत
3: बहुत फटी है।
0: ऑल राइट, और कुछ, और एनी आइडिया?
2: ये पैंट सिर्फ लड़कों की फटती है, क्योंकि लड़कियां तो स्कर्ट पहनती है ना।
0: ओ नाइस, वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस। अच्छा, तुम लोग कभी वो दो चुटकी वाला बस्ता लेके गए अपने स्कूल में,
3: बैग
0: वो उधर यहाँ पे ऐसे टांगते थे, उसमें दो कभी थैला या पन्नियां यूज की है? मैं तो लेके गया हूँ भाई। मतलब एक बार मेरे पास पापा ने बैग लाने में लेट कर दिया, तो मैंने झोले में, हालांकि डांट भी पड़ी थी, ये झोले में क्यों लेकर आ रहे हो, तो मतलब बट वो उसकी भी मेमोरी थी यार, एक यू नो वो भी।
2: अच्छा, कभी स्कूल टाइम पे क्रश रहा?
0: क्रश ओके, ये मैं रेडियो के बाद बताऊं तो चलेगा?
3: मेरी तो इंग्लिश वाली मैम थी एक, मतलब वो पढ़ाती अच्छी थी,
0: बट मेरी इंग्लिश वाली मैडम से बहुत डर था मेरे को, क्योंकि मेरे को आज तक आई नहीं इंग्लिश, ये एक रीजन है जो मैं छोड़ के भाग गया हूं।
2: तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हारी पहली क्रश जो थी?
0: मैं इसके लिए ना मैं अलग से पॉडकास्ट खोलूंगा, तू अभी ये मत पूछ, मैं फिर किसी और दिन शो करूंगा। वैसे भी 10:02 हो रहे हैं, हमें जाना भी है। वेल गाइस, थैंक यू सो मच, और आपको ये चटपटी बातें अच्छी लगी हो तो कल भी आप प्लीज ट्यून इन कीजिएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर दीप, क्या जो भी आपका नाम है? मनप्रीत, एक तो दीप और प्रीत एक जैसा लग रहा है मुझे।
1: बस
0: आपका स्कूल, आपको, आप तो पहली बार आए हो खैर हमारे स्टूडियो में, कैसा लग रहा है?
1: मस्त लग रहा
0: है। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, आपके लिए जोरदार तालियां, थोड़ी हल्के से नहीं, जोर से बजाओ गाइस। बस बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज, आप लोग जहाँ भी सुन रहे हैं ऐसी जोशीली बातों के लिए और ऐसे ही अतरंगी और नटखट बातों के लिए, प्लीज़ ट्यून इन रहिए। और कुछ कहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ ये लोग भी दिख जाएंगे आपको। सो फटाफट से जाओ, मेरा इंस्टा हैंडल फॉलो करो, रेडियो वाला आनंद के नाम से, ऑफिशियल आई डी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, आप वहाँ पे आके भी हमें ढूंढ सकते हैं। और फिलहाल ऋषि, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने आज व्रत रखा है?
2: हाँ जी,
0: सबने, तेरा भी व्रत है दीप, वेरी गुड। चलो,
2: लगे कि हमने तीन बार पकौड़ी खा ली।
0: नहीं मैंने नहीं खाई, झूठ नहीं बोलने का। मैंने एक ही बार खाया मैंने एक ही बार खाया था, मतलब वो तो थोड़ा ही था यार, वो ज्यादा नहीं था। और गाइस, इसमें व्रत में खाना कोई पाप नहीं होता है, व्रत में सब लोग खा सकते हैं।
3: आधे किलो पकौड़ी तो खा ही सकते हैं।
0: व्हाट द हेल यार, कहना क्या चाहते हो? आधा किलो तुम खा सकते हो, हमने अभी क्या खाया तुमने राइट नाउ?
2: अभी हमने पकौड़ी खाई थी
0: घर पे। अच्छा ओके, वो फ्रेंड्स के घर की पकौड़ी थोड़ी अलग होती है ना। yes. वो बात अलग है कि हमें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बहुत कम है, और जो हैं वो लेके नहीं जाना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप में से कोई मुझे अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं पकौड़ियों पे या डिनर पे या ब्रेकफास्ट पे, तो फटाफट से मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताना। अभी हम चलते हैं यहाँ से, और थैंक यू ऋषि और दीप, मनप्रीत, थैंक यू भाई। चलो चलते हैं अपन सारे लोग रामलीला देखने, है ना। तो आप लोग रामलीला से कुछ सीखते भी हो या नहीं, या फिर सिर्फ वीडियोस बनाते हो?
2: हाँ, पे रामलीला से एक चीज ये पता चली है कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, जो गलत कर रहा है उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, भगवान सब देखता है, कर्म हमेशा आपके सामने आता है।
0: अगली बार मैं तुझे रामलीला में लवकुश का रोल दिलाऊंगा, तो टेंशन मत ले, तो बहुत अच्छी बातें कर रही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ शायरी सुनाना चाहें आप?
2: हाँ हाँ हाँ प्लीज,
0: कोई एक शायरी।
3: आज हमारा मूड अच्छा है, तो आज हम थोड़ी सैड शायरी नहीं कर पाएंगे,
0: सॉरी। वाओ, नहीं तो कोई हैप्पी वाली कर दो, कोई लविंग वाली कर सकते हो। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं भाई आज शायरी नहीं करूंगा मैं, आज सिर्फ मैं बाय बाय करूंगा। आपको कुछ आता है प्रीत जी? अच्छा ओके ओके, चलिए चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। 10:04, आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, एंड आई होप कि आपने ये छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन इंजॉय की होंगी, एंड डेफिनेटली आपको अच्छी भी लगी होंगी स्कूल की मेमोरी। और बाकी कल सुबह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई अतरंगी बातें होंगी, ढेर सारी मज़ेदार, और जैसे मैंने आपको पहले क्लू दी भी दिया है क्या क्या मिलने वाला है शो में, तो बस आप ट्यून ही नहीं। और कल हम मुरादाबाद के शहर की चाय के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर बेहतरीन चाय मिलती है, कल की मॉर्निंग में कड़क चाय के ऊपर चर्चा होगी। फिलहाल आप कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुनते रहो 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक अच्छा सा गाना आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कौन सा गाना चलाऊँ। अच्छा मेरे साथ मेरे दोस्त में बैठा, कोई कोई गाना सुनना चाहता हूँ आप तीनों में से, कोई एक ही बताना भाई, तीन बताओगे तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ फोन फान बज रहे हैं लग रहा है, इनको जाना पड़ेगा। आप कुछ सुनना चाहते हो आप लोग?
2: हाँ जी बिल्कुल।
0: कौन सा गाना सुनोगे?
2: आप वो लगा लीजिए, तू ही हकीकत।
0: तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू, या फिर पर्दा पर्दा,
2: वो हमारे मॉर्निंग
0: वाइब। ओह माय गॉड,
2: अब हमारी जितनी भी ऑडियंस होगी हाँ, वो थोड़ी सी रोमांटिक होना चाह रही होगी।
0: अच्छा, तू ही हकीकत, ये गाना तो बहुत अच्छा है। चलिए गाइस, अब मैं इसी गाने के साथ लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी, अभी के लिए करते हैं बाय बाय। छोड़ के जा रहा हूँ ये अच्छा गाना, आप कहीं मत जाएं, रेडियो की सुई बिल्कुल ना घुमाएं, ऐसे ही ट्यून इन रहें और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6। एक बजे तक आपके साथ हैं आपकी शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन। बस आप ऐसे ही सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए, बजाते रहिए। और अभी के लिए इनसे कहते हैं बाय बाय दोस्तों, बाय बाय बाय बाय
3: बाय
0: बाय बाय बाय, गुड नाइट गाइस। गाड़ी आराम से चलाना, बाय, कल मिलते हैं।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
1: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई चा भाई नचना ही पैंदा।
0: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
2: क्यों तेरी भी तो भैन है।
3: गल चंगी बोली।
4: ओ कम ऑन शेखर नाचो ना।
0: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वेंट जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।